听众朋友们，接下来我们播送古玛沙努和奥盖扬唱的一首歌曲。

विश्व मोहिनी के स्वयंवर में अपने को कपि के रूप में पाकर नारद मुनि के क्रोध की सीमा ना रही। वो उपहास के पात्र बन गए थे। ब्राह्मणों के वेश में वहां उपस्थित शिव के गणों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी। नारद मुनि का आक्रोश श्री हरि के प्रति उमड़ा, जिन्होंने सुंदर रूप का वरदान मांगने पर उन्हें बंदर का समूह और भयंकर शरीर दे दिया। अतः मुनिवर ने उन्हें जी भरकर कोसा, कहा, जो शरीर धारण कर तुमने मुझे ठगा है, तुम्हें वही शरीर मिलेगा। ये मेरा शाप है, तुमने मेरा रूप बंदर का सा बना दिया, अतः बंदरों की ही सहायता से तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। प्रभु ने नारद जी का शाप शिरोधार्य किया और अपनी माया लीला वापस ले ली। नारद मुनि अत्यंत भयभीत हो गए। उन्होंने प्रभु के चरण पकड़कर आक्रोश में शाप देने के लिए क्षमा मांगी। प्रभु ने उन्हें शांति प्राप्त करने के लिए शिव जी का शतनाम जपने का परामर्श दिया।

0: रामचरितमानस में अभी आप सुन रहे थे बालकांड का भाग 53। इसी के साथ रामचरितमानस का यह कार्यक्रम अब यहीं संपन्न होता है। सुबह के ठीक 6:55 होने को है। अब से थोड़ी ही देर में आप संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में समाचार सुनेंगे।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका ऋचा झा। अथ वार्ताः। पश्चिमैशियायाः संघर्षः दशकस्य बृहत्तमेषु संकटेषु अन्यतमः इति वर्णयन् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय संसाधनेषु भारः न्यूनीकर्तुं नागरिकाणाम् आह्वानम् अकरोत्। प्रधानमन्त्री ह्यः गुजरातस्य वडोदरा नगरे सरदार धाम छात्रावासस्य उद्घाटनानन्तरं जनसभां सम्बोधयन् आसीत्।
2: पिछले कुछ वर्षों में दुनिया लगातार अस्थिर परिस्थितियों से गुजर रही है। पहले कोरोना का संकट, फिर वैश्विक आर्थिक चुनौतियां और अब पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव। अगर कोरोना महामारी इस सदी का सबसे बड़ा संकट थी तो पश्चिम एशिया में युद्ध से बनी परिस्थितियां इस दशक के बड़े संकटों में से एक है। ऐसे समय में देश को जन भागीदारी की शक्ति की बहुत बड़ी आवश्यकता है। आज जरूरत है कि हम सब मिलकर अपना दायित्व निभाएं, देश के संसाधनों पर पड़ने वाले बोझ को कम करें।
1: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी प्रोक्तवान यत् केन्द्र प्रशासनस्य निरंतर प्रयास ही भारतं पश्चिमैशिया संघर्षेण उत्पन्नस्य ऊर्जा संकटस्य प्रभावी रीत्या प्रबन्धनं करोति। प्रधानमंत्री अवदत् यत् देशस्य जनेभ्यः अस्याः स्थितेः न्यूनतमः प्रभावः भवेत् इति सुनिश्चेतुं प्रशासनं निरन्तरं प्रयतमानः अस्ति इति। असौ एतदपि कथितवान् यत् आगामि एकवर्षं यावत् तैलेन्धनानां संयमित उपयोगः करणीयः, तेन अनपेक्षित विदेशयात्राभ्यः दूरीकरणं, स्वर्णक्रयणे नियन्त्रणं तथा स्थानीय वस्तूनां प्राधान्यं स्वीकर्तुं विशेषः आग्रहः कृतः, येन देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढा स्यात्। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवासरात् आरभ्य संयुक्तारबामिरात्, नीदरलैण्ड, स्वीडन, नॉर्वे, इटली इत्येतेषां देशानां 6-दिवसीय यात्रायां प्रस्थास्यति। स्वीय 5 देशानां यात्रायां प्रथमे चरणे श्रीमोदी शुक्रवासरे संयुक्तारबामिरातं सम्प्राप्स्यति, यत्र असौ राष्ट्रपतिना शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान इत्यनेन सह मेलनं करिष्यति। द्वौ नेतारौ द्विपाक्षिक विषयेषु विशेषतया ऊर्जा सहयोगे सहैव पारस्परिक हितस्य क्षेत्रीयान्ताराष्ट्रिय विषयेषु विचार विनिमयं करिष्यतः। स्वीय यात्रायाः द्वितीये चरणे प्रधानमन्त्री शुक्रवासरे नीदरलैण्ड देशं सम्प्राप्स्यति। 17,2017 वर्षे स्वान्तिमयात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्रिणः नीदरलैण्ड देशस्य इयं द्वितीया यात्रा भविष्यति इति। यात्रायाः तृतीये चरणे श्रीमोदी रविवासरे स्वीडन देशस्य गोथेनबर्ग नगरं गमिष्यति। श्रीमोदी स्वीडन देशस्य समकक्षेण उल्फ क्रिस्टर्सन्स इत्यनेन सह विभिन्नेषु विषयेषु द्विपाक्षिकवार्तां करिष्यति। विदेशमन्त्रालयः अवदत् यत् प्रधानमन्त्रिणः आगामी यात्रा सद्यः सम्पन्नस्य भारत यूरोपीय संघस्य मुक्त व्यापार सहमतेः दृष्ट्या विविध क्षेत्रेषु विशेषतया व्यापार निवेश सम्बन्धेषु यूरोपेन सह भारतस्य सहभागित्वं इतोऽपि सुदृढं करिष्यति इति।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के दो तथा असम गण परिषद और बोडो पीपुल्स फ्रंट के एक एक मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगरपालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान के साथ युद्ध विराम सबसे कमजोर स्थिति में और लाइफ सपोर्ट पर है। और बांग्लादेश ने भारत में आईसीसी T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपयोग कम करने तथा घर से काम, ऑनलाइन कक्षाएं और वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को प्राथमिकता दी जाए। मैं कुछ स्कूलों से भी आग्रह करूंगा कि कुछ समय के लिए ऑनलाइन क्लासेज की व्यवस्था पर काम करें। मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि जब तक हालात सामान्य न हो, हम सोने की खरीद को टालें।
0: सरकार ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है तथा रसोई गैस की आपूर्ति लगातार हो रही है। पश्चिम एशिया के हाल के घटनाक्रम पर कल नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि एलपीजी वितरण केंद्रों पर किसी अभाव की सूचना नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा सार्वजनिक परिवहन और कार पूलिंग पर बल दिया है।
2: माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी लोगों से आग्रह किया है कि पेट्रोल और डीजल की खपत कम करें, जहां भी संभव हो मेट्रो और सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करें, कार पूलिंग का विकल्प चुनें, रेलवे एज अ मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर गुड्स को प्रेफर करें और जहां भी संभव हो इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग बढ़ाएं।
0: रसायन और उर्वरक मंत्रालय में अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में खरीफ सीजन के लिए 51% से अधिक उर्वरक भंडार उपलब्ध है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 97 लाख मीट्रिक टन उर्वरक का अतिरिक्त प्रबंधन किया गया है। संवाददाता सम्मेलन में पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय में निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने कहा कि समुद्री क्षेत्र में सभी भारतीय जहाज सुरक्षित हैं। विदेश मंत्रालय में अपर सचिव असीम महाजन ने कहा कि भारतीय दूतावास और वाणिज्य दूतावास समय से सहायता उपलब्ध कराने के लिए लगातार हेल्पलाइन संचालित कर रहे हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मीडिया को बताया कि भारतीय जहाजों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए भारत ईरानी अधिकारियों के संपर्क में है। मंत्रालय ने बताया कि तेहरान में भारतीय दूतावास ने 2500 से अधिक भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकालने में मदद की है। भारतीय जनता पार्टी नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की तीसरी सरकार होगी। श्री शर्मा लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करेंगे। वे राज्य में उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। एक रिपोर्ट।
3: डॉक्टर हेमंत बिस्व शर्मा के साथ आज 4 अन्य मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जाएगी। जिन 4 कैबिनेट मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी उनमें रामेश्वर तेली, अतुल बोरा, चरण बोरो और अजंता नियोग शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री तथा भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होंगे। गुवाहाटी के खानापारा स्थित वेटरनरी कॉलेज मैदान को शपथ ग्रहण समारोह के लिए पूरी तरह सजाया गया है। वहीं कामरूप मेट्रो प्रशासन ने शहर के विभिन्न हिस्सों में यातायात सुचारू बनाए रखने और जाम से बचने के लिए ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम के 30 विधायकों ने पी वेलू

0: मणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा की है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक समूह ने इडपड्डी के पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक विधानसभा में बहुमत साबित करना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती
1: है। NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में शुक्रवार को प्रधानमंत्री संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात करेंगे। दोनों नेता द्विपक्षीय मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। इस दौरान विशेष रूप से ऊर्जा सहयोग तथा आपसी हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। एक रिपोर्ट।
5: संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री मोदी नरेश विलेम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री की यात्रा से नीदरलैंड्स के साथ संबंधों को नई गति मिलेगी। इसके बाद श्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वहां स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जाएगी तथा व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग के नए उपाय तलाशे जाएंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के साथ उद्योग जगत के प्रमुखों को संबोधित करेंगे। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की थी। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। सुजीत बसु को आज विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि देश में खाद्यान्न का पर्याप्त भंडार है और किसी तरह का कोई अभाव नहीं है। नई दिल्ली में कल कृषि बदलाव के स्वास्थ्य के लिए विज्ञान की उत्कृष्टता सेहत पहल का शुभारंभ करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इससे लोगों के लिए स्वास्थ्य के लिए लाभदायक जीवन शैली को बढ़ावा देने में सहायता मिलेगी।
6: सदियों से कहा गया है, पहला सुख निरोगी काया, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम। अगर शरीर स्वस्थ है तो आप सब धर्मों का पालन कर सकते हैं। जो शरीर के लिए उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, पोषण के लिए उपयोगी है, वही खाओ, संतुलित आहार।
0: इस अवसर पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि ये पहल स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए सरकार की सक्रियता दर्शाती है।
7: हम जानते हैं कि हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफी स्ट्रेंथन किया है। और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिन्यूम ऑफ केयर पर।
0: सेहत पहल का उद्देश्य स्वस्थ भारत के लिए कृषि, पोषण और वैज्ञानिक नवाचार को मजबूत करना है। खान मंत्रालय जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर खंडों की नीलामी का दूसरा चरण आज से शुरू करेगा। इसके अंतर्गत 12 चूना पत्थर खंडों की नीलामी की जाएगी। खान मंत्रालय ने इन खंडों को संयुक्त राष्ट्र संसाधन वर्गीकरण प्रणाली के 3 और 4 अन्वेषण चरणों के अंतर्गत रखा है। मंत्रालय ने कहा कि संसाधन सीमेंट निर्माण और अवसंरचना जैसे प्रमुख क्षेत्रों के लिए महत्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति को गति मिलेगी। अमरीका और ईरान के बीच कमजोर संघर्ष विराम के लाइफ सपोर्ट पर होने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी के बाद राजनयिक तनाव गहरा गया है। इससे तेल बाजारों को झटका लगा है। अमरीका ने ईरान के शांति प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया में अमरीकी प्रतिबंध हटाए जाने, ईरान की फ्रीज पर संपत्तियां खोलने, अमरीकी नाकाबंदी समाप्त करने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरानी प्रबंधन को मान्यता देने की मांग की थी, लेकिन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इन शर्तों को नामंजूर कर दिया। शांति प्रस्ताव खारिज होने के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक का उछाल आया है। एक रिपोर्ट।
8: ईरान की मांगे मुख्य रूप से युद्धकालीन परिस्थितियों और आर्थिक दबावों पर केंद्रित रही है, न कि तत्काल परमाणु रियायतों पर। लेकिन फिलहाल अमेरिका इन मांगों को मानने के पक्ष में नहीं है। मध्यस्थ लगातार साझा समाधान खोजने की कोशिश में है, लेकिन युद्ध के दबाव और आर्थिक संकट के कारण स्थिति और जटिल होती जा रही है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात बुनियादी ढांचों पर हुए हमलों पर अपनी प्रतिक्रिया तय कर रहा है। उसने एक राष्ट्रीय समिति का गठन किया है, जिसका उद्देश्य देश पर 2800 से अधिक ड्रोन और मिसाइल हमलों से हुए नुकसान का दस्तावेजीकरण करना है। संयुक्त अरब अमीरात अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानूनी जवाबदेह तय करने और अपने प्रमुख स्थलों तथा ऊर्जा प्रतिष्ठानों पर हुए हमलों के लिए मुआवजे की मांग करने की तैयारी कर रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
0: बांग्लादेश क्रिकेट टीम के भारत में आईसीसी T20 विश्व कप से हटने के कारणों की जांच के लिए 3 सदस्यों की जांच समिति गठित की गई है। एक रिपोर्ट।
9: इस साल 7 फरवरी से 8 मार्च तक भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में हुई T20 विश्व कप से बांग्लादेश ने अपना नाम वापस ले लिया था। यह फैसला तब लिया गया जब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने सुरक्षा चिंताओं के कारण बांग्लादेश के मैच भारत से श्रीलंका स्थानांतरित करने की मांग को ठुकरा दी। विवाद तब शुरू हुआ जब भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने कथित तौर पर कट्टरपंथी समूहों से धमकियों के बाद बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्ताफिजुर रहमान को IPL से बाहर कर दिया। हालांकि ICC ने कहा कि सुरक्षा व्यवस्था पर्याप्त है, लेकिन इसके बाद अंतरिम सरकार ने BCB को टूर्नामेंट से हटने का निर्देश दिया। नवलसन परमार, आकाशवाणी समाचार, ढाका।
0: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं सर फिरोजी।
10: धन्यवाद मुकेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेशी मुद्रा बचाने की सलाह सभी अखबारों में प्रमुखता से है। हिंदुस्तान के अनुसार मोदी बोले, ऑनलाइन कक्षाओं और काम को प्राथमिकता दें, कोरोना महामारी की तरह इस संकट से भी बाहर निकल आएंगे। पत्र के अनुसार सरकार ने कहा, परेशान ना हो, देश में पर्याप्त पेट्रोल और डीजल उपलब्ध। जनसत्ता के अनुसार पोखरण परीक्षण की याद दिलाते हुए प्रधानमंत्री ने कहा, कोई ताकत भारत को झुका नहीं सकती। दैनिक भास्कर की सुर्खी है, कोरोना सदी का सबसे बड़ा संकट था, जंग दशक के बड़े संकटों में से एक। नवभारत टाइम्स इसी खबर पर ऊर्जा में आत्मनिर्भरता शीर्षक से संपादकीय में लिखता है, PM नरेंद्र मोदी के बाद सोमवार को पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय ने भी लोगों से सार्वजनिक परिवहन और इलेक्ट्रिक व्हीकल का उपयोग करने की अपील की, ताकि पेट्रोल डीजल की खपत कम की जा सके। हालांकि सरकार ने यह भरोसा दिया है कि देश में ईंधन की कमी नहीं है। वीर अर्जुन का शीर्षक है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के शांति प्रस्ताव को पूरी तरह अस्वीकार्य बताकर खारिज किया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, बंगाल सरकार का फैसला, सीमा पर बाढ़ के लिए 45 दिन के भीतर देगी जमीन।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा बचाने के लिए लोगों से ईंधन और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया। वरिष्ठ भाजपा नेता हेमंत बिस्व शर्मा आज गुवाहाटी में असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भाजपा के 2 तथा असम गण परिषद और बोडो पीपल्स फ्रंट के 1-1 मंत्री भी शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री सुजीत बसु को गिरफ्तार किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की 6 दिन की यात्रा पर रवाना होंगे। और बांग्लादेश ने भारत में ICC T20 क्रिकेट विश्व कप से अपनी टीम के हटने के कारणों की जांच के लिए समिति गठित की। इसके साथ ही समाचार प्रभात का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज।

0: करने के लिए तैयार है। मगरबी बहरी कमान के कमांडिंग इन चीफ फ्लेग ऑफिसर जनाब स्वामीनाथन ने कहा कि भारत कई सालों तक दहशतगर्दी से मुतासिर रहा है और वह मुल्क में बिलखसूस बैरूनी सरजमीन से की जा रही दहशतगर्दी को कबूल नहीं कर सकता। उन्होंने मजीद कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन दहशतगर्दों और दहशतगर्द कैंपों को खासतौर पर निशाना बनाया गया जिन्होंने साल 2025 में पहलगाम वाकये को अंजाम दिया था। जनाब स्वामीनाथन पाकिस्तानी दिफाई अफवाज के सरबराह फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के तबसरों से मुतालिक रिपोर्ट पर रायजनी कर रहे थे जिसमें आसिम मुनीर ने कहा था कि इस्लामाबाद के खिलाफ मुस्तकबिल में किसी भी तरह की मुहिमजोई का नतीजा इंतहाई खतरनाक और वसीतर होगा। जम्मू कश्मीर में हुकाम ने जरूरी इजाजत नामे हासिल किए बगैर काम करने की पादाश में बाइक और कैब खिदमात फराहम करने वाली कंपनी रैपिडो पर पाबंदी लगा दी है। जम्मू के आरटीओ जसमीत सिंह ने सर्कुलर जारी करते हुए कहा कि रैपिडो कंपनी एग्रीगेटर सर्टिफिकेट के बगैर काम कर रही थी जिससे मरकज के जेर इंतजाम इलाकों में उसकी खिदमात गैरकानूनी हो गई है। कानून की वजारत आज श्रीनगर में जम्मू कश्मीर में चूना पत्थर के ब्लॉकों की नीलामी का दूसरा मरहला शुरू करने जा रहा है। दूसरे मरहले के तहत वजारत जम्मू और कश्मीर हुकूमत के ताउन से नीलामी के लिए 12 चूना पत्थर के ब्लॉक्स पेश कर रहा है। ये ब्लॉक अनंतनाग राजौरी और पुंछ अजला में वाक़ हैं और इनमें नए शिनाख्तशुदा ब्लॉक्स के साथ साथ दूसरी कोशिश के साथ दोबारा नीलामी किए जाने वाले दोनों ब्लॉक्स शामिल हैं जो वसाइल के बेहतरीन इस्तेमाल और सनअत की मुस्तकिल शिरकत के तई हुकूमत के अज़्म की अक्कासी करते हैं। बांग्लादेश में भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक 3 रुकनी तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। 10 मई के सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक साबिक एडिशनल सेक्रेटरी डॉ एकेएम वलीउल्लाह और इस कमेटी की सरबराही करेंगे जबकि बांग्लादेश के साबिक कप्तान और मौजूदा चीफ सेलेक्टर हबीबुल बशर और सुप्रीम कोर्ट के वकील फैसल दस्तगीर कमेटी के अरकान में शामिल हैं। कमेटी को हिदायत दी गई है कि वह 15 काम के दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट पेश करे। आईपीएल क्रिकेट में कल रात धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। ये थी खबरें। अब अखबार के आईने के साथ हैं मोहम्मद अम्मार।
1: शुक्रिया फैसल। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के तकरीबन सभी उर्दू अखबारों ने वजीर आजम मोदी के गुजरात दौरे की खबर को अव्वलियत के साथ शाये किया है। रोजनामा प्रताप ने सुर्खी लगाई है, वजीर आजम ने सोमनाथ मंदिर की तामीर नौ के 75 साल मुकम्मल होने के मौके पर मुनाक़िदा सोमनाथ अमृत महोत्सव के दौरान कहा कि सोमनाथ मंदिर भारत की अटूट श्रद्धा की अलामत है और ये मंदिर हजारों बरसों से तहरीक का सरचश्मा रहा है। रोजनामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने एक अहम खबर को नुमाया तौर पर शाये करते हुए सुर्खी लगाई है कि मुल्क में हर तरह के ईंधन और तवानाई का वाफिर जखीरा मौजूद है, हुकूमत का बयान। इसी अखबार ने एक और अहम सुर्खी लगाई है, हुकूमत ने कहा कि वीवीजी रामजी एक्ट मूल भर के देही इलाकों में 1 जुलाई से नाफिज होगा।
0: आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी एशिया के बहरान के पेश नज़र आवाम से ज़र मुबादला बचाने के लिए ईंधन की बचत करने और गैर मुल्की मसनूआत के इस्तेमाल में कमी लाने की अपील की है। बीजेपी के सीनियर रहनुमा हेमंत बिस्वा सरमा आज गुवाहाटी में आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। ईडी ने जनूबी दमदम म्यूनिसपैलिटी भर्ती घोटाला मामले में मगरबी बंगाल के साबिक वजीर सुजीत बसु को गिरफ्तार किया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से मुत्तहिद अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे, इटली के 6 रोजा सरकारी दौरे पर होंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ जंगबंदी इंतहाई कमजोर हालत में है और बमुश्किल कायम है। और बांग्लादेश ने भारत में मुनाक़िदा मर्दों के आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप से कौमी क्रिकेट टीम के दस्तबरदार होने की वजूहात जानने के लिए एक कमेटी तश्कील दी है। इसके साथ ही यह खबरनामा खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 8:45 और 15 सेकेंड हो चुके हैं। अब प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। इसमें आज आप सुनेंगे पंडित राम

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर गंगा में अभी आप सुन रहे थे पंडित राम नारायण द्वारा सारंगी पर बजाया राग, राग अलहैया बिलावल। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। सुबह के ठीक 9:15 हो चुके हैं। आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम विज्ञान पत्रिका।

0: नमस्कार, विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आप सभी का स्वागत है।
1: हम सब लोगों ने अपने जीवन काल में, अध्ययन काल में लाइब्रेरी जरूर देखी होगी। पुस्तकालय महत्वपूर्ण स्थल होता है जहां दुनिया भर के लेखकों की लिखी गई, अनुभव की गई और साझा की गई जानकारियां एक पुस्तक के माध्यम में वहां संरक्षित रहती है। और जो भी लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ना चाहते हैं वो पुस्तकालय जाते हैं, वहाँ अपने मनपसंद की किताबें देखते हैं और वहाँ से उन अर्जित की गई, संरक्षित की गई ज्ञान को अपने फायदे के लिए, अपने समग्र विकास के लिए उपयोग करते हैं। जैसे जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास होता जा रहा है उसी तरह से लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है और लाइब्रेरी की उपयोगिता भी बढ़ रही है। लाइब्रेरी का महत्व बढ़ रहा है, इसके रोल भी बदल रहे हैं, जिम्मेवारियां भी बदल रही है और एक स्किल डेवलपमेंट में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में किस तरह से पुस्तकालय महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं आधुनिक युग में, खास करके हमारे जो पर्यावरण से जुड़ी हुई जानकारियां हैं उसके लिए भी। विस्तृत जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में उपस्थित हैं डॉक्टर पीके भट्टाचार्य। आप निदेशक हैं, साथ ही आप एक सीनियर फेलो हैं नॉलेज रिसोर्स सेंटर में, जो कि द एनर्जी एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है दिल्ली में। डॉक्टर पीके भट्टाचार्य जी, आपका आकाशवाणी के स्टूडियो में स्वागत है।
2: थैंक यू।
1: एक तो हरित कौशल विकास की बात करते हैं, जो ग्रीन स्किलिंग की बात होती है, और उसमें इस चीज को पुस्तकालय की भूमिका आप किस रूप में देखते हैं और इस तरह का जो विकास है वो व्यापक स्तर पर लागू करना क्यों जरूरी है?
2: तो आपका इस प्रश्न का जवाब हम दो तरीके से देंगे। पहले हम देते हैं जो ग्रीन स्किल को, जो हम बोलते हैं स्केल अप करना, तो ये बढ़ाने के लिए क्यों जरूरी है आज के दिन में। देखिए, हम सब जानते हैं जो भारत कोशिश कर रहा है, जो हम लोग 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में आए और 2070 तक हम चाहते हैं नेट जीरो कंट्री बन जाए। अब ये सब चीज बनने के लिए आपको कई सारे और चीज में बदलाव लाना पड़ेगा, जिनमें सबसे पहले आता है जो एक सस्टेनेबिलिटी प्रैक्टिस जो फॉलो करना पड़ेगा आपका इंडस्ट्री में। इंडस्ट्री को पहले जो भी प्रोसेस फॉलो करके आजकल बिजनेस कर रहे हैं उन चीज को बदल के न्यू टेक्नोलॉजी लाना पड़ेगा, नए नए एरियाज पे काम करना पड़ेगा और वो सारा काम देखना पड़ेगा जो सस्टेनेबल हो। अब ये सस्टेनेबल जब हम ये वर्ड बोलते हैं, इसमें जो चीज सबसे जरूरी होती है, जो एक तो टेक्नोलॉजी का यूज और दूसरा जो उन टेक्नोलॉजी को चलाने वाला, जो कि एक ऐसा स्किल के साथ, ऐसे हरित कौशल का साथ बंदा आएगा जो उन इंडस्ट्रीज का जो भी नया चेंजेस है उनको लागू कर पाए। अब इस हिसाब से अगर देखें तो मैं कुछ आंकड़ा आपको अगर दूं तो आपको समझ में आएगा। जो गवर्नमेंट सोचते हैं 2030 तक हमें कम से कम 32 लाख अतिरिक्त हरित कौशल श्रमिकों की आवश्यकता है, जिनमें लगभग 45% जो आज के दिन में जैसे काम कर रहे उनमें बदलाव लाना पड़ेगा, जो हरित कौशल के ऊपर काम करेंगे। अब डिफरेंट सेक्टर पे काम होगा, जैसे कि नवीकरणीय ऊर्जा पे, इलेक्ट्रिक व्हीकल आज हम बोलते हैं उनमें चेंज होगा, वेस्ट मैनेजमेंट में चेंज होगा। अब इन सब एरियाज में जो भी काम होगा वो सस्टेनेबल स्पेसिफिक हो। ये जो हमारा खाद्य वगैरह आगे और जरूरत होगी तो उस चीज के लिए हमें चाहिए होगा जो सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, तो ये सारे चीज की जरूरत होगी और इसी चीज के लिए हमें चाहिए ये हरित कौशल वाले काफी सारे लोग, जो एक्चुअली आज के दिन में हमारे अंदर कमियां हैं। दूसरी जो क्वेश्चन आपने पूछा था, जो लाइब्रेरी इसमें कैसे मदद कर सकती है। अब देखिए, लाइब्रेरी स्टोर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, हम सब कोई जानते हैं लाइब्रेरी में बहुत नॉलेज है। आज तक हम नॉलेज लोगों को दे के आए हैं, अब इनमें अगर हम ऐसा काम कुछ करें जो उन नॉलेज से ऐसे छोटे छोटे आप कह सकते हो कोर्सेस बनाए, कोर्स मॉड्यूल बनाए, और जो कोर्स मॉड्यूल जो सस्टेनेबिलिटी ड्रिवेन हो, सस्टेनेबिलिटी को फोकस करके बनाया हो, उन कोर्स मॉड्यूल अगर लाइब्रेरी से छोटे छोटे कोर्सेस चलाए जाए, और या तो एक महीना वाला या एक दिन वाला, सात दिन वाला, ऐसे कोर्सेस चलाए जाए और जो लोग इन कोर्स को वैल्यू एड करेंगे, जो लोग इस कोर्स को प्राप्त करने के बाद इनको यूज करके अपना नौकरियां वगैरह मिलेगा, अगर ऐसा स्थिति में हम पहुंचा सके, या तो अपना निजी बिजनेस शुरू करेगा ऐसे स्थिति में पहुंचा सके, तो मैं सोचता हूं जो लाइब्रेरी अपना प्रॉपर काम कर रहे हैं।
1: इसको और आगे बढ़ाने के लिए पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग किस तरह से किया जा सकता है इस तरह के हरित कौशल विकास के लिए?
2: अब देखिए, लाइब्रेरी बेसिकली बहुत तरीके से कर सकते हैं। जो चीज आपको एक एग्जाम्पल दूं, हमारा जो गवर्नमेंट जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 लाए हैं, इन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में

0: देखते हैं कैसे इन्फॉर्मेशन डिफरेंट जगह से लेके और जगह से लेके इन चीज को किस तरीके से हम एक डॉक्यूमेंट बना सकते हैं, जो डॉक्यूमेंट एक रिपोर्ट फॉर्म में हम अपना यूजर को देते थे। इस केस में हमें जो चीज करना पड़ेगा, जो हम सस्टेनेबिलिटी की जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनमें से छोटा छोटा इन्फॉर्मेशन लेके उसको एकत्रित करके हमारा कोशिश ये होना चाहिए जो हम छोटे छोटे मॉड्यूल्स बनाए। अब जो हम पहले रिपोर्ट बनाते थे अब हम उसको मॉड्यूल बना रहे। अब इन मॉड्यूल को हो सकता है जो कुछ केसेस में हमारे शायद इतनी नॉलेज लेवल नहीं होगा, हो सकता है जो चीज हम तेरी लाइब्रेरी में भी फेस किए हैं। अब उस केस में क्या होगा, जो आपको जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स है, जो एक्सपर्ट है उस फील्ड की, उनसे एक बार वैलिडेट कराना, उनसे एक बार समीक्षा कराने का भी जरूरत है। वो उसको देख के अगर आपको बता दे जो बहुत बढ़िया बना है आपका ये मॉड्यूल, तो फिर इन चीज को लेके हम ये हरित कौशल का जो प्लान बोल रहे थे ये चीज आगे ले जाए।
1: विभिन्न हितधारकों के लिए अगर हम बात करें कि जो हरित कौशल की बात करते हैं और जिसमें पुस्तकालय के संसाधनों का उपयोग इस क्षेत्र में किया जाता है, तो ये तरीके क्या क्या हो सकते हैं, कैसे कैसे ये कार्य किया जा सकता है?
0: जैसे कि देखिए, गवर्नमेंट का एक जो स्कीम्स है इनको आगे ले जाने के लिए कई सारे मिशन्स लाए हैं गवर्नमेंट, जिनमें एक मिशन है मिशन लाइफ। अब मिशन लाइफ सस्टेनेबिलिटी इन योर लाइफस्टाइल, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल प्रैक्टिसेस के ऊपर जोर देते हैं। अब इसकी तहत हम लोग जो करते हैं, जो इनमें ना 7 टॉपिक है, जिनमें आपका क्लीन एनर्जी, नवीकरणीय जो ऊर्जा है उसको कैसे यूज करेंगे, आप इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करेंगे, आपका उससे क्या बेनिफिट होगा, देन आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट किस तरीके से आप रीयूज करो ताकि उन्हीं वेस्ट से कोई और चीजें बने, ताकि आपको बार बार ज्यादा चीजें फेंकना ना पड़े, उसी चीज को यूज कर सकते हो। ये जो प्लास्टिक हमारे लिए बहुत खतरनाक चीज है ये सब कोई जानते हैं, फिर भी हम प्लास्टिक की पन्ने यूज करते हैं। अभी जैसे हमने ग्वालियर में वहाँ कम्युनिटी के साथ एक मेगा प्रोग्राम किया है 2 महीना, वहाँ हर एक बंदा, जैसे कि मान लीजिए जो वहाँ का व्यापारी है, वहाँ का जो कम्युनिटी है, स्टूडेंट्स है, इन सबको सिखाया है जो भाई वेस्ट जो पेपर है या वेस्ट जो क्लॉथ्स है उससे कैसे क्लॉथ बैग बनाया जा सकता है, या तो पेपर बैग बनाया जा सकता है, और उससे किस तरीके से आपका जो प्लास्टिक बैग है उसको आप छोड़ सको उसकी यूज। ऐसे और भी एरियाज है जिन चीज को बेसिकली मिशन लाइफ की थ्रू हम लोगों को सिखा सकते हैं और सिखा भी रहे हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा जो तरीका है, लाइब्रेरी जो मैं कह रहा था, डिफरेंट ट्रेनिंग्स दे सकते हैं लोगों को, जैसे कि एक दिन का ट्रेनिंग, ये मिशन लाइफ वाला आपको एग्जांपल दिया, हमने कई सारे टाइप की ट्रेनिंग कराते हैं जिनमें कुछ टेक्निकल ट्रेनिंग्स है। अब इन टेक्निकल ट्रेनिंग जो है आपका वेस्ट मैनेजमेंट, इलेक्ट्रिक व्हीकल की चार्जिंग और सोलर एनर्जी के ऊपर हम कराते हैं, सोलर एनर्जी एप्लीकेशन। अब इन चीज की हर एक जगह पे यूज है, जैसे गांव में जब हम सिखाते हैं लोगों को, तो सोलर एनर्जी कैसे सोलर पंप यूज करके, सोलर ड्रायर यूज करके फसल सुखाएंगे, जहां पे जानवरों का प्रॉब्लम है, फसल खा जाते हैं या नष्ट करते हैं, तो उन टाइप की केस में हम कैसे सोलर फेंसिंग यूज कर सके, ऐसे कई सारे ट्रेनिंग्स हम लोग सिखाते हैं लोग को, उनके लिए कोर्स मॉड्यूल बना के, उनको वीडियो बना के उनको दिखाया जाता है। 3 से 5 दिन की ट्रेनिंग में सिखाया जा सकता है। हमारे कुछ बड़े ट्रेनिंग्स भी होते हैं जो वेस्ट, सोलर एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग के लिए है, तो इस केस में हम गवर्नमेंट की जो ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम MoEFCC, दैट इज वन एंड पर्यावरण मंत्रालय जो है, तो उनके साथ मिलके उनकी ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो चलती है उसके अंदर हमने ये कोशिश की है। तो आज तक 1500 बच्चों को इन एरियाज में हम लोगों ने ट्रेनिंग दिए है। अब इन लोग क्या करते हैं, जो एक एक महीना का ट्रेनिंग करते हैं हम लोग, रेसिडेंशियल होती है ये ट्रेनिंग। अब इन ट्रेनिंग में ये लोगों को सिखाया जाता है कैसे सोलर पैनल को यूज करके आप ये डिफरेंट इलेक्ट्रिसिटी कैसे मिलेगा आपको, और उन इलेक्ट्रिसिटी को किस किस चीज में आप यूज कर सकते हो, जहां बैटरी की जरूरत है वहां पे आप यूज करो। फार्मर्स बैकग्राउंड से जो लोग है उनको सिखाए है, जो ये जो उनका पॉली हाउस बनाया जाता है जिसके अंदर आपको एक टेम्परेचर कंट्रोल होता है, तो सर्दियों में गर्मियों में तो कहीं पंखा वगैरह चलाना, उस केस में सोलर टेक्नोलॉजी की जो बिजली है वो कैसे यूज कर सकते हो, ये सब चीज उनको सिखाया जाता है। सिमिलरली जब आप वेस्ट मैनेजमेंट में आते हो, तो हम लोगों ने कोविड के बाद जो बड़ा झमेला था, जो बहुत सारे हैजर्डस वेस्ट, मेडिकल वेस्ट बन रहा था, तो उसको किस तरीके से हैंडल करना चाहिए, लोगों को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं थी, तो हम लोगों ने उनको ट्रेन किए है जो किस तरीके से वो एक एक सामान को मैनेज करेंगे, उससे कैसे PPE किट बनाया जा सकता है।

0: इन सब चीज की बारे में उनको नॉलेज दिए है, कैसे इसको मल्चिंग जिसको बोलते हैं वो किया जा सके ताकि उस वेस्ट प्रोडक्ट को दोबारा किसी चीज में यूज किया जाए. तो इन टाइप की ट्रेनिंग जो लोगों को दिए है, तो उसमें हमने महिलाओं के लिए रखे थे ये ट्रेनिंग. हमारा चार ट्रेनिंग अब तक हुआ है, चारों ट्रेनिंग में सारे के सारे महिलाओं को जॉब मिल गई है. ये जो नियर बाई जो नर्सिंग होम्स है वहाँ इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे प्रदूषण हमें बोला जाता है जो 25% प्रदूषण सिटी लेवल में आता है ये परिवहन से, तो स्वच्छ परिवहन का तहत हम लोगों को कोशिश करना चाहिए इलेक्ट्रिक व्हीकल कैसे यूज करें. अब इलेक्ट्रिक व्हीकल यूज करने के लिए मेजर प्रॉब्लम है जो हमारे पास चार्जिंग स्टेशन सही से नहीं है, और अगर चार्जिंग स्टेशन है भी वो काम नहीं करता, तो इसलिए हमें रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस के लिए चाहिए था काफी सारे चार्ज पॉइंट ऑपरेटर्स जो ट्रेंड हो, स्किल्ड हो. तो इन टाइप की लोगों को हम लोगों ने ट्रेन कराया जो बेसिकली इसमें हमें सपोर्ट कर रहा है. कॉरपोरेट लेवल का भी लोग, जैसे कि मर्सिडीज से हमें सपोर्ट मिलता है, मर्सिडीज बेंच से, तो इनके साथ मिलकर हम लोगों ने कुछ कोर्स मॉड्यूल बनाया जो गवर्नमेंट अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल अप्रूव्ड कोर्स मॉड्यूल है. तो उन कोर्स को जब उनको सिखाया जाता है तो वो लोग एक्चुअली आईओटी ड्रिवन हो चार्जिंग स्टेशन उनको भी बेसिकली मैनेज कर सकते हैं और कोशिश कर सकता है जो उसको रिपेयरिंग भी. तो इसमें हमारे लिए क्या हो रहा है एडवांटेज, जब एक चार्जिंग मशीन खराब होता है उसको दोबारा रिपेयरिंग के लिए भेजना नहीं, वो वहीं पे मैक्सिमम काम उसका हो जाता है. नेशनल एजुकेशन पॉलिसी चाहती भी है जो लाइब्रेरी में जो रिसोर्स है उनको यूज करे लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स और आगे चल के उनसे लोगों को शिक्षा प्रदान करे. अब मेरा कहने का मतलब है वो शिक्षा ऐसा होना चाहिए जो लाइफ में यूज करे और उससे उनको रोजगार भी मिले, या तो उनको अपना जो निजी समस्या है उन चीज को ठीक ठाक कर पाए. ये जो यूनिवर्सिटी सेटअप है, यूनिवर्सिटी सेटअप में आप लोग कुछ जो भी लोग वहां आएंगे उनको एक स्टैंडर्ड प्रशिक्षण दे पाएंगे, लेकिन बहुत सारे केस में हमें वोकेशनल ट्रेनिंग की जरूरत है जो यूनिवर्सिटी सेटअप में नहीं पॉसिबल. उन केस में अगर हमारा कुछ स्टैंडर्डाइज्ड कोर्स बने जो एनसीफेट में अप्रूव कराया जाए जो गवर्नमेंट की है, तो फिर वो छोटे छोटे कोर्सेस जो बेसिकली यूनिवर्सिटी की एक एक साल वाली कोर्स नहीं, मे बी 5 दिन वाली कोर्स, तो वो चीज डायरेक्टली उनको सिखा के उनकी बेनिफिट हो सकता है.
1: देखिए कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात तो कई सालों से है. माननीय प्रधानमंत्री जी ने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ साइंटिस्ट की बात की, अब आ रहा है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं उनको भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, न केवल कि सिर्फ शिक्षा देने में बल्कि एक समग्र शिक्षा जिसमें सामाजिक सरोकार भी जुड़े हुए हैं उनसे. और आपने एक नई बात की है कि पुस्तकालयों को भी किस तरह से सामाजिक सरोकारों से जुड़ना चाहिए, उनको समाज के लोगों तक, जरूरतमंदों तक पहुँचना चाहिए. क्योंकि पुस्तकालय जब हरित पुस्तकालय बनेगी तो न केवल ये ज्ञान प्रदान करेंगे बल्कि एक ऐसे भविष्य के निर्माण में भी मदद करेंगे जो टिकाऊ और पर्यावरण के अनुकूल हो. डॉक्टर पी के भट्टाचार्य जी, आप आकाशवाणी के स्टूडियो में आए, आपने इतने महत्वपूर्ण विषयों में जो पुस्तकालयों की बदलती हुई भूमिका है, जो उसका महत्व है आधुनिक युग में विज्ञान प्रौद्योगिकी और पर्यावरणीय मुद्दों को लेकर के, उन सब बातों पर विस्तृत जानकारियां दी आकाशवाणी आने के लिए. और इन सब जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.
0: थैंक यू.
2: इसी के साथ विज्ञान पत्रिका का ये अंक संपन्न होता है. प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा. ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से प्रसारित किया गया.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे विज्ञान पत्रिका कार्यक्रम। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं, मीडियम वेव 366।

Mama.

0: Somnath Temple in Gujarat. Addressing a grand gathering at the Somnath Temple complex on the occasion of its 75th consecration anniversary, Prime Minister hailed the event as far more than a ceremonial occasion, but rather a declaration of India's eternal consciousness and civilizational resilience. Let's listen in to what the Prime Minister said in his own words.
1: 75 saal pehle, aaj ke hi din, Somnath Mandir ki punarsthapana, ye koi sadharan avsar nahi tha. अगर 1947 में भारत आजाद हुआ था तो 1951 में सोमनाथ की प्राण प्रतिष्ठा ने भारत की स्वतंत्र चेतना का उद्घोष किया था. आजादी के समय सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को जोड़कर एक भारत का आधुनिक स्वरूप गढ़ा था. तो साथ ही सोमनाथ के पुनर्निर्माण से उन्होंने दुनिया को बताया था भारत केवल आजाद

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारतीय जनता पार्टी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज असम के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।
1: मैं श्री हिमंत बिस्व शर्मा ईश्वर नाम शपथ लो जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति मैं प्रकृत विश्वास और आनुगत्य पोषण करी।
0: श्री शर्मा के साथ चार मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें से दो भाजपा के और एक एक सहयोगी दल असम गण परिषद तथा बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के हैं। ये असम में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की तीसरी बार सरकार है। श्री शर्मा ने लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। वे राज्य में ये उपलब्धि हासिल करने वाले एकमात्र गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन तथा एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री भी उपस्थित हैं। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भाजपा के चुनाव प्रभारी डॉ. मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। तमिलनाडु में ऑल इंडिया अन्ना डीएमके के 30 विधायकों द्वारा पी वेलुमणि को विधायक दल का नेता और सी विजय भास्कर को सचेतक चुनने की घोषणा के साथ राज्य की राजनीतिक स्थिति में उलटफेर हुआ है। इन विधायकों ने अस्थायी अध्यक्ष करुपैया से मुलाकात कर अपने हस्ताक्षर वाला पत्र उन्हें सौंपा। वहीं 17 विधायकों के एक अन्य समूह ने ई पलनीसामी को विधायक दल का नेता चुना है। इस विधानसभा सत्र में मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नई सरकार को बुधवार तक बहुमत साबित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। इससे पहले कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कल कोलकाता से गिरफ्तार कर लिया। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासन में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है।

घर आंगन। एफएम गोल्ड 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं अमित कमल आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं घर आंगन कार्यक्रम में। दोस्तों, इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज पर भी सुन सकते हैं। साथ ही इस कार्यक्रम को आप आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर भी सुन सकते हैं। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, सामने खड़ी विपत्ति से डरे नहीं बल्कि उसका सामना करें।

ये गीत आपने सुना इजाजत फिल्म से आशा जी की आवाज में। घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम 90 साल पूरे होने पर आकाशवाणी के बारे में इतिहास की बात कर रहे हैं और इसी में 90 वर्षों का हम सफर आकाशवाणी के आजादी के ऐतिहासिक प्रसारण की अब हम बात कर लेते हैं। आजादी की पहली सुबह और वंदे मातरम की गूंज, 15 अगस्त 1947 की वो सुबह 6:30 पर प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित ओंकार नाथ ठाकुर ने आकाशवाणी से वंदे मातरम का पूर्ण संस्करण प्रस्तुत किया। ये गायन सरदार वल्लभ भाई पटेल के विशेष अनुरोध पर बंगिया काफी राग में पिरोकर प्रस्तुत किया गया था। राष्ट्रगीत के प्रति पूर्ण सम्मान प्रकट करने के लिए पंडित जी ने रेडियो स्टूडियो में खड़े होकर ये प्रस्तुति दी थी। ये गायन केवल संगीत नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत की सांस्कृतिक अस्मिता और करोड़ों भारतीयों की भावनाओं का प्रतीक बन गया। 24 जनवरी सन 1950 को वंदे मातरम को आधिकारिक रूप से राष्ट्रीय गीत का दर्जा भी दिया गया।

0: 90 वर्षों का सुनहरा सफर, संगीत, संस्कृति और यादों का घर, हर दिल की धड़कन, हर मन के संग, आकाशवाणी के संग, यादों के रंग।
1: सुनिए FM गोल्ड 100.1 पर विशेष कार्यक्रम आकाशवाणी के संग यादों के रंग,
0: हर मंगलवार और गुरुवार दोपहर 3:10 पर,
1: जिसमें होंगी बातें आकाशवाणी के वरिष्ठ एवं अनुभवी प्रसारण कर्मियों और विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े रेडियो जगत के विशिष्ट व्यक्तित्वों के साथ।
0: आकाशवाणी के संग यादों के रंग सिर्फ FM गोल्ड 100.1 पर।

दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम आप सुन रहे हैं और मैं हूं आपके साथ अमित कमल। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं डेज ऑफ द डे की, इंटरनेशनल डे फॉर प्लांट हेल्थ। जी हां, हम जिस ऑक्सीजन में सांस लेते हैं उसका 98% पौधों से आता है। हम जो भोजन खाते हैं उसका 80% पौधों से प्राप्त होता है, लेकिन हर साल कीटों और बीमारियों के कारण हमारी लगभग 40% फसलें नष्ट हो जाती हैं, जिससे सभी के लिए भोजन और पोषण उपलब्ध कराने के प्रयासों में बाधा उत्पन्न होती है। इसी समस्या को दूर करने और जागरूकता फैलाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस यानी इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ 12 मई को मनाया जाता है। दोस्तों, ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा घोषित एक वैश्विक दिवस है जो पौधों के स्वास्थ्य की रक्षा के महत्व को उजागर करता है, क्योंकि ये भूख को कम करने, गरीबी मिटाने, पर्यावरण की रक्षा करने और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। अंतर्राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस का इस साल का थीम खाद्य सुरक्षा के लिए पादप और जैव सुरक्षा है, यानी प्लांट बायो सिक्योरिटी फॉर फूड सिक्योरिटी है। यह विषय पौधों को कीटों और बीमारियों से बचाकर वैश्विक खाद्य आपूर्ति को सुरक्षित रखने के महत्व पर जोर देता है।

हैं, तो ये जानकारी आपके लिए है। हाल ही में डीआरडीओ ने दिल्ली और हल्द्वानी के लिए इंटर्नशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है। इस इंटर्नशिप में अनुभव के साथ आपको हर महीने पैसे भी मिलेंगे। जो विद्यार्थी बीई बीटेक और एमई एमटेक के फाइनल ईयर में पहुंच चुके हैं वो इसमें इंटर्नशिप कर सकते हैं। डीआरडीओ की इस इंटर्नशिप प्रोग्राम की अवधि 6 महीने तक की है, जिसकी शुरुआत 1 जुलाई 2026 से हो सकती है। चयनित उम्मीदवारों को ₹30,000 दिया जाएगा। शुरुआत के 3 महीने पूरे होने पर ₹15,000 और बाद के 3 महीने पूरे होने पर ₹15,000 दिए जाएंगे। दोस्तों, स्टूडेंट्स के लिए कम से कम 15 दिन इंटर्नशिप में एक्टिव रहना जरूरी होगा और 6 महीने के इंटर्नशिप पूरी कर लेने पर सर्टिफिकेट दिया जाएगा। DRDO इंटर्नशिप के तहत आप www.drdo.gov.in/drdo/en/offerings/vacancy पर जाकर आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद सारा प्रोसेस ऑफलाइन होगा।

दोस्तों, बहुत से छात्र घंटों पढ़ाई नहीं करना चाहते। वो ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें कम पर्दा हो और करियर भी सेट हो जाए। आज के समय में ऐसे कई डिप्लोमा कोर्स हैं जिन्हें करके अच्छी सैलरी पाई जा सकती है, और ऐसे ही कुछ शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में हम बात करेंगे। ये कोर्स 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बीच पूरे हो जाते हैं। अगर आप भी ऐसे कोर्सेज की तलाश कर रहे हैं तो ये कोर्स आपके साथ साझा कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स करियर की डिमांड में है। इस कोर्स में SEO, सोशल मीडिया और एड्स जैसी स्किल्स सिखाई जाती है। इस कोर्स को करने के बाद नौकरी के साथ फ्रीलांसिंग के मौके भी मिलते हैं, और साथ ही आप ब्लॉगर्स के बूम के कारण वीडियो एडिटिंग स्किल्स में काफी अच्छी कमाई के अवसर मिल जाते हैं। अगर आपको क्रिएटिविटी काम करना पसंद है तो आप वीडियो एडिटिंग कोर्स कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर आपको कंप्यूटर में दिलचस्पी है और बीटेक आदि नहीं करना चाहते तो आप वेब डेवलपमेंट में HTML और CSS JavaScript जैसे कोर्स कर सकते हैं। इन्हें सीखकर आप वेबसाइट बना सकेंगे और इसमें भी आपको फ्रीलांस प्रोजेक्ट मिल जाते हैं। साथ ही साथ फोटोग्राफी वीडियोग्राफी का कोर्स करके आप इवेंट कॉरपोरेट शूट कर सकते हैं। इसके अलावा वेडिंग फोटोग्राफी तो है ही, इसके जरिए आप अपना चैनल भी बना सकते हैं और मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर सकते हैं। ये सीखकर खुद आप अपना काम शुरू कर सकती हैं और इससे अच्छी कमाई भी होती है। होटल मैनेजमेंट का शॉर्ट टर्म कोर्स भी आजकल चलन में है, जिसमें आप होटल मैनेजमेंट से जुड़े किसी स्किल्स जैसे कुकिंग, सर्विस डेस्क, फ्रंट ऑफिस यानी हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं।

लता मंगेशकर की आवाज़ में ये गीत आपने सुना सम्राट फिल्म से। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक ना एक सफलता की कहानी आपके साथ साझा ज़रूर करते हैं और आज ये एक कहानी हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के एक छोटे से गांव से निकली संजू मिश्रा की कहानी इस बात का उदाहरण है कि सीमित संसाधनों में भी बड़ा मुकाम हासिल किया जा सकता है। सिर्फ 10,000 की छोटी सी पूंजी से शुरू किया गया उनका अचार का काम आज सालाना 10 से 15 लाख रुपए के टर्नओवर में बदल चुका है। संजू मिश्रा ने बीएड कर रखी है। उनका सपना था शिक्षक बनना, लेकिन कुछ कारणों से उनका सपना अधूरा रह गया और वो शिक्षक नहीं बन पाए। वे इस समय प्राइवेट इंस्टीट्यूट में शिक्षक हैं, बच्चों को कॉम्पिटिशन की तैयारी करवाती हैं। संजू मिश्रा कंपटीशन की तैयारी के साथ साथ अचार का बिजनेस कर रहे हैं। संजू मिश्रा शिक्षक न बन पाने के बाद काफी निराश हो गई थी। उसी समय इनके भाई ने इन्हें मोटिवेट किया और उन्हें बताया कि उनके अंदर एक हुनर है, वो है अचार बनाने का। जी हाँ, उन्होंने कहा कि वो अचार बहुत अच्छा बनाती हैं। इनके भाई ने ही अचार के बिजनेस का आइडिया संजू को दिया। संजू ने मात्र 10,000 से अचार के बिजनेस की शुरुआत की। शुरुआत में संजू मिश्रा ने घर पर ही आम, नींबू और मिर्च का अचार बनाना शुरू किया और वो अपने बनाए अचार को आसपास के गांव और मोहल्लों में बेचा करती थी। उनके अचार का स्वाद इतना अच्छा होता था कि लोगों को काफी पसंद आने लगा। धीरे धीरे उनके अचार की मांग बढ़ने लगी और ज्यादा लोग उनसे अचार खरीदने लगे। संजू मिश्रा के अचार की डिमांड बढ़ने लगी तो उन्होंने अपने काम को आगे बढ़ाने का फैसला लिया। उन्होंने अचार की मात्रा बढ़ाई और अलग अलग तरीके के अचार बनाना शुरू कर दिया। अब वो सिर्फ आम और नींबू ही नहीं बल्कि लहसुन, कटहल और मिक्स अचार भी बनाने लगे हैं। इस समय उनके पास लगभग 18 प्रकार के अचार उपलब्ध हैं। ये सफलता की कहानी हमें प्रेरणा देती है कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता अगर उसे पूरी लगन के साथ किया जाए। और जब आप इस तरीके के काम करेंगे और सफल होंगे तो आपके लिए भी लोग ये गीत गाएंगे।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में ये गीत आपने सुना कभी कभी फिल्म से। कार्यक्रम चल रहा है घर आंगन। दोस्तों, घर आंगन कार्यक्रम में हम एक छोटी मोटी सी जानकारी आपके साथ हमेशा साझा करते रहते हैं। ऐसी ही एक जान

जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं दोस्तों। शेफ की टोपी को टोक ब्लैंच कहा जाता है, जिसका मतलब होता है सफेद टोपी। इसका डिजाइन 16वीं सदी में फ्रेंच किचन से आया था। इसमें 100 प्लेट्स यानी सिलवटें होती हैं, जो उस शेफ के 100 तरीकों के व्यंजन पकाने की कला का प्रतीक मानी जाती हैं। शेफ सिर्फ टोपी को फैशन के लिए नहीं पहनते, बल्कि शेफ की कैप हाइजीन और सम्मान का प्रतीक भी मानी जाती है। अगर रसोई कोई साम्राज्य है तो शेफ ही उसका राजा होता है और उसके सिर पर टोपी उसका ताज होती है। शेफ की सफेद यूनिफॉर्म में उनकी ऊंची टोपी सबका ध्यान अपनी ओर खींचती है। शेफ के लिए उनकी टोपी भी राजा के लिए उनके ताज जितनी ही कीमती होती है। लेकिन दोस्तों, टोपी के ऊंची होने के पीछे की वजह से लोग अनजान हैं। आखिर शेफ की कैप ऊंची क्यों होती है, ये सवाल कभी ना कभी आपके दिमाग में भी आया होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका सबसे पहला कारण है कि खाने में बाल न गिरे, इसलिए शेफ ऊंची टोपी पहनते हैं। और यही वजह है कि प्रोफेशनल किचन में शेफ्स को सिर ढककर ही काम करने की इजाजत होती है। इसके अलावा जैसे आर्मी अफसर अपनी यूनिफॉर्म से पहचाने जाते हैं, वैसे ही शेफ की पहचान उनकी वाइट यूनिफॉर्म और टोपी से होती है। टोपी की ऊंचाई शेफ की पोजीशन और एक्सपीरियंस को बताती है। इसे लेकर एक कहानी भी प्रचलित है दोस्तों, जिसके मुताबिक 16वीं सदी में इंग्लैंड के राजाओं में से एक राजा हेनरी ने भोजन में बाल पाए जाने पर एक रसोई का सिर कटवा दिया था। इस घटना के बाद सभी रसोइयों को खाना बनाते समय टोपी पहनने का आदेश दिया गया था और इससे उनके बाल पके हुए भोजन से दूर रहते थे और रसोई में स्वच्छता और साफ सफाई बनी रहती थी। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी आपके लिए।

वक्त फिल्म से ये गीत आपने सुना आशा जी की आवाज़ में। घर आंगन कार्यक्रम सुन रहे हैं और बच्चों की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों आजकल माता पिता को ज़्यादातर यही शिकायत रहती है कि उनका बच्चा पढ़ना नहीं चाहता या फिर किताबों को देखकर ही वो दूर दूर भागने लगता है। इस वजह से कई बार पेरेंट्स बच्चों पर काफ़ी गुस्सा होने लगते हैं और उन्हें डांटने लगते हैं। बता दें आपकी आदत बच्चे को पढ़ाई से तो दूर करेगी ही और साथ ही आपसे डर की वजह भी बनेगी। लेकिन इससे और इसके लिए हम आपके साथ कुछ बातें साझा कर रहे हैं जिससे बच्चे का मन पढ़ाई में लगेगा और वो फोकस भी कर पाएगा। अक्सर देखा जाता है दोस्तों कि घर में जिस तरह का माहौल होता है वही बच्चों के व्यवहार में देखने को मिलता है। दरअसल बच्चे हमेशा अपने माता पिता और घर के बाकी बड़ों से देखकर ही सीख लेते हैं। बच्चों में पढ़ाई के प्रति ललक जगानी हो तो इसके लिए आपको खुद भी उनके साथ बैठकर पढ़ना होगा। इसके लिए आप उनके सामने किताबें पढ़ने बैठ सकते हैं, उनमें से उन्हें कुछ कहानी पढ़ा सकते हैं, सुना सकते हैं। इस तरह से धीरे धीरे बच्चों में किताबों के प्रति उत्सुकता बढ़ेगी। इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाते वक्त पूरा उदाहरण देकर समझाइए। इसके लिए आप छोटे छोटे किस्से कहानियों की मदद ले सकते हैं। एक और काम आप कर सकते हैं कि बचपन से ही बच्चों को लाइब्रेरी विजिट करवाते रहें। जहां पढ़ाई का माहौल हो तो आगे चलकर भी उनमें किताबों के प्रति ललक बनी रहेगी और लाइब्रेरी से बढ़िया जगह कोई हो ही नहीं सकती। और बच्चों को अलग अलग जगहों की लाइब्रेरी घुमाने लेकर जाएं या फिर उन्हें बुक स्टोर्स पर ले जाकर बुक्स दिखा सकते हैं और अलग अलग किताबों को लेकर उनसे चर्चा कर सकते हैं। बच्चे छोटी छोटी बातों से ही खुश हो जाते हैं। जब भी आपका बच्चा पढ़ाई करने बैठे तो उसे शाबाशी जरूर दें, उसमें रीडिंग अचीवमेंट को सेलिब्रेट करें और साथ ही इससे बच्चे में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी और वह आगे और भी अच्छा करने की कोशिश करेगा और कहीं दूर तक जा सकता है। आपका बच्चा कुछ मुकाम हासिल कर सकता है।

लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज़ में ये गीत आपने सुना दूसरा आदमी फिल्म से। दोस्तों, आज सारी चीज़ों की बातें हमने कर ली घर आंगन कार्यक्रम में, और अगर खाने पीने की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। दोस्तों, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडा और हल्का रखने के लिए लोग तरह तरह की चीज़ें खाते हैं। ऐसे में सत्तू एक सुपर फूड की तरह काम करता है। ये न सिर्फ ठंडक देता है बल्कि पाचन को भी बेहतर बनाता है। सत्तू से बनी चटनी स्वाद में जबरदस्त होती है और इसे रोटी, परांठा या चावल के साथ आसानी से खाया जा सकता है। अगर आप भी कुछ हेल्दी और टेस्टी ट्राई करना चाहते हैं तो सत्तू की चटनी जरूर बनाएं। तो चलिए जानते हैं इसकी आसान सी रेसिपी। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले एक कटोरी में 3 या 4 चम्मच सत्तू लें। इसमें बारीक कटा प्याज, लहसुन और हरी मिर्च डालें। अब इसमें नमक, नींबू का रस और गरम करके सरसों का तेल डालें। फिर धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके ठंडा पानी डालते हुए इसे अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखें कि चटनी ज़्यादा पतली ना हो, हल्की गाढ़ी रखें। आखिर में ऊपर से हरा धनिया डालकर अच्छी तरह मिला लें और आपकी स्वादिष्ट और ठंडी ठंडी सत्तू की चटनी तैयार है। आप भी खाएं और अपने अपनों को भी खिलाएं।

ये गीत आप सुन रहे हैं आए दिन बहार की फिल्म से और आवाज है लता मंगेशकर की। इसी गीत के साथ आपको छोड़े जा रहे हैं अगली मुलाकात तक। अपने दोस्त अमित कमल को यहीं पर दीजिए इजाजत और सुनते रहिए FM गोल्ड।

0: पर आंगन। आपके अस्तित्व आपके व्यक्तित्व से जुड़ा। आपका घर आंगन।
1: घर आंगन।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने चिकित्सकीय शिक्षा में दाखिले के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली पर टिके विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एनटीए ने कहा है कि परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे तथा पुनः परीक्षा में उपयोग किए जाएंगे। एजेंसी ने कहा है कि दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की जरूरत नहीं होगी और इसके लिए कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को

0: স্থাপিত ভারতর সংবিধানের প্রতি মই প্রকৃত বিশ্বাস আর আনুগত্য পোষণ করি।
1: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।

0: the border security force within 45 days for fencing the borders with Bangladesh was among the decisions. In Uttar Pradesh, an FIR has been registered in Mahoba district against Samajwadi Party MP Ajendra Singh Lodhi over alleged objectionable remarks against Prime Minister Narendra Modi. The case was lodged at Mahoba Kotwali police station following a complaint filed by BJP leader Satyendra Pratap. Police said the FIR has been registered under various sections of the Bharatiya Nyaya Sanhita. The controversy erupted after Lodhi allegedly made objectionable remarks against the Prime Minister while reacting to Mr. Modi's appeal urging people not to buy gold. President Draupadi Murmu today conferred the National Florence Nightingale Awards 2026 to 15 nursing professionals at a function held at Rashtrapati Bhavan. The award has been given for their outstanding contribution in the field of nursing. These prestigious awards are presented to registered nurses, midwives, auxiliary nurse midwives and lady health visitors serving across central and state governments, union territories and voluntary organizations. International Nurses Day is being celebrated today, marking the birth anniversary of Florence Nightingale, the founder of modern nursing. The theme this year is Our Nurses, Our Future, Empowered Nurses Save Lives. Benchmark domestic equity indices were trading around 1.3% lower in afternoon trade today. The Sensex plunged 1,041 points to 74,975, while the Nifty shed 297 points. To 23,519 when reports last came in. And with that, we end this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है. मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर. और आइए अब प्रस्तुत है लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से. लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश.
2: पुलिस?
3: मिस सीमा
2: जी,
3: अभी पुलिस स्टेशन आई है. रुकिए, वरना घर आ जाएंगे.
2: क्यों? लेकिन मैं
3: अकेले दूसरे कमरे में जाइए. आपका बेटा हमारे कस्टडी में है और आप डिजिटल अरेस्ट में हो.
2: डिजिटल अरेस्ट?
3: 1,00,000 दो, बन जाओगे.
2: इतने पैसे?
3: अच्छा ठीक है, एक लिंक भेजिए. अभी प्रोसेसिंग के लिए 30,000 दो, वरना बेटा जेल जाएगा.
2: जेल तो तुम जाओगे, तुम्हारा चेहरा रिकॉर्ड हो चुका है. डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता, ये सब फ्रॉड है. इसीलिए पैनिक ना करें. पुलिस, बैंक, आरबीआई इत्यादि के नाम पर आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें. उन्हें पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें.
4: हेलो मम्मा.
5: आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए.
1: आदाब, सत श्री अकाल. स्वीकार कीजिए आपकी अपनी दोस्त और इस लाइव रेडियो कार्यक्रम की होस्ट रैना तंवर का खुशनुमा प्यार भरा नमस्कार. तो दोस्तों, ये घड़ी है हमारे और आपके पसंदीदा लाइव रेडियो कार्यक्रम एक ही फिल्म से. और आज का हमारा खास सफर समर्पित है बॉलीवुड के एक ऐसी फिल्म को जिसमें है कॉमेडी, रोमांस, मस्ती, एक्शन और फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज. जी हाँ दोस्तों, आज बात होगी 1982 की सुपरहिट फिल्म की जिसमें नजर आए थे बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन डबल रोल में और उनके साथ खूबसूरत अभिनेत्री का किरदार निभाया था हेमा मालिनी जी ने. तो रहना है तो गेस्ट तो करके आपको कुछ तो कहना है. जल्दी से मेल करके मैसेज करें और जो भी हमें सबसे पहले मैसेज करके जवाब देगा वो हमारे इस कार्यक्रम का होगा फेवरेट श्रोता. हमारा ईमेल आईडी ipradiodelhi@gmail.com. तो हिंट तो हमने दे ही दिया है और यकीनन हमारे श्रोता बहुत समझदार हैं, समझ ही गए होंगे कि हम किस फिल्म की बात कर रहे हैं. तो शुरू करते हैं ये फिल्मी सफर इस खूबसूरत नगमे के साथ. सुनते हैं, मजे लेते हैं और इंतजार करूंगी मैं आपके सबसे पहले भेजने वाले श्रोता के संदेश का.

ये गाना किस फिल्म का था, ये तो आप सभी को पता चल गया होगा और हमारे पास जवाब भी बेहद सारे आ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज का। फिल्म सत्ते पे सत्ता, जी हाँ बिल्कुल सही। और डीबी राणा जी ने सबसे पहले हमें जवाब दिया है, नेहरू विहार दिल्ली से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें मैसेज देने के लिए। लेकिन आज के हमारे फेवरेट श्रोता, जी बता ही दिया हमने नाम उनका। और वाह क्या कमाल का गीत है ना दोस्तों, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया। आज भी जब ये गाना बजता है तो दिल अपने आप पुराने दिनों की गलियों में घूमने लगता है। इस गाने की खास बात यह थी कि इसे फिल्म के सातों भाइयों की दोस्ती और जिंदगी के अलग अंदाज को दिखाने के लिए शूट किया गया था। और क्या आप जानते हैं, इस फिल्म की कहानी हॉलीवुड फिल्म सेवन ब्राइड्स फॉर सेवन ब्रदर्स से प्रेरित थी, लेकिन बॉलीवुड अंदाज में इसे इतना मजेदार बनाया गया कि ये अपने समय की सबसे यादगार फिल्मों में शामिल हो गई। अब जरा सोचिए, सात शरारती भाई और उनकी जिंदगी में एक आती है समझदार लड़की यानी हेमा मालिनी जी। फिल्म में उनका किरदार पूरी कहानी को खूबसूरती से बदल देता है। और अब वक्त है अगले गाने का, जो प्यार और मासूमियत से भरा है। और हमारे पास मैसेज और मुकेश गुप्ता, श्रीमती श्रद्धा, अदिति, राधे।

दीपक, अंकुर, राघव, और फिर हमारे पास अजीत भास्कर का भी आया है मैसेज, और बिट्टू गणेश एक फिल्म से। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। सुरेश, पूनम, गंगेन, इसी तरीके से हमें बहुत सारे भूषण खेरा जी की फैमिली, उन पूरे परिवार से हमें मैसेज आया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और सुनते हैं अगला ये प्यारा सा नगमा।

जी हाँ दोस्तों, दिल भर मेरे किशोर कुमार और आशा भोसले की आवाज में ये गीत आज भी रोमांटिक प्लेलिस्ट की शान बना देता है। कहते हैं इस गाने की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन और हेमा मालिनी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री इतनी शानदार थी कि दर्शकों की इस जोड़े को खूब पसंद करा था। और दोस्तों, सत्ते पे सत्ता सिर्फ एक कॉमेडी फिल्म नहीं, बल्कि इसमें फैमिली बॉन्डिंग, भाईचारा, प्यार का खूबसूरत संदेश भी था। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने एक सीधा साधा भाई और एक खतरनाक विलेन दोनों किरदार बखूबी निभाए थे और यही डबल रोल फिल्म का सबसे बड़ा आकर्षण बना। अब माहौल का थोड़ा सा और मस्ती भरा बना लेते हैं।

गंगनेजा ने हमें जलालाबाद वेस्ट से सुरेश पूनम गंगेजा गंगनेजा जी ने मैसेज किया है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मैसेज करने के लिए। और अब सुनते हैं हमारा ये अगला नगमा, बहुत ही खूबसूरत। और सच में ये गाना बहुत ही खूबसूरत है, जिंदगी ऐसे ही बतानी चाहिए।

और जिन्होंने अभी अभी रेडियो ऑन किया है उन्हें हम बता दें कि आप सुन रहे हैं आप ही का पसंदीदा कार्यक्रम ये जो है एक ही फिल्म से। यस, और मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त और होस्ट रैना तंवर, और हम मस्ती भरे सारे गाने और फिल्म को फिल्म के दिलचस्प किस्सों के साथ लेकर आए हैं। लेकिन उससे पहले एक सुनते हैं संदेश।

0: हेलो
1: राजेश जी, मैं पुलिस थाने से बोल रहा हूँ।
0: फिर से
2: आप डिजिटल अरेस्ट में हो, दूसरे कमरे में जाइए अकेले। आपके पार्सल में ड्रग्स मिले हैं, लंबे जाएंगे।
3: 10 लाख दीजिए, बच जाएंगे।
0: सर इतने कहाँ से?
3: एक लिंक भेजा है, अभी प्रोसेसिंग के लिए
2: 2 लाख भेजिए, बाकी बाद में।
0: 2 लाख
4: क्या हुआ पापा?
0: बेटा ये कह रहे हैं कि मेरे पार्सल में से ड्रग्स मिले हैं।
2: अरे
0: काट दिया।
4: पैनिक मत कीजिए पापा, डिजिटल अरेस्ट जैसा कुछ नहीं होता है, ये सब फ्रॉड है।
0: फ्रॉड?
4: पुलिस, बैंक, RBI इत्यादि के नाम से आने वाले साइबर अपराधियों के फोन या वीडियो कॉल से सावधान रहें, उन्हें कोई पैसे ना भेजें और तुरंत पुलिस में रिपोर्ट करें। अगर समझदारी नहीं दिखाओगे
0: तो पैसे गवाओगे।
5: RBI कहता है,
6: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
7: तो हम बात कर रहे हैं सत्य पे सत्ता फिल्म की, और आज देखिए दोस्तों, वाह कितना अच्छा दोस्त सुन, अभी हमने गाना सुना ना, जिंदगी मिलके बिताएंगे, तो हम सब, ये गाना ना बहुत ही खूबसूरत है, और सच में जिंदगी बहुत छोटी सी है ना, तो जिंदगी हमेशा मिलके बितानी चाहिए। ये सिर्फ एक गाना नहीं बल्कि दोस्ती और भाईचारे का एक एंथम बन चुका है। आज भी कई दोस्त अपनी यादों में इस गीत को जरूर शामिल करते हैं। इस फिल्म के सातों भाइयों के नाम भी बड़े दिलचस्प थे, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि, यानी हफ्ते के 7 दिनों पर आधारित 7 किरदार। और दोस्तों कहते हैं कि जो फिल्म के सेट पर ना खूब मस्ती होती थी। कहा जाता है कि शूटिंग के दौरान सभी कलाकार सचमुच एक परिवार की तरह रहने लगे थे, और 7 भाइयों की कहानी, जो अनाथ थे, एक दूर दराज फार्म हाउस में रहते थे, अनपढ़ और असभ्य थे। बड़ा भाई रवि जो है बाकी 6 भाइयों को पालन पोषण करता, और रवि को इंदु यानी हेमा मालिनी से प्यार हो जाता है और वो शादी कर लेते। इंदु घर में आती है तो सब जंगली भाइयों को ना सभ्य बनाने की बहुत कोशिश करती है। कहानी में मोड़ तब आता है जब रवि के हम शक्ल बाबू खूंखार विलन यानी की एंट्री होती है, और एक साजिश के तहत दोनों सभी भाइयों की जिंदगी में उथल पुथल मच जाती है। अब जरा रोमांस और शरारत का तड़का लगाया जाए, तो तैयार हो जाइए अगले खूबसूरत गीत के लिए।

0: अटक गया
1: क्यों
0: कोई फर्क नहीं अलबत्ता कोई फर्क नहीं अलबत्ता
2: कोई फर्क नहीं अलबत्ता दुखी बेदुखी।

0: सुनो सुनो सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: क्या बात है दोस्तों, इस गाने की एनर्जी आज भी लोगों को झूमने पर मजबूर कर देती है ना। आरडी बर्मन साहब के संगीत की एक सही यही खासियत थी कि उनके गाने वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि और भी ज्यादा खूबसूरत हो जाते हैं। और हम बता दें कि हमारे पास बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, जिसमें कि हमें नेहरू चौक प्रणव से सुरेश, अनीता जागव, सोनल और मैसेज किया है, और उसी तरीके से हमें डोल राणा जी ने किया था, दर्शन गौर जी ने हमें मैसेज किया है, और उसी में अजीत भास्कर और सुदर्शन मुखी जी ने मैसेज किया है, धर्मेंद्र छिप्पा जी ने मैसेज किया है हमें राजस्थान से, धर्मेंद्र कपिल पूजा गोपालगढ़, और संजय साहू पोटियाला से हमें मैसेज कर रहे हैं। पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी के मैसेज करने के लिए। हमें सुनील पाठक जी ने मैसेज किया है हमें, और इसी तरह से देव शंकर तामूरिया जी ने मैसेज किया है, मांगे राम जी ने मैसेज किया है हमें, और इसे उन्होंने हिमानी, शुभम, यश, ऋतु सभी ने हमें मैसेज किया है। लालगिरी से हमें गोस्वामी जी ने मैसेज किया है, और आर कुमार जी ने मैसेज किया है हमें, मिंटू पंजाब से, बंडिंग खेड़ा और पिंकी लवली आरती अरोड़ा, और लालगिरी जी ने, हरजिंदर सिंह भाटिया जी ने हमें मैसेज किया, एंजल, सोनू, पप्पी, हरजिंदर भाटिया जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। हरजिंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी पसंद कर रहे हैं हमारे कार्यक्रम को। और सुनते हैं जाते जाते ये वाला गीत, क्योंकि अब समय हमारा हो गया है, हमें अलविदा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर में जाते जाते सुनते हैं ये वाला गीत। तो दोस्तों आज के इस खूबसूरत सफर यही समाप्त करती हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आरडी बर्मन साहब के संगीत और ये सब फिल्म के जो सुनहरी यादें और दिल को छू जाने वाले गीत मैंने प्ले किए थे वो बहुत अच्छे लगे होंगे आपको। आपकी दोस्त रैना तंवर आपसे लेती है इजाजत, फिर मिलेंगे एक नई फिल्म गानों और कुछ जुड़ी यादों के साथ। जाते जाते इतना ही कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, क्योंकि मई के संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का भागीदार बनके एक अच्छे नागरिक की भूमिका निभाएं, क्योंकि ऑयल और पेट्रोल भी बहुत महंगा है भाई, पैदल चले जितना जा हो सकता, तो दूसरों के चेहरे पर मुस्कुराहट दे और आपके दिल को दे जो सुकून वो काम जरूर करे। सुनते रहिए आपका अपना आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ, क्योंकि हर आवाज कुछ कहती है मेरे दोस्त। बहुत बहुत शुक्रिया, इसी तरह से जुड़े रहिएगा हमारे कार्यक्रम के साथ।

जिनका मैं नाम नहीं ले पाई, कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। और नरेंद्र सूथक जी का भी मैसेज हमें आया है, और जाते जाते मैं नाम बता देती हूँ, हरजिंदर सिंह जी का भी आया है। बहुत सारे मैसेज आए हैं जिनको मैं ले नहीं पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, सारे ही हमारे बहुत ही खास श्रोता हैं। इसी तरह से जुड़े रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल मोहन जी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम एक ही फिल्म से। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। और अब से कुछ ही देर में हम सुनेंगे पंजाबी, उर्दू और इंग्लिश हिंदी में समाचार। तो जुड़े रहिए हमारे इस आकाशवाणी इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ।
1: नमस्कार, ए आकाशवाणी है। खबरां दे नाल मैं सरबजीत कौर। पहला इस बुलेटिन दियां खास खबरां। पेपर लीक होने के इल्जाम कारण नीट अंडर ग्रेजुएट परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के हुक्म दिए गए। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूजे कार्यकाल लई असम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। आज अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को साल 2026 लई राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड प्रदान किए। सीबीआई वालों लखां रुपए के कथित रिश्वतखोरी मामले में बीती देर रात पंजाब च मोहाली स्थित पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के दफ्तर से छापेमारी। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटन्स का मुकाबला शामी 7:30 बजे सनराइजर्स हैदराबाद न होगा। हुण खबरां विस्थार नाल। नैशनल टैसटिंग एजेंसी ने अंडर ग्रैजुएट मैडिकल सिक्ख्या विच दाखले लई इस महीने की 3 तरीक नूं होई नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करन दा फैसला कीता है। एक सोशल मीडिया पोस्ट विच एनटीए ने दस्सिया कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित विच अते राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली के भरोसे नूं मानता देंदे होए लिता गया है। एजेंसी ने भी कहा कि सरकार ने पेपर लीक के इल्जामों की व्यापक जांच लई मामले नूं केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई नूं भेजण दा फैसला कीता है। एजेंसी ने भी कहा कि ब्यूरो नूं पूरा सहयोग देगी और जांच लई लोड़ींदी सारी समग्री रिकॉर्ड ते सहायता प्रदान करेगी। एनटीए ने कहा कि यह फैसला केंद्रीय एजेंसियां दे नाल नाल एनटीए वालों जांच के नतीजों का मुलंकन करने तो बाद लिया गया है। एनटीए ने कहा कि परीक्षा लई नवी तरीक वक्रे तौर पर नोटिफाई की जाएगी। रजिस्ट्रेशन के वेरवे, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 लई चुनिया गया परीक्षा केंद्र बदलिया नहीं जाएगा तो दोबारा परीक्षा लई वरत्या जाएगा। एजेंसी ने भी कहा कि दोबारा परीक्षा लई मुड़ रजिस्टर करने की कोई लोड़ नहीं होगी तो कोई वादू परीक्षा फीस नहीं ली जाएगी। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता हिमंत बिस्व शर्मा ने आज लगातार दूजे कार्यकाल लई असम के मुख्यमंत्री वजों सहु चुकी। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी के खानबारा विच वैटनरी कॉलेज के मैदान विच कराए गए एक समारोह विच डॉ शर्मा नूं अहुदे ते सरकारी भेद गुप्त रखने की सहु चुकाई। डॉ शर्मा के नाल चार विधायकों ने भी मंत्री वजों सहु चुकी। इन्हां विच भाजपा तो रामेश्वर तेली, अजंता नियोग असाम गण परिषद तो अतुल बोरा, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट तो चरण बोरो शामिल सन। समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कई केंद्रीय मंत्री ते भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद सन। राष्ट्रीय लोकतंत्री गठजोल एनडीए 126 मैंबरी विधानसभा 102 सीटा प्राप्त करके असम विधानसभा लगातार तीजी बार सत्ता विच आया। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटा नाल सब तो वड्डी पार्टी वजो उभरी जदों कि इसके सहयोगी असम गण परिषद और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10-10 सीटा जितिया। केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निजी

आसाम के वजीर आला के ओहदे का हलफ लिया। गवर्नर लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। ये तकरीब गुवाहाटी के खानापाड़ा इलाके में वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में मुनक़िद हुई। डॉक्टर शर्मा के साथ चार अरकान असम्बली को भी काबीना वजीरों की हैसियत से हलफ दिलाया गया। इनमें बीजेपी के रामेश्वर तेली और अजंता नेओग, आसाम गण परिषद के अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट के चरण बोरो शामिल हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, बहुत से मरकजी उजरा और एनडीए की सरकार वाली रियासतों के उजराए आला ने इस तकरीब में शिरकत की। इसके साथ ही डॉक्टर शर्मा आसाम में ऐसे पहले गैर कांग्रेसी रहनुमा बन गए हैं जिन्होंने वजीर आला का ओहदा लगातार दूसरी बार संभाला है। कौमी जमहूरी इतिहाद एनडीए इस रियासत में लगातार तीसरी बार इकतदार में आया है। उसने 126 रुकनीय आसाम कानून साज असेंबली में 102 सीटें हासिल की थीं। भारतीय जनता पार्टी 82 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि उसकी इत्तेहादी पार्टियों आसाम गण परिषद एजीपी और बोडोलैंड पीपुल्स फ्रंट बीपीएफ को 10-10 सीटें हासिल हुई थीं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी जुमे से 5 मुल्कों मुत्तहिदा अरब अमारात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली का दौरा करेंगे। अपने दौरे के पहले मरहले में वजीर आजम जुमे को मुत्तहिदा अरब अमारात पहुंचेंगे, जहां वो सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से तवानाई से मुतालिक इश्तराक और दो तरफा ताल्लुकात पर बातचीत करेंगे। वजीर आजम इसी रोज नीदरलैंड्स में शाह विलियम अलेक्जेंडर, मलिका मैक्सिमा और वजीर आजम रोब जेटेन से मुलाकात करेंगे। स्वीडन में जनाब मोदी वजीर आजम उल्फ क्रिस्टेरसोन के साथ दो तरफा बातचीत करेंगे और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला ओंडेर लेन के साथ सनत से मुतालिक यूरोपियन राउंड टेबल से खिताब करेंगे। इसके बाद जनाब मोदी नॉर्वे के दौरे पर जाएंगे, जहां वो तीसरी भारत नॉर्डिक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे और वजीर आजम जोनास गेयर स्टोर के साथ बातचीत करेंगे। दौरे के आखिरी मरहले में वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली जाएंगे और सदर सर्जियो मेत्रेला और वजीर आजम जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात करेंगे। वजारत खारजा ने कहा है कि वजीर आजम के आइंदा दौरे से हाल ही में किए गए भारत यूरोपीय यूनियन आज़ाद तजारती समझौते के तनाजुर में यूरोप के साथ मुख्तलिफ शोबों, खासतौर से तजारत और सरमायाकारी के शोबे में भारत की साझेदारी मजीद मजबूत होगी। इम्तिहानात का इनेकाद कराने वाली कौमी एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी 2026 का इम्तिहान मनसूख करने का फैसला किया है, जो अंडर ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन में दाखिले के लिए इस महीने की 3 तारीख को कराया गया था। एक सोशल मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने बताया कि ये फैसला तलबा के मफाद में और उस ट्रस्ट को तस्लीम करते हुए किया गया है जिस पर कौमी इम्तिहान का निज़ाम मुनहसिर है। एजेंसी ने यह भी कहा कि हुकूमत ने इस मामले को तफ्तीश के मरकजी ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है, ताकि पेपर लीक के इल्जाम की भरपूर तरीके से जाँच की जा सके। एजेंसी ने कहा कि वो सीबीआई को अपना पूरा ताउन देगी और तफ्तीश के लिए तमाम तर मवाद, रिकॉर्ड्स और मदद फराहम करेगी। एजेंसी ने कहा कि एनटीए ने यह फैसला मरकजी एजेंसियों और कानून नाफिज करने वाली एजेंसियों की तरफ से फराहम की गई तफ्तीशी मालूमात की बुनियाद पर किया गया। एनटीए ने कहा कि यह इम्तिहान दोबारा कराया जाएगा, जिसके लिए अलग से तारीखों का ऐलान किया जाएगा। मई 2026 साइकिल के लिए रजिस्ट्रेशन की तफसीलात, उम्मीदवारों की मालूमात और इम्तिहान के लिए मुंतखब मराकज में कोई तब्दीली नहीं की गई और इन्हें दोबारा कराए जाने वाले इम्तिहान में इस्तेमाल किया जाएगा। एजेंसी ने बताया कि नए सिरे से किसी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी और न ही इम्तिहान की कोई इजाफी फीस ली जाएगी। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। मरकजी तफ्तीशी ब्यूरो सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के जाति मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की छानबीन अपने हाथ में ले ली है। रियासती पुलिस की सिफारिश पर कार्रवाई करते हुए एजेंसी ने आज बाजाब्ता तौर पर तहकीकात का काम अपने हाथ में ले लिया है। एक बयान में सीबीआई ने कहा है कि उसके कोलकाता जोन के ज्वाइंट डायरेक्टर की निगरानी में खसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दी जाएगी। इस दौरान सीबीआई की एक टीम के आज मध्यमग्राम थाने का दौरा करने और उस जगह का मुआयना करने का इम्कान है जहां पर कत्ल का ये वाकया पेश आया था।
وزیر اعظم نریندر مودی نے مغربی بنگال کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سویندو ادھیکاری کے زیر صدارت پہلی کابینہ میٹنگ کے فیصلوں کی ستائش کی ہے۔ سوشل میڈیا کی

एक पोस्ट में वजीर आजम ने कहा कि मगरबी बंगाल के लोगों की फलाह बहबूद आला तरीन तरजीह है। जनाब मोदी ने इस बात पर खुशी जाहिर की कि रियासत के लोगों को हिफजान सेहत से मुतालिक दुनिया की सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत तक का रसाई हासिल होगी, जो आला मेयार के काबिल रसाई हिफजान सेहत को यकीनी बनाती है। वजीर आजम ने मजीद कहा कि डबल इंजन की सरकार इस बात को यकीनी बनाएगी कि अहम मरकजी स्कीमों के फायदे लोगों तक बिला रुकावट पहुंचें। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन इस माह की 18 तारीख को ओडिशा का एक रोजा दौरा करेंगे। वो आला सतह के तंजीमी जायजे के लिए ये दौरा करेंगे, जिसका मकसद पार्टी फ्रेमवर्क को मजबूत बनाना है। इस दौरे का मकसद ये भी है कि बीजेपी को पिछले साल असेंबली इंतखाबात में जबरदस्त कामयाबी मिलने के बाद समाज की निचली सतह पर बीजेपी को मजीद मकबूल बनाया जाए। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में मुनक़िदा एक तकरीब में 15 नर्सिंग पेशावरों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा। यह अवार्ड नर्सिंग के मैदान में इनके गैर मामूली ताउन पर दिया गया है। यह अवार्ड मरकजी और रियासती हुकूमतों, मरकज के जेर इंतजाम इलाकों और रजाकार तंजीमों से वाबस्ता रजिस्टर्ड नर्सेज, दवाइयों मददगार और नर्स मिडवाइव्स और लेडी हेल्थ विजिटर को दिए जाते हैं। हर एक अवार्ड मेरिट के एक सर्टिफिकेट, 1,00,000 रुपये नकद रकम और इन सेहत कारकुनों के जरिए फराहम की गई बेशबहा खिदमात के तहत कौमी के तशक्कुर का इजहार करने वाले एक मेडल पर मुश्तमिल है। सेहत और ख़ानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा, सेहत के उजराए ममलिकत प्रताप राव जाधव और सीनियर अफसरान भी इस मौके पर मौजूद थे। जदीद नर्सिंग की बानी फ्लोरेंस नाइटिंगल की उम्र पैदाइश पर आज नर्सों का बैन अल-अक़वामी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है हमारी नर्सें हमारा मुस्तकबिल, बाइख्तियार नर्सें जिंदगी बचाती हैं। ये दिन मरीजों की देखभाल, कम्युनिटी हेल्थ और इक्तसादी तरक्की में नर्सों के रोल को तस्लीम करता है। तमिलनाडु के वजीर आला सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, इबादतगाहों और बस स्टैंड के नज़दीक वाक़ शराब की 717 दुकानों को बंद करने का हुक्म दिया है। ये दुकानें तमिलनाडु रियासती मार्केटिंग कॉरपोरेशन के तहत चलाई जाती हैं। रियासती सरकार ने एक बयान में कहा कि इस कॉरपोरेशन के तहत शराब की 4,675 खुर्दा दुकानें चलाई जाती हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। खास खबरें एक बार फिर। जनाब हेमंत बिस्वा सरमा ने लगातार दूसरी मियाद के लिए आसाम के वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया है। नीट अंडर ग्रेजुएट इम्तिहान पेपर लीक हो जाने के इल्जाम के सबब मनसूख कर दिया गया है। सीबीआई से तहकीकात कराए जाने का हुक्म दिया गया है। सीबीआई ने मगरबी बंगाल के वजीर आला सुवेंदु अधिकारी के मुआविन चंद्रनाथ रथ के कत्ल की तहकीकात अपने हाथ में ले ली है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सों को कौमी फ्लोरेंस नाइटिंगल अवार्ड से नवाजा है। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम अहमदाबाद में गुजरात टाइटन्स का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

0: मीडिया पोस्ट में एजेंसी ने कहा कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
1: एनटीए ने बताया है कि सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच के लिए मामला केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंपने का निर्णय लिया है। एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने गुवाहाटी में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में डॉ शर्मा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
2: মই শ্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঈশ্বরৰ নামত শপথ লও যে বিধিৰ দ্বাৰা স্থাপিত ভাৰতৰ সংবিধানৰ প্ৰতি মই প্ৰকৃত বিশ্বাস আৰু আনুগত্য পোষণ কৰিম।
0: डॉक्टर शर्मा के साथ चार विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इनमें भाजपा से रामेश्वर तेली और अजंता नियोग, असम गण परिषद से अतुल बोरा और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट से चरण बोरो शामिल हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्व शर्मा को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री शर्मा ने एक कुशल प्रशासक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने असम में नवगठित मंत्रिमंडल के सदस्यों को मंत्री पद की शपथ लेने पर बधाई दी। श्री नवीन ने आशा व्यक्त की कि मुख्यमंत्री हिमंता बिस्व शर्मा के नेतृत्व में एनडीए सरकार विकसित असम और विकसित भारत के दृष्टिकोण के साथ काम करती रहेगी। असम विधानसभा में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन ने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी करते हुए 126 सदस्य विधानसभा में 102 सीटें हासिल की हैं। पुदुच्चेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नेता एन रंगासामी कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी डॉ मनसुख मांडविया तथा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई नेता शामिल होंगे। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। राज्य पुलिस की सिफारिश पर एजेंसी ने आज आधिकारिक रूप से मामले की जांच शुरू कर दी। सीबीआई ने एक बयान में कहा कि कोलकाता जोन के संयुक्त निदेशक की देखरेख में एक विशेष जांच दल का गठन किया जाएगा। सीबीआई की एक टीम आज मध्यग्राम पुलिस स्टेशन जाकर घटनास्थल का मुआयना कर सकती है। इस बीच सीबीआई ने जांच करने के लिए डीआईजी पंकज सिंह के नेतृत्व में 7 सदस्यीय टीम का गठन किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल में दक्षिणी दमदम नगर पालिका भर्ती घोटाले में पूर्व अग्निशमन और आपात सेवा मंत्री सुजीत बसु को कोलकाता से गिरफ्तार किया है। निदेशालय ने बताया कि तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में सुजीत बसु ने नगर पालिका में विभिन्न पदों के लिए कथित रूप से लगभग 150 उम्मीदवारों की सिफारिश की। प्रवर्तन निदेशालय ने नौकरी देने के बदले कथित रूप से फ्लैट की मांग के अपराध का भी पता लगाया है। जांच एजेंसी को बसु के बैंक खातों में बड़ी राशि जमा होने के भी सबूत मिले हैं। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व में राज्य मंत्रिमंडल की पहली बैठक के निर्णयों की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य के लोग अब विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत का लाभ उठा सकेंगे। कल राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इनमें बांग्लादेश सीमा पर 45 दिन के भीतर बाड़ लगाने के लिए सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ को भूमि हस्तांतरित करना शामिल है। तमिलनाडु विधायक जेसीडी प्रभाकर को आज सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष चुना गया। कार्यवाहक अध्यक्ष एमबी करुपैया ने मुख्यमंत्री जोसेफ विजय द्वारा प्रस्तावित प्रभाकर के नाम की घोषणा की, जिसका सदन में पार्टी के नेता केए सेंगोत्तैयान ने समर्थन किया। थोरायूर निर्वाचन क्षेत्र से तमिलनाडु के विधायक रविशंकर को भी सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष चुना गया। टीवीके सरकार को कल विधानसभा में अपना बहुमत साबित करना है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय ने स्कूलों, कॉलेजों, पूजा

0: स्थलों और बस स्टैंड के पास स्थित खुदरा शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश दिया है। राज्य सरकार ने कहा है कि 4,675 खुदरा शराब की दुकानें चल रही हैं। इनमें से स्कूलों, कॉलेजों, पूजा स्थलों और बस टर्मिनलों से 500 मीटर के दायरे में 717 दुकानों को 2 सप्ताह के भीतर बंद करने का आदेश दिया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिए गए। ये पुरस्कार पंजीकृत नर्सों, मिडवाइव्स, सहायक नर्स मिडवाइव्स और महिला स्वास्थ्य पर्यवेक्षकों को प्रदान किए गए। राष्ट्रपति ने कहा कि अवसर उन नर्सिंग कर्मियों और स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों के अमूल्य योगदान को श्रद्धांजलि है जो करुणा और संपूर्ण निष्ठा के साथ देश की सेवा करते हैं। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, स्वास्थ्य राज्य मंत्री प्रताप राव जाधव तथा अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम एशिया संकट के बीच विदेशी मुद्रा की बचत के लिए लोगों से ईंधन बचाने और विदेशी उत्पादों का उपयोग कम करने का आग्रह किया है। गुजरात के वडोदरा में कल एक जनसभा में श्री मोदी ने पेट्रोल और डीजल का उपभोग कम करने तथा वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कक्षाएं तथा वर्चुअल बैठक जैसे कोविड दौर के उपाय अपनाने की अपील दोहराई।
1: पेट्रोल डीजल का उपयोग कम करें, मेट्रो का उपयोग करें, इलेक्ट्रिक बस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट का अधिक इस्तेमाल करें, कार पुलिंग को बढ़ावा दें। ये जरूरी है कि सरकारी और प्राइवेट दोनों ही दफ्तरों में वर्चुअल मीटिंग और वर्क फ्रॉम

0: उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिदिन से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए कहा कि जहां कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली LPG सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू LPG उत्पादन क्षमता लगभग 35,000 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: श्री पुरी ने उद्योग जगत के नेताओं और अपने हितधारकों से LPG से LNG की ओर रुख करने और हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने का आग्रह किया। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में समाजवादी पार्टी के सांसद अजेंद्र सिंह लोधी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा नेता सत्येंद्र प्रताप की शिकायत के बाद महोबा कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया। ये विवाद तब शुरू हुआ जब लोधी ने कथित तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की उस अपील पर आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसमें उन्होंने लोगों से सोना न खरीदने का आग्रह किया था। इन टिप्पणियों के बाद राज्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। पाकिस्तान ने हाल ही में ईरान और अमेरिका के बीच संघर्ष के दौरान ईरानी सैन्य विमानों को गुप्त रूप से अपने एयरबेस पर ठहरने की अनुमति दी, जबकि वो ईरान तथा अमेरिका के बीच संघर्ष समाप्त करने के लिए पाकिस्तान के मध्यस्थ की भूमिका निभाने का दावा करता है। अमरीकी मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि कुछ ईरानी विमान रावलपिंडी के निकट नूर खान वायुसेना अड्डे पर खड़े किए गए थे। रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसे ग्राहम ने पाकिस्तान की मध्यस्थ की भूमिका की पूरी तरह से पुनः समीक्षा करने की मांग की है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि ईरान ने कुछ यात्री विमानों को पड़ोसी देश अफगानिस्तान भेज दिया था। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे। पहले चरण में वे शुक्रवार को संयुक्त अरब अमीरात पहुंचेंगे और राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। एक रिपोर्ट।
2: यात्रा के दूसरे चरण में प्रधानमंत्री शुक्रवार को ही नीदरलैंड्स पहुंचेंगे। इससे पहले उन्होंने 2017 में नीदरलैंड्स की यात्रा की थी। प्रधानमंत्री मोदी नीदरलैंड्स के नरेश विलियम अलेक्जेंडर और महारानी मैक्सिमा से मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री रॉब जेटन से भी उनकी बातचीत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी रविवार को स्वीडन की यात्रा पर गोथनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री अल्फ क्रिस्टन के साथ बातचीत में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। यात्रा के चौथे चरण में प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को नॉर्वे पहुंचेंगे। वे तीसरे भारत नॉर्वे शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ये पहली नॉर्वे यात्रा होगी। यात्रा के अंतिम चरण में प्रधानमंत्री मोदी इटली जाएंगे। वे इटली के राष्ट्रपति सर्जियो मेत्रोला से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी के साथ भी उनकी व्यापक बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की 5 देशों की यात्रा से यूरोप के साथ भारत की साझेदारी मजबूत होगी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज चिली गणराज्य के विदेश मंत्री फ्रांसिस्को पेरेस मैकेना और चिली प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने भारत चिली व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते CEPA की वार्ता की प्रगति की समीक्षा की। चेन्नई से अबुधाबी जाने वाली इत्तेहाद एयरवेज की उड़ान संख्या EY0343 आज सुबह तकनीकी खराबी और बाएं पंख में आग लगने की घटना के बाद रद्द कर दी गई। लगभग 280 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। चेन्नई हवाई अड्डे ने सोशल मीडिया पोस्ट में यात्रियों से आगे की जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने का अनुरोध किया है। मौसम विभाग ने कल तक गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, राजस्थान और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। असम और मेघालय में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में भी कल तेज बारिश हो सकती है। बिहार और उत्तराखंड में भी कल 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के साथ आंधी आने की संभावना है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज

0: लगभग 1.4% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 1048 अंक लुढ़ककर 74,967 पर, जबकि निफ्टी 305 अंक की गिरावट के साथ 23,511 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के कारण रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। हिमंता बिस्व शर्मा ने लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। सीबीआई ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 15 नर्सिंग पेशेवरों को राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम गुजरात टाइटंस का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, शुरू करते हैं अपना मनपसंद कार्यक्रम एक ही कलाकार। जी हाँ, आज मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त शिल्पा गोस्वामी। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो देर ना करते हुए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और सबसे पहले सुनवाती हूँ आपको ये गीत, जिससे कि आपको भी पता चले कि आज हम किसके बारे में बात करना चाहते हैं। तो लीजिए सुनते हैं ये गीत और उसके बाद बात करेंगे अपने इस कलाकार के बारे में।

दोस्तों, अभी आप समझ ही गए होंगे, और नहीं समझे तो हम बता देते हैं। आज हम बात करेंगे इकबाल कुरैशी की। जी हाँ साथियों, इकबाल कुरैशी का जन्म 12 मई 1930 को औरंगाबाद में हुआ था, और बाद में वे हैदराबाद चले गए थे। दोस्तों, बचपन में उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के लिए प्रदर्शन भी किया था, और फिल्म उद्योग में आने से पहले वे निजी समारोह में गीत भी गाया करते थे, और कवि मखदूम मोहिद्दीन और अभिनेता निर्देशक चंद्रशेखर के दोस्त भी थे वो। बाद में जब वे मुंबई पहुंच गए तो वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन के नाटकों में निर्देशन में शामिल हो गए थे।

दोस्तों, कुरैशी को कई फिल्मी संगीत रचनाओं का श्रेय दिया जाता है। इनमें मोहम्मद रफ़ी, मुकेश और महेंद्र कपूर, मुबारक बेगम और तीन बहन मंगेशकर, लता, आशा और उषा द्वारा गाए गए गीतों का संगीत शामिल है। उनके संगीत में नीरज और कैफी आज़मी के गीतों को ध्वनि प्रदान की है।

दोस्तों, इकबाल कुरैशी ने शशि कपूर, मनोज कुमार और जॉय मुखर्जी, साधना सहित कई अभिनेताओं के साथ संगीत दिया है। उन्होंने 1958 की फिल्म पंचायत के 10 गानों के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें उन्होंने लोक और शास्त्रीय संगीत का संयोजन किया और ताथैया करके आना गीत में बीन और कांच तरंग वाद्य यंत्रों के उपयोग को बढ़ावा दिया। दोस्तों, 1960 में उन्होंने दो फिल्मों बिंदिया और लव इन शिमला के लिए संगीत तैयार किया, जिनके गीत राजेंद्र कृष्ण द्वारा लिखे गए थे और मोहम्मद रफ़ी द्वारा गाए गए थे। साथियों, इन दो गीतों में मैं अपने आप से घबरा गया हूँ और यूं जिंदगी के रास्ते संवारते चले गए की धुनें दिखाती हैं कि रफ़ी उच्च स्वर तक कैसे पहुंच सकते थे। साथियों, लव इन शिमला में कुरैशी का गीत गाल गुलाबी किसके हैं, जिसे रफ़ी ने गाया था और जिसमें तत्कालीन नए अभिनेता जॉय मुखर्जी ने अभिनय किया था। अगले वर्ष उन्होंने फिल्म उमर कैद के लिए संगीत तैयार किया, जिसमें हसरत द्वारा लिखित और मुकेश द्वारा गाई गई दुखद गजल मुझे रात दिन ये ख्याल है वो नजर से मुझको गिरा ना दें शामिल थी। दोस्तों, 1963 में कुरैशी ने फिल्म ये दिल किसको दूं के लिए मुबारक बेगम और आशा भोसले द्वारा गाए गए गीत हमें दम देके का संगीत तैयार किया, जिसमें शशि कपूर ने पदार्पण किया।

दोस्तों, उन्होंने चंद्रशेखर की 1964 की फिल्म चा चा चा के लिए संगीत तैयार किया और निर्देशन किया, जिसमें हेलन ने अपनी पहली मुख्य भूमिका निभाई थी। साथियों, इस फिल्म में सुबह न आई शाम न आई गीत शामिल था, जिसे तत्कालीन नए गीतकार नीरज ने लिखा था और रफी ने गाया था। साथियों, इसी फिल्म से वे मखदूम मोहद्दीन की कविता चारागर के लिए संगीत तैयार करने के लिए सबसे ज्यादा जाने गए, जिसे एक चमेली के मांडवे तले गीत में दर्शाया गया था, जो दो प्रेमियों की कहानी कहता है जो कभी एक साथ नहीं हो सकते थे। भारतीय फिल्म संगीत इतिहासकार मानेक प्रेमचंद ने इस संगीत को कुरैशी का सर्वश्रेष्ठ प्रयास बताया था। साथियों, 1964 के बाद जिन फिल्मों में उन्होंने योगदान दिया वे उतनी सफल नहीं रही थी। उन्होंने आलमारा 1973 में संगीत तैयार किया, जो पहली भारतीय टॉकी फिल्म आलमारा 1931 का रिमेक थी। कुरैशी एक बहुत अच्छे संगीतकार थे साथियों।

दोस्तों, संगीत में उनकी रुचि बचपन से ही शुरू हो गई थी। जब वे किसी भी निजी समारोह में और ऑल इंडिया रेडियो के लिए गाते थे और निजी समारोह में जाते थे, तो वहाँ भी उनका जो शौक था वो शुरू हो जाता था। बड़े होने पर मुंबई आने के बाद वे इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन से जुड़ गए और नाटकों के लिए संगीत देने लगे।

दोस्तों, इकबाल कुरैशी का निधन 21 मार्च 1958 में को मुंबई के विले पार्ले स्थित उनके घर पर हुआ। टेलीविजन साक्षात्कार देने के लिए तैयार था और इसी दिन हमें एक सुपर स्टार हमारे साथ, जो कि इतना अच्छा, जिसने हमें संगीत दिया, वो हमसे बिछड़ गया।

कितनी हंसी। दोस्तों इसी गीत के साथ आज का ये कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। अपनी दोस्त शिल्पा गोस्वामी को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे, लेकिन तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए।

0: रुख से नकाब
1: उठा। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, TRM 810 किलो हर्ट्स पर। और श्रोताओं, अब वक्त है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का। लीजिए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम।

0: तुषार देवतामुरिया, डॉली, बेबी, पूजा, पुष्कर, लेहान, अजिज्ञासा के साथ विराट, तेजस्वी और गौरव तामुरिया।
1: हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़के, राजेश साबले पाटिल, शेख अल्लाह बख्श।
0: और नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़, फजिलका पंजाब से रमन वर्मा, अमन वर्मा, दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदन लाल वर्मा।
1: हार्दिक आभार आपके संदेशों के लिए और जो आपने प्रश्नों के उत्तर भेजे उनके लिए भी हार्दिक आभार।
0: आप सबका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से हमारी आपकी सबकी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए में। साथियों, गर्मी का मौसम है और पूरे भारत में भीषण गर्मी पड़ रही है।
1: हमें आपकी चिंता है और चाहते हैं कि ऐसे मौसम में आप अपना और आपके अपनों का जरूर ख्याल रखें।
0: जी,
1: तो इस सप्ताह हमारी चर्चा का विषय रहेगा कैसे रखें अपना ख्याल इस गर्मी के मौसम में। तो आइए अजीत जी आपसे शुरुआत करते हैं।
0: जी विमलेश जी, तो श्रोताओं, सबसे पहली बात, ऐसे मौसम में सबसे पहली सलाह ये दी जाती है कि 12 बजे से 4 बजे तक बाहर ना निकलें।
1: लेकिन अजीत जी, हमारे श्रोता ये जरूर जानना चाहेंगे कि 12 बजे से 4 बजे तक के समय में ऐसा क्या होता है जिसके कारण ये सलाह दी जाती है।
0: विमलेश जी, ऐसे तो गर्मी के मौसम में हमें हर समय अपना ख्याल रखना ही चाहिए, लेकिन ये समय खास होता है
1: जी,
0: क्योंकि सुबह से तो गर्मी पड़ती ही है, लेकिन पृथ्वी की परिक्रमा की स्थिति के कारण 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जिसके कारण इस समय तापमान अपने चरम पर होता है।
1: जी, और जब तापमान अपने चरम पर होता है तो इस समय लू लगने की संभावना बहुत अधिक हो जाती है, जिसके कारण उल्टी, चक्कर आना, बेहोशी, मति भ्रम और कभी कभी जान को भी खतरा हो सकता है।
0: लेकिन विमलेश जी, एक बार फिर से मैं उसी प्रश्न पर आता हूँ, क्या पृथ्वी का गर्म होना और 12 बजे सूर्य की किरणों का सीधा पड़ना ही एकमात्र कारण है या इस समय कुछ और विशेष भी होता है?
1: जी, बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। इसे हमें ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सूर्य की किरणों के सीधे पड़ने का प्रभाव पृथ्वी के धरातल पर क्या पड़ता है,
0: तो इसे जरा विस्तार से बताइए।
1: अजीत जी, गर्मी के मौसम में सुबह से सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती हैं तो भूमि गर्म हो जाती है, या दूसरे शब्दों में वो गर्मी को सोख लेती है
0: जी।
1: और 12 बजे सूर्य की किरणें पृथ्वी पर सीधी पड़ती हैं, जो बाद में धीरे धीरे तिरछी होने लगती हैं, इसलिए उसका तापमान पृथ्वी पर थोड़ा कम होने लगता है
0: जी।
1: लेकिन इस दौरान भूमि अपनी गर्मी धीरे धीरे छोड़ती है, जिसके कारण गर्मी और अधिक बढ़ जाती है। इसे थर्मल लैग कहते हैं।
0: क्या कहते हैं?
1: थर्मल लैग।
0: अच्छा, तो शायद यही कारण है कि हमें गर्मी 12 बजे से अधिक 1 से 4 बजे के दौरान महसूस होती है
1: जी।
0: तो क्या हम थर्मल लैग को बोलचाल की भाषा में भभक उठना या भभका कह सकते हैं?
1: जी बिल्कुल कह सकते हैं। उस समय ऐसा लगता है जैसे भूमि से गर्मी निकल रही है, ऊपर से सूर्य का ताप और नीचे से पृथ्वी का ताप, यानी एक तरह से दोहरी मार।
0: जी यही बात है, एक तरह से दोहरी मार, बिल्कुल सही कहा। तो ऐसे समय में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए?
1: देखिए, कहा जा सकता है कि यदि बहुत जरूरी हो तभी बाहर निकलें।
0: लेकिन विमलेश जी, यदि निकलना ही पड़े तो?
1: यदि निकलना ही पड़े तो सर पर टोपी या कोई कपड़ा जरूर रखें, और हाँ, प्यास लगे या न लगे थोड़ा थोड़ा पानी जरूर पिए। ऐसे में नींबू पानी, नारियल पानी और ORS बहुत लाभकारी होते हैं
0: जी।
1: और हाँ, कोशिश करें जहाँ कहीं छाया मिल जाए वहाँ थोड़ी देर जरूर सुस्ता लें।
0: जी हाँ श्रोताओं,

0: ऐसे समय में बहुत जरूरी ये भी है कि हल्के और ढीले कपड़े पहने,
1: जी
0: कोशिश करें कि हल्के सूती कपड़े हों और उनका ज्यादा गहरा रंग ना हो।
1: जी
0: सफेद कपड़ों और हल्के रंगों के कपड़ों की सलाह दी जाती है क्योंकि वे सूर्य की किरणों को परावर्तित करने में सक्षम होते हैं।
1: प्रयास करें कि त्वचा ढकी हुई हो, क्योंकि सनबर्न का खतरा भी बना रहता है, और धूप का चश्मा जरूर पहने, क्योंकि सूरज की तेज किरणों का असर हमारी आंखों पर भी पड़ सकता है।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी जिसके द्वारा हमने बताया कि कैसे रखें अपना ख्याल गर्मी के इस मौसम में। हम तो फिर से कहेंगे कि अपना
1: अपना और अपने अपनों का ख्याल जरूर रखें, खासकर बच्चों और बुजुर्गों का। तो अब सुनिए आज का प्रश्न। प्रश्न है,
0: थर्मल लैग किसे कहते हैं? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए
1: थर्मल लैग किसे कहते हैं?
0: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। और साथ ही साथ आप हमारे ईमेल के पते पर भी अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो आइए सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। शीर्षक है, आग बरसाती धूप।
1: इस कार्यक्रम में एक नाटक के द्वारा गर्मी से बचाव के उपायों के बारे में बताया गया है, और विशेष रूप से चर्चा की गई है कि गर्मी के मौसम में बच्चे अपना ध्यान किस प्रकार से रखें।
2: आग बरसाती धूप।
3: विद्या, क्या है? आम के बाग में चलते हैं।
4: क्यों?
3: वहाँ बहुत सारे आम हैं।
4: अच्छा, तुमने खुद देखे?
3: हाँ।
4: अच्छा,
3: तो फिर चलते हैं, जल्दी चलो।
4: धीरे से, माँ उठ जाएगी।
3: हाँ हाँ, धीरे से धीरे से,
4: चलो ना।

0: वाह, कितने ढेर सारे आम हैं। अब तो मजा आ जाएगा।
1: हाँ, पर कितनी तेज धूप है और हवा भी गर्म चल रही है।
0: छोड़ो भी, वो रहे आम।
1: हाँ
0: आ चलो खाते हैं। अरे यहाँ पर तो बहुत सारे आम गिरे हुए हैं। लो विद्या, एक तुम भी खाओ, एक मैं खाता हूँ।
1: आहा, इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। वाह, मजा आ गया, कितना मीठा आम है।
0: हाँ पर गर्मी भी कितनी हो रही है।
1: हाँ मोहन, गर्मी तो मुझे भी कितनी लग रही है। देखो ना, कितना पसीना आ रहा है मुझे।
0: चलो नदी में नहा कर आते हैं,
1: फिर तो मजा आ जाएगा और गर्मी भी कम हो जाएगी। आओ जल्दी चले।
2: कितनी तेज धूप है, जैसे आग बरस रही है। आज तो आधा खेत भी नहीं जोत पाया। अरे इन दोनों बच्चों को देखो, कहां भागे जा रहे।
1: मोहन और तेज दौड़ो, देखो मुझे छू सकते हो।
0: कोशिश करता हूँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? अरे अरे तो गिर पड़ा। अरे मोहन, तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? मोहन, मोहन।
2: मैं पहले कहता था ना कि इन बच्चों को कुछ होकर रहेगा, भला ये भी कोई घर से निकलने का टाइम है? लगता है कुछ गड़बड़ है, चलूं देखूं। अब भागना मत मेरे हीरा मोती, मेरे बैलों की जोड़ी, मैं अभी आया। यही पेड़ की छांव में रहना। हाँ।
1: अरे मोहन, मोहन क्या हो गया तुझे? तो कुछ बोलता क्यों नहीं?
0: विद्या, विद्या।
1: अरे ये तो बेहोश हो गया। मोहन, मोहन, मोहन, कुछ बोल मोहन।
2: क्या बात है बेटे, क्या बात है?
1: देखो ना हामिद काका, मोहन को क्या हो गया?
2: लगता है इसे लू लग गई है। बेटा चलो जल्दी से उठाकर इसे छांव में ले चलते हैं।
1: इसे डॉक्टर के पास ले चलिए काका।
2: हाँ हाँ, डॉक्टर के पास ही चलते हैं, मैं उठाता हूँ। हाँ ऐसे चलो।
1: हाँ हाँ चलिए चलिए।
2: आ गया डॉक्टर साहब का घर, इसे छांव में खाट पर लिटाते हैं।
1: जी।
2: तब तुम जरा डॉक्टर को आवाज दो बेटा।
1: डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब।
3: कौन है भाई, अभी आया?
2: इसका जरा कपड़ा उतार दूं। लीजिए डॉक्टर साहब भी आ गए। आइए आइए डॉक्टर साहब, जल्दी आइए।
3: क्या बात है हामिद भाई, क्या बात है?
2: डॉक्टर साहब लगता है इसे लू लग गई है।
3: ओहो अच्छा, इसके कपड़े उतार दीजिए हामिद भाई।
2: हाँ, हाँ, हाँ।
3: और इसके बदन पर ठंडा पानी डालिए। ये लीजिए।
2: हाँ,
3: ये इस लोटे में ठंडा पानी है, तब तक मैं थर्मामीटर लेकर आता हूँ।
2: अच्छा डॉक्टर साहब।
3: और विद्या बेटी, इस पंखे से तुम हवा करती रहो।
1: जी।
3: लाओ अब ये थर्मामीटर लगा देते हैं, बुखार चेक कर लेते हैं। अरे हामिद, इसकी टांगे जमीन से एक फुट ऊपर उठाकर रखो।
2: हाँ जी,
3: ऐसे। लाओ अब जरा बुखार देख लेते हैं। हाँ बुखार कम हो गया। भाई अब ठंडा पानी डालने की जरूरत नहीं है
2: जी।
3: इसके शरीर का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस यानी 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आ गया है
2: जी।
3: भाई अब घबराने की जरूरत नहीं है।
1: ये लू क्या होती है डॉक्टर साहब?
3: बेटा बहुत तेज गर्म हवा को लू कहते हैं। तेज गर्मी के मौसम में गर्म हवा के प्रभाव से शरीर की ताप नियंत्रण व्यवस्था काम करना बंद कर देती है
1: जी,
3: जिसके कारण शरीर का तापमान अचानक बाहरी तापमान के अनुसार बढ़ने लगता है।
1: इससे क्या होता है?
3: भाई तापमान बढ़ने से शरीर में पानी की कमी हो जाती है और पसीना आना बंद हो जाता है और मरीज बेहोशी की हालत में चला जाता है।
2: डॉक्टर साहब कैसे बच सकते हैं इससे?
3: भाई सावधानी ही असली बचाव है। ज्यादा तेज धूप और गर्मी में बाहर नहीं निकलना चाहिए, और अगर निकलना बहुत जरूरी हो तो छतरी या सर पर कपड़ा रखकर निकलना चाहिए। लगातार पानी वगैरह पीते रहना चाहिए।
2: डॉक्टर साहब, नींबू पानी, गन्ने का रस और कच्चे आम को उबालकर बनाया गया पन्ना भी तो फायदेमंद होता है।
3: हाँ हाँ हामिद भाई, खीरा, ककड़ी, तरबूज, खरबूजा वगैरह मौसमी फल भी खूब खाने चाहिए। और साधारण दिनों से पानी 3 गुना ज्यादा पीना चाहिए।
2: जी।
0: और अगर लू लग जाए तो?
2: प्राथमिक उपचार क्या करना चाहिए?
3: भाई, लू लगे व्यक्ति के शरीर के तापमान को जल्दी ही नीचे लाने का प्रयास करना चाहिए। ठंडा पानी या बर्फ आदि से शरीर को पोंछकर तापमान को 38 डिग्री सेल्सियस तक लाने का प्रयास करना चाहिए।
0: जी।
3: और डॉक्टर की सलाह भी तुरंत लेनी चाहिए।
0: मोहन को होश आ गया डॉक्टर साहब, मोहन को होश आ गया।
3: अभी लेटे रहो मोहन बेटे, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है।
2: डॉक्टर साहब की बताई बातें याद रहेंगी कि नहीं?
0: जी।
2: अब तो नहीं घूमोगे कड़ी धूप और गर्मी में?
0: नहीं काका, मुझे सब याद है जो डॉक्टर साहब ने बताया।
3: कोई बात नहीं, चलो एक बात फिर बता देता हूँ। गर्मी के दिन घर में बिताओ, खीरा ककड़ी तरबूज खाओ, नींबू पानी लस्सी पियो, 3 गुना पानी पियो, गन्ने का रस आम का पन्ना गर्मी में मत करो मना, तेज धूप में कभी ना खेलो, गर्मी के दिन घर में बिताओ, गर्म हवा से रहे हम दूर, ठंडक में खेले भरपूर।
2: गर्म हवा से रहे हम दूर,
4: ठंडक में खेले भरपूर।
2: ठंडक
4: में खेले भरपूर।
3: आग बरसाती धूप।
5: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम आग बरसाती धूप, और आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम लांस नायक अल्बर्ट एक का।
6: इस कार्यक्रम में भारतीय सेना के वीर योद्धा लांस नायक अल्बर्ट एक का के जीवन और सन 1971 में भारत पाकिस्तान

0: युद्ध के दौरान उनके पराक्रम और शौर्य की रोमांचक गाथा बताई गई है। अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए कृतज्ञ राष्ट्र ने उन्हें मरणोपरांत सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है प्रेरक गाथाओं की श्रृंखला इन्हें हमारा सलाम। तो आइए इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम परम वीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक का। नमस्कार साथियों।
2: नमस्कार
1: साथियों। भारत रणबांकुरों और वीरांगनाओं की भूमि है। यहाँ की माटी ने ऐसे ऐसे वीरों को जन्म दिया है जिन पर सिर्फ देश ही नहीं विश्व इतिहास भी हमेशा गौरव का अनुभव करेगा।
2: जी हाँ, इन वीरों ने समरांगन में अपने रक्त से जिस वीरता की गरिमामय गाथा लिखी वो कभी भी भुलाई नहीं जा सकती। सच तो ये है कि इन वीरों की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी विश्व के इतिहास पटल पर गुंजायमान रहती हैं।
1: तो आज हम एक ऐसे ही वीर की गाथा प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका पराक्रम याद किया जाता रहेगा। भारत माता के वह वीर सपूत थे लांस नायक अल्बर्ट एक का।
2: लांस नायक सुनकर ही आप समझ गए होंगे कि अल्बर्ट एक का भारतीय स्थल सेना से संबंध रखते थे।
1: जी हाँ साथियों, लांस नायक एक सैनिक पदवी है। लांस नायक अल्बर्ट एक्का ने सन 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पूर्वी मोर्चे पर ऐसे असीम शौर्य और पराक्रम का परिचय दिया जो अतुलनीय है।
2: उनकी बहादुरी ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए और दुश्मन को भारी पराजय का सामना करना पड़ा
1: और इस वीरता के कारण उन्हें सैनिक सम्मान परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
2: उनके शौर्य को देखकर एक यूनिट कमांडर ने कहा था, ऐसा लगता था जैसे स्वयं महाकाल शत्रुओं के विध्वंस के लिए प्रकट हो गए हैं।
1: इतना ही नहीं साथियों, शत्रुओं के खेमे में भी उनकी बहादुरी की चर्चा बड़े सम्मान से की जाती थी। तो आइए सुनते हैं अल्बर्ट एक्का की कहानी।
2: साथियों, भारत संघ का एक सुंदर पूर्वी राज्य है झारखंड। यहाँ के पर्वतीय स्थल, सदाबहार जंगल, कलकल करती पहाड़ी नदियाँ और सीधे सादे आदिवासी और उनका कर्णप्रिय आदिवासी संगीत अनायास ही लोगों का मन मोह लेता है।

0: नाम से ही विदित होता है साथियों, जैसा अभी कहा गया झारखंड, झार यानी झाड़ या पेड़। तो झारखंड का अर्थ हुआ ऐसा भूखंड जो वृक्षों या जंगलों से भरा हुआ हो। झारखंड राज्य एक पठार पर बसा है जिसे छोटा नागपुर का पठार कहते हैं।
1: इस राज्य में वन और खनिज संपदाओं की भरमार है।
0: इसी झारखंड राज्य का एक जिला है गुमला, और इस जिले में एक प्रखंड या ब्लॉक है डुमरी। इसी डुमरी ब्लॉक के जरी नामक गांव में 27 दिसंबर 1942 को एक आदिवासी परिवार में अल्बर्ट एक्का का जन्म हुआ था।
1: इनके पिता का नाम जूलियस एक्का था और माँ का नाम मरियम एक्का। माता पिता शुरू से ही पढ़ाई लिखाई के विषय में बहुत जागरूक थे, इसलिए ठीक समय पर उन्होंने बेटे अल्बर्ट को पढ़ाई के लिए स्कूल भेजा।
0: उनकी प्रारंभिक शिक्षा उसी जिले के एक स्कूल में हुई। आदिवासी होने के कारण तीर धनुष चलाने और शिकार खेलने में उनकी विशेष रुचि थी। संभवतः इसी रुचि ने उन्हें आगे चलकर बेहतर सैनिक बनने में उनकी सहायता की।
1: उन दिनों भारत में हॉकी का खेल बहुत ही लोकप्रिय था। अल्बर्ट एक्का हॉकी के भी अच्छे खिलाड़ी थे। अपने स्कूली दिनों में वे खेल के मैदान में घंटों अभ्यास करते थे और पसीना बहाते थे। उनके नेतृत्व में स्कूल ने कई टूर्नामेंट जीते।
0: झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है और सेना में जाने का प्रचलन वहाँ के युवाओं में आम बात है। अल्बर्ट भी आसपास के गांव में जवानों को सेना में भर्ती होते देखते थे। जब वे जवान छुट्टियों में गांव आते

0: थे तो एल्बर्ट अक्सर उनसे बातें करते। उन्हें सेना का जीवन बहुत भाने लगा था और फिर ऐसा हुआ कि धीरे धीरे उन्होंने सेना में जाने का मन बना लिया।
1: और ठीक अपने जन्मदिन पर 27 दिसंबर 1962 को यानी 20 वर्ष की आयु में वे भारतीय सेना में भर्ती भी हो गए।
0: उन्होंने फौज में बिहार रेजिमेंट से अपना कार्य शुरू किया। बाद में जब 14th गार्ड्स का गठन हुआ तब एल्बर्ट अपने कुछ साथियों के साथ वहां स्थानांतरित कर दिए गए। उन दिनों उनकी यूनिट बिहार रेजिमेंट में थी।
1: अनुशासन, श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन और निष्ठा के कारण वे धीरे धीरे सिपाही से लांस नायक की पदवी तक पहुँच गए।
0: और फिर आया सन 1971 का साल। भारत के पूर्वी हिस्से में युद्ध के बादल मंडराने लगे। 1947 में जब भारत का विभाजन हुआ तो बंगाल का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में चला गया था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहते थे और ये अब बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है।
1: जब यहाँ की स्थितियाँ बिगड़ने लगी तो भारत को मानवीय आधार पर युद्ध में उतरना पड़ा।
0: 3 दिसंबर 1971 का दिन भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं के बीच भीषण युद्ध शुरू हो चुका था।
1: उनकी यूनिट को गंगा सागर के पाकिस्तानी गढ़ पर कब्जा करने का आदेश दिया गया। इसे जीतना भारत के लिए सामरिक तौर पर बहुत जरूरी था।
0: इसे जीतना इसलिए जरूरी था कि इसके बिना भारतीय फौज ढाका तक नहीं पहुंच सकती थी।
1: दुश्मन अपनी पूरी तैयारी के साथ बैठा था। यहाँ एक जगह है अखौरा। पाकिस्तानी सेना ने यहाँ अपना पूरा जमावड़ा लगा दिया था।
0: सेना दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़ी, जिनमें से एक यूनिट की कमान थी लांस नायक एल्बर्ट एक्का के पास।
1: शत्रुओं द्वारा टैंक विरोधी मिसाइलों को तैनात कर दिया गया था ताकि भारतीय सेना की बढ़त को रोका जा सके। सामरिक दृष्टि से पाकिस्तानी सेना बहुत बेहतर स्थिति में थी।
0: और तो और, वहां पाकिस्तानी सेना के जवान भी बहुत भारी संख्या में तैनात थे। कुल मिलाकर गंगा सागर गढ़ पर कब्जा करना एक दुस्साहस और मौत को गले लगाने के अलावा कुछ नहीं था।
1: लेकिन लांस नायक एल्बर्ट एक्का के नेतृत्व में यूनिट आगे बढ़ती रही। उन्होंने तय कर लिया कि वे अपना मिशन पूरा करके ही रहेंगे। वे आगे बढ़े ही थे कि दूसरी ओर से गोलियों की भयंकर बौछारें आने लगीं।
0: वो जगह माइंस से पटी हुई थी

0: गए। उनके पास हथगोले थे। गोलियों की बौछारों से बचते बचाते वे किसी तरह उस बंकर के पास पहुंच गए और उस बंकर में बने एक छेद से अंदर हथगोला फेंक दिया।
1: जब वहां पर हथगोला फटा और कई पाकिस्तानी सैनिक उसी समय काल कलवित हो गए, लेकिन अभी भी कुछ सैनिक बचे थे जो बंकर के अंदर से लाइट मशीन गनों से गोलियों की लगातार बौछार कर रहे थे।
0: फिर क्या था, लांस नायक अल्बर्ट इक्का अकेले ही उस बंकर में कूद गए
1: और फिर शुरू हुआ आमने सामने का युद्ध। अल्बर्ट इक्का काल बनकर दुश्मनों पर टूट पड़े। अपने बंदूक की संगीन और बट से उन्होंने दुश्मनों पर प्राण घातक हमला किया और उन सैनिकों को भी मौत के घाट उतार दिया। उस बंकर में दुश्मन के सारे सैनिक अल्बर्ट इक्का की बहादुरी के कारण मारे जा चुके थे।
0: लेकिन इस युद्ध में अल्बर्ट इक्का को गंभीर चोटें भी आईं और वे देश के लिए वहीं शहीद हो गए। उनकी आंखें बंद हो चुकी थीं, लेकिन उनकी इसी वीरता ने भारत के लिए ढाका पहुंचना आसान कर दिया और भारत की जीत सुनिश्चित कर दी।
1: इसी युद्ध के परिणाम स्वरूप दुनिया के मानचित्र पर एक नया देश उभरा, जिसे आज हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं।
0: इस कल्पनातीत शौर्य, पराक्रम और बहादुरी के लिए लांस नायक अल्बर्ट इक्का को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च सैनिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया।

0: इतना ही नहीं, बांग्लादेश ने भी इस महापराक्रमी योद्धा को फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वॉर ऑनर से नवाजा।
1: भारत के सैन्य इतिहास में संभवतः लांस नायक अल्बर्ट एक का अकेले वह युद्ध नायक हैं जिन्हें दो राष्ट्रों ने दो अलग अलग सम्मानों से अलंकृत किया। एक और बात जो अल्बर्ट एक्का के बारे में और भी अनूठी है,
0: और वो ये कि वे भारत के आदिवासियों में परम वीर चक्र से सम्मानित किए जाने वाले शायद पहले व्यक्ति हैं।
1: जी हाँ, लांस नायक अल्बर्ट एक्का भारत और बांग्लादेश के सैन्य इतिहास में एक बड़े सितारे बन चुके हैं
0: जिनकी आभा कभी भी धूमिल नहीं होगी। इस समर नायक को हमारा सलाम। परमवीर चक्र विजेता लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम।
1: अकादमिक परामर्श राजेश कुमार निमेश, वाचन अजीत होरो और वंदना अरिमर्दन, तकनीकी निर्देशन बटिलैंग लिंगडो, ध्वनियांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग सौम्या मलिक, आवरण सज्जा अमित कुमार और कुसुमलता, आलेख अजीत होरो, निर्माण परामर्श वंदना अरिमर्दन और विमलेश चौधरी, ध्वनि संपादन निर्देशन एवं निर्माण तनु गुप्ता,
0: तथा प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली भारत। लांस नायक अल्बर्ट एक्का, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, और अब इसी के साथ हम अपने आज के उमंग प्रसारण को विराम देने की आज्ञा चाहेंगे। तो तब तक के लिए अजीत
2: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
3: उमंग उमंग उमंग उमंग।
4: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। श्रोताओं, अब वक्त है कार्यक्रम उर्दू मजलिस का। लीजिए सुनते हैं ये कार्यक्रम।

0: अगर लीडरशिप औरत को मिलती है तो उसको पॉजिटिवली लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए एजुकेशन बहुत
1: बहुत
0: ज़रूरी है,
1: इम्पोर्टेंट.
0: उससे उसके अंदर एतमाद आता है. जब आप यूनिवर्सिटी कॉलेज में जाते हैं, 10 लोगों के बीच में बैठते हैं, तो उससे आपके अंदर एक एतमाद पैदा होता
1: इत्माद
0: है.
1: पैदा होता
0: तो
1: है.
0: मेरे ख्याल में एक अच्छे लीडर को, एक अच्छी क़यादत अगर औरत कर रही है, तो उसको सबसे पहले स्मार्ट, एजुकेटेड और पूरे सिनेरियो से वाकिफ होना चाहिए. दैट
1: हाँ
0: इज़ व्हाट आई फील.
1: या एग्जैक्टली. मेरा अगला सवाल आपसे रहेगा कुलसुम जी, क्या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस एक औरत के लिए सिर्फ इकोनॉमिक एम्पावरमेंट है या साइकोलॉजिकल लिबरेशन भी है?
2: औरत का सिर्फ कयादत करना बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी नॉलेज के, बिना किसी तरह की एजुकेशन के, हमारी सोसाइटी के लिए खतरनाक भी हो सकता है.
1: जी बिल्कुल.
2: और होता आया है ऐसा. सिर्फ औरत नहीं, इनफैक्ट अगर मर्द भी इस तरह से कयादत करते हैं तो एक पूरी सोसाइटी को बर्बाद
1: बिल्कुल
2: होने में, तबाह होने में वक्त नहीं लगता
1: वक्त
2: है.
1: नहीं
2: सही,
1: लगता. बहुत सही कहा
2: खैर ये
1: आपने.
2: एक अलग बात है, लेकिन जहाँ तक माशी खुदमुख्तारी की बात है
1: जी.
2: तो उसमें हमारी औरतें, और ये नहीं कि मैं उन औरतों की बात कर रही हूँ जिन्होंने जो पढ़ाई लिखाई में पीछे रह गई हैं, इनफैक्ट वो औरतें जो अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, वो औरतें जो कहीं जॉब कर रही हैं, वो औरतें जो जॉब के साथ अपना घर भी
1: घर भी
2: संभाल रही हैं,
1: संभाल रही हैं. जी
2: वो माशी खुदमुख्तारी के नाम पर बस अपनी सैलरी घर लेके आती हैं अक्सर
1: हाँ
2: व बेशतर.
1: अक्सर. हाँ
2: अक्सर व बेशतर
1: जी
2: तो साइकोलॉजिकली तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है,
1: जी
2: क्योंकि
1: जी
2: जब सैलरी घर आ जाती है तो वो या तो एक जॉइंट अकाउंट में आती है, या अगर उनका सैलरी अकाउंट अलग है तो
1: नाइस
2: आते ही
1: थिंग.
2: अगर उनके पास हस्बैंड है एक अदद, पार्टनर है एक अदद, तो उसके साथ जॉइंट अकाउंट खुला होता है, उसमें चली जाती है पूरी सैलरी, कई बार पूरी पूरी सैलरी चली जाती है. और वहां से फिर मर्द हजरात संभाल लेते हैं मामला,
1: जी
2: क्योंकि औरतों के हिसाब से उनको पैसों की बात समझ नहीं आती. घर का खर्च जो है, वो फिनांस जो है, वो औरत ही संभाल रही होती है.
1: सभी
2: वहां
1: कुछ
2: मर्द
1: घर का
2: क्या
1: है,
2: कहता
1: वहां
2: है,
1: पे सोच एक महदूद हो
2: एग्जैक्टली
1: गई
2: बिल्कुल,
1: है.
2: वहां मर्द ये कहता है कि घर के मामला मुझे समझ नहीं आते,
1: नहीं समझ आते.
2: राइट? तो ये बहुत ही अजीब सा एक कॉम्बिनेशन तैयार हुआ है और सोसाइटी ने उसको एक्सेप्ट किया हुआ है.
1: हिपोक्रेसी कहेंगे अभी इसको.
2: हिपोक्रेसी, एग्जैक्टली, यू हैव गिवन द
1: राइट
2: परफेक्ट
1: वर्ड.
2: वर्ड, राइट
1: हाँ
2: वर्ड. तो हिपोक्रेसी ऐसी है कि हमें समझ भी नहीं आती, इतना इनबिल्ट है कि हम इसको अपनी खुद की साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट ही समझ रहे
1: समझ
2: हैं,
1: रहे हैं.
2: जो कि नहीं है, ना
1: एग्जैक्टली.
2: मर्द की है ना औरत
1: नौ
2: की
1: औरत
2: है,
1: की.
2: राइट? हमें पता ही नहीं है, फिनांस वर्ड सुनते ही हम खो जाते हैं कहीं, कि
1: एग्जैक्टली.
2: हमसे खाना पकवा लो, हमसे पढ़वा
1: हाँ
2: लो, हमसे सब कुछ करवा लो, बट ये
1: जी.
2: मत करवाओ.
0: हाँ
2: तो
0: लेकिन
2: ये
0: फिर
2: एजुकेशन
0: उनको.
2: देना
0: जी
2: बहुत
0: जी
2: जरूरी
0: बिल्कुल बिल्कुल
2: है.
0: बिल्कुल.
3: हमारा ये मानना है कि औरतों के नाम से अगर प्रॉपर्टीज होंगी तो जो है उनकी खुद मुख्तारी, उनकी लीडरशिप इम्पॉर्टेंट होगी. हम देखते हैं कि सिर्फ 14% जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो औरतों के नाम है. मैं हमेशा ये बात कहती हूँ क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, तो मैं, मेरी क्लास जो है वो एक मिनी इंडिया होती है, मिनी भारत है. वहाँ बच्चे हर हर
1: जी.
3: जगह से आते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो मैं अक्सर बच्चों के साथ इस बात पर डिस्कशन होता है, तो मुझे इस बात से बहुत खुशी है कि कुछ साल पहले जब हम डिस्कस करते थे तो लड़कियों का ये होता था कि ग्रेजुएशन हो जाएगा, जो
1: हाँ.
3: वसीम साहिबा बात कह रही थी, और शादी हो जाएगी एंड फाइंड
1: बस
3: अ नाइस बॉय
1: बिल्कुल.
3: एंड गेट मैरिड. लेकिन आज गांव के एक छोटे कस्बे से आने वाली भी लड़की जो है वो यूपीएससी की ड्रीम रखती है, वो IRS बनने की ड्रीम रखती है, वो ये मानती है कि मैं खुद मुख्तार हूँ, मैं जॉब लूँ और उसके बाद मैं अपना खुद, मेरा अपना खुद का घर हो. तो कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन जो आप साइकोलॉजिकल बात कर रही थी, साइकोलॉजी की बात कर रही थी, तो वो कहीं ना कहीं औरतों को ये बात रियलाइज करनी होगी कि उन्हें अपनी चीजें अपने हाथ
1: हाथ
3: में
1: में
3: लेनी
1: लेनी
3: होगी.
1: होगी. हाँ हमारे साथ सबसे बड़ा हादसा समझ लीजिए यही हुआ है कि हमें अवेयर नहीं होने दिया जाता.
0: मैं आपको बताऊं वो कैसे अपने आप को एम्पावर कर रही हैं, कैसे फाइनेंशियली स्ट्रांग हो रही हैं. मैंने देखा कि बिल्कुल मतलब गांव के कच्चर मकान में
1: हाँ
0: बिल्कुल जगह पर एक जगह बैठी हुई है ईंटों की उसके ऊपर दीवार पे और बैठी रील बना रही हैं. औरतें औरतें बिल्कुल वैसा
1: किसी भी
0: मतलब
1: लेवल पे
0: हाँ
1: कर रही हैं,
0: किसी
1: एटलीस्ट दे आर
0: लहंगा
1: रिप्रेजेंटिंग
0: और चोली
1: यार.
0: पहने हुए हैं वो कर रही हैं बच्चों को. तो ये मेरे कहने का मकसद ये है कि वो इस तरीके से एम्पावर कर रही हैं अपने आप को, इस तरीके से अपने आप को लीडर्स बना रही हैं और रील्स बना बना के वो पैसा उससे कमा
1: कमा रहे
0: रही हैं.
1: कहीं ना कहीं
0: तो
1: से तो
0: ये तो बिल्कुल
1: रिप्रेजेंटेशन
0: बिल्कुल तो वो
1: जरूरी है.
0: जी
1: हाँ
0: जी
2: राशिद साहिबा ने बहुत अच्छी बात कही टेक्नोलॉजी की और उसका रोल जो औरतों की
1: हाँ
2: जिंदगी में खास
1: पॉजिटिव
2: तौर से
1: आया.
2: पॉजिटिव रोल जो है. तो टेक्नोलॉजी की बात जब हम करते हैं तो वहाँ हम देखेंगे कि आजकल सारी पेमेंट्स एप्स के थ्रू हो रही हैं,
1: या एग्जैक्टली.
2: और अगर आप जाकर

0: गांव में, छोटे शहरों में अगर आप बात करेंगे लोगों से, तो वहाँ सेविंग्स का मतलब अभी भी घर में कैश होना है या अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में कुछ पैसे रखना है, इससे
1: हाँ
0: ज़्यादा सेविंग्स का मतलब कुछ बनता नहीं
1: बनता
0: है,
1: नहीं
0: खास तौर से औरतों के
1: बहुत।
0: लिए।
1: हाँ
0: उनके लिए कोविड का टाइम अगर आपको याद हो तो कहाँ कहाँ से पैसे निकल रहे थे, और औरतों के पास से बहुत सारे पैसे, जिसके घर में
1: ज्यादातर औरतों के पास से ही
0: ज्यादातर
1: निकाला,
0: औरतों के पास से ही
1: जिसके
0: निकले।
1: बिल्कुल
0: बिल्कुल,
1: बिल्कुल
0: जिसके घर में ये सुनने जो एग्जैक्टली जिसके घर में ये
1: अनडिक्लेयर्ड
0: सुनने को मिल रहा था कि हमारे पास पैसे नहीं है, अगले दिन उस घर का आदमी बैंक की लाइन में खड़ा
1: चावल के
0: था
1: डब्बे में से
0: कि
1: पैसे
0: वापस करना है, और कहाँ से
1: मिले।
0: मिले, तो बीवी के पास से
1: ये
0: मिले।
1: तो
0: सही बात
1: इनबिल्ट
0: है,
1: है
0: ये
1: औरत के अंदर फाइनेंशियल जो चीज संभालने की, जैसे हम औरतें
0: हाँ
1: जो है घर का जो मामला
0: सेविंग्स,
1: संभालती हैं वो
0: एब्सोल्युटली
1: इनबिल्ट है ना, तो वो जब
0: सेविंग
1: घर पे,
0: करना,
1: हाँ
0: राइट,
1: जब
0: जो
1: इस लेवल पे संभाल सकती है तो उस लेवल पे भी जा
0: बिल्कुल
1: सकती
0: संभाल
1: हैं।
0: सकती है, बट पैसे का एक चीज़ है मेरे ख्याल से, और मैंने एक आध स्कॉलर्स को भी सुना मैं, तो मुझे ये लगा कि ये जो पैसे बचाने का ये तरीका है कि जो कैश है वो रख लिया घर में, ये इनफ नहीं है, ये पूरी तरह से सफिशिएंट नहीं है।
1: जाहिर सी बात है,
0: इनफैक्ट पैसा अगर है
1: वैल्यू कम
0: तो
1: हो तो
0: उस
1: चले।
0: पैसे, बिल्कुल
1: हाँ
0: आपने बिल्कुल सही बात कही है कि पैसे की वैल्यू वक्त के साथ
1: कम होती चली
0: कम भी
1: जाती है।
0: होती जाती है, या बढ़ती है तो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ती है, और अगर आप उसको कहीं इन्वेस्ट कर देंगे
1: तो वो, हाँ
0: तो वो
1: एग्जैक्टली
0: वैल्यू आपकी डबल फोल्ड हो सकती है तकरीबन 10-20 सालों में, और ये बहुत ज़रूरी है हर औरत के लिए, क्योंकि जैसा कि डॉक्टर मुबीन जरा साहिबा ने पहले कहा कि एक औरत की फितरत में शामिल है कि जब वो फिनेंशियली इंडिपेंडेंट होती है, जब वो अब अपने आप पे डिपेंड करने लगती है, खुद मुख्तार हो जाती है, तो वो सिर्फ अपना नहीं सोचती है, बल्कि कई बार अपना तो बिल्कुल नहीं सोचती है, वो अपने घर वालों का, बाल बच्चों का के बारे
1: ये
0: में
1: फितरत है
0: ज़्यादा
1: औरत
0: सोचती है, ये
1: इस तरह से।
0: फितरत है। तो जब सोचें कि उस फितरत का कोई इंसान अगर मल्टीपल फोल्ड्स कमाने लगे,
1: हाँ
0: इन्वेस्ट करने लगे,
1: एग्जैक्टली exactly.
0: तो वो क्या कर
1: कितना
0: सकता है?
1: कितना आगे जाएगा।
0: जिस तरह वसीम राशिद साहिबा ने कहा कि एक औरत को पढ़ाना एक नस्ल को पढ़ाने के बराबर होता है, उसी तरह एक औरत की फिनेंशियल इंडिपेंडेंस जो है, एक औरत का माशी तौर पर खुद मुख्तार
1: मुख्तार
0: होना
1: होना।
0: और पैसे से पैसे बनाना, वो एक पूरी नस्ल, क्या कई नस्लों को मेरी
1: महवश ऐसा
0: ख्वाहिश
1: लग रहा है,
0: जी
1: पैसा बनाना, पैसा बचाना, पैसा संजोना, सारी जिम्मेदारी सिर्फ औरतों की है। यहां मैं मर्दों को भी लाना चाहूंगी
0: हाँ
1: कि मर्द ने हमेशा से ये सोचा है, और मैं उन मर्दों की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ पे ये बात क्या बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहूंगी, जो जिसकी तरफ डॉक्टर वसीम राशिद साहिबा ने भी इशारा किया था, कि बदलाव मर्दों की सोच में भी आ रहा है, और ये वॉर ऑफ रोजेज नहीं है कि भैया
0: हाँ ये
1: मर्द
0: एक
1: और औरत एक
0: मतलब
1: दूसरे
0: पूरा
1: के
0: पूरा
1: खिलाफ
0: एक
1: खड़े हैं।
0: सिस्टम है।
1: हाँ, लेकिन ये बात भी जायज है कि पिछले 400, 500, 600, 1000 जितने साल आप गिन लीजिए, आप
0: जी
1: तारीख में जितना पीछे जाना चाहें, आप चले जाइए वहां, देखिए कि वहां तब से औरतों का जो है विक्टिमाइजेशन हो रहा है, उनको दबाया जा रहा है, रिलीजियस लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं, समाज के लॉज ऐसे बनाए जा रहे हैं, अनसेड अनकोडेड लॉ तो कोडेड होता है ना,
0: बिल्कुल
1: कोडिफाइड होता है, अनकोडेड लॉज ऐसे हैं जो औरतों को पीछे रखा जा रहा है। तो इसीलिए मैंने शुरुआत में ही सभा कहा था कि कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पावरमेंट तभी आएगा जब हमारे लिए, हमारे फेवर में, डाउरी के तो इतने बड़े लॉ बने हुए हैं, इट्स इलीगल। आप देखिए, आप किसी भी मजहब की शादी आप ले लीजिए,
0: वही
1: आप देख लीजिए कि इस वक्त औरतों के विक्टिमाइजेशन का सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो डाउरी है।
0: ग्राउंड रियलिटी
1: पढ़े
0: पे अगर
1: लिखे
0: देंगे तो
1: लोग,
0: बहुत
1: वाह,
0: बुरा हाल
1: तो
0: है
1: ये
0: उन
1: सब
0: लोगों का।
1: किताबी बातें हैं। असली बदलाव तभी आएगा जब हमारी सरकारें लॉ बनाएंगी,
0: और हम
1: और
0: लोग
1: मेरी
0: उनको
1: बात, कई लोगों को ये बुरी भी लग सकती है कि भाई हर चीज में लॉ, हर चीज में औरतों के एम्पावरमेंट की बात, नहीं भैया, बिल्कुल होगी
0: जरूरत
1: एम्पावरमेंट
0: है,
1: की बात,
0: जरूरत है।
1: जरूरत
0: लेकिन
1: है
0: कहीं कहीं ऐसा
1: जरूर
0: होता है
1: के।
0: कि अगर कोई खातून, कोई लड़की मान लीजिए किसी ऑफिस में जाती है, तो ज्यादातर मतलब अगर वो आपकी लीडर भी है और खूबसूरत भी है और
1: उनको ये कहा
0: माशाल्लाह सब,
1: जाता है कि
0: तो
1: आप
0: अक्सर
1: प्रिविलेज्ड
0: हाँ
1: हो, लड़की
0: प्रिविलेज्ड हो,
1: हो,
0: ऐसा
1: वजह से।
0: है। मतलब मुझे पता नहीं क्यों दो शेर याद आ रहे हैं, अगर आप मुझे इजाजत दें, मैं शायरा हूं तो मैं इससे
1: बिल्कुल
0: पीछे नहीं जा सकती। अक्सर मैं एक बड़ी हमारी प्यारी शायरा, उनके शेर पढ़ती हूँ कि आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, आंखों में न जुल्फों में न रुखसार में देखें, मुझको मेरी दानिश मेरे अफकार में देखें, रखे हैं कदम मैंने भी आसमां की जमी पर, पीछे हूं कहां आपसे रफ्तार में देखें। तो वो रफ्तार में देखने वाली जो बात है कि वाकई में
1: अब मुझे
0: पीछे कहां है, हम रफ्तार में देखिए
1: डॉक्टर
0: हमको।
1: वसीम, मुझे
0: जी जी
1: ईश्वर नाहिद साहिबा की भी वो नज्म याद आ रही है, हम गुनाहगार
0: गुनहगार
1: औरतें। तो
0: औरतें
1: ऐसे तो बहुत
0: बिल्कुल
1: बहुत ऐसे
0: तो जी
1: मतलब
0: जी

0: तो बहुत इल्ज़ामात आ जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें। जैसे अगर आम तौर पे देखें ग्राउंड
1: हाँ
0: रियलिटी में कुछ लोगों से, जैसे आदमियों से हम जब मैं हम कलाम होती हूँ और जब मैं उनसे बात करती हूँ, तो उनकी वही सोच है बहुत ज़्यादा। ऐसा कभी कभी तो ऐसे डायरेक्ट बोल देते हैं
1: जी
0: कि औरत
1: जी
0: को तो रहनुमाई नहीं करनी चाहिए, औरत रहनुमा नहीं
1: हाँ
0: हो सकती। एंड दिस इज़ वेरी रियल थिंग। मैंने ये चीज़ लोगों के मुंह से सुनी है। मैं बैठ कर उनसे बहस करती हूँ बाज दफ़ा, लेकिन
1: आपने
0: मैंने
1: सुन
0: सोचा ही नहीं। मैं वही एग्जैक्टली मैं बहस करती हूँ, फिर उस मुझे
1: कैसे
0: ऐसा लगता है कि ये जो रूट है ना, यही खराब है। तो हम लोग जब किसी चीज़ की रूट चेंज करनी होती है ना, उस पर काम करना होता है, उस रूट को चेंज करने के लिए मैं एक इंसान से लड़कर या एक इंसान से बहस करके वो पूरा सिस्टम नहीं चेंज कर सकती। तो ये हमारे मर्दों की सोच है, और ये मर्दों की जो सोच है ना, वो कहाँ से आ रही है।
1: लेकिन मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि देख जिंदा से परे रंगे चमन जोशे बहार, देख जिंदा से परे रंगे
0: रंगे
1: चमन
0: चमन
1: जोशे
0: जोशे
1: बहार,
0: बहार,
1: रक्स करना है तो फिर पांव की जंजीर न दे।
2: क्या बात है, क्या बात,
1: रक्स
2: बहुत
1: करना
0: अच्छा,
1: है तो फिर
0: जबरदस्त,
1: पांव की
0: पांव की
1: जंजीर
0: जंजीर
1: न
0: न
1: दे।
0: दे।
3: अगर हम भारत के पस मंजर में देखें, हम अपने मुल्क के पस मंजर में देखें, तो मैं फिर आपको, क्योंकि मैं तारीख ना हूं तो मैं आपको तारीख में ले जाऊंगी। जब रजिया सुल्तान बनी थी, सुल्तान बनी थी, तब भी ये सवाल उठाए गए थे कि
0: हाँ,
3: वो
0: कि वो एक,
3: औरत हैं, और वो जबकि वो मिलिटरली ट्रेन थी, मिलिट्री में ट्रेन थी,
0: इन शी वॉज वेरी
3: और
0: इंटेलिजेंट।
3: उस वक्त मैं उस रजिया सुल्तान से ज्यादा उनके फादर, जिन्होंने उनको अपने बच्चों को, बेटे को ना चूज करके उन्होंने अपनी
0: रजिया
3: बेटी को
0: सुल्तान को
3: सुल्तान
0: चूज किया,
3: बनाया, मैं उस चीज को बहुत
0: सलाम करते
3: अप्रिशिएट
0: हैं। या
3: करूंगी। और उसी चीज से मैं फिर आज के जमाने में आऊंगी कि ये जो आप बात कर रही थी कि लीडरशिप में इशू है, तो मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि इस वक्त भारत में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है उसमें सबसे ज्यादा सीईओज औरतें हैं।
0: हाँ
3: आप
0: बिल्कुल।
3: अगर पायलट्स देख लें, हवाई जहाज में आपकी जान तो पायलट के ऊपर ही है,
1: हाँ जी जी
3: पायलट पे निर्भर है। सबसे ज्यादा विमेन पायलट जो हैं हिंदुस्तान में, लेकिन वहीं एक ऐसा किस्सा भी होता है कि कोई आदमी को पता चलता है पैसेंजर को कि विमेन प्लेन उड़ा रही है, तो वो उतर जाता है
0: उतर
3: कि
0: जाता,
3: नहीं।
0: हाँ
3: तो ये सोच का प्रॉब्लम है।
0: इनफैक्ट,
3: और एक
0: हाँ
3: और चीज
0: जी
3: सबा मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि हमारा जो मुल्क है, अगर आप उसको डाटा वाइज आप कंपेयर करना चाहें, तो हमारे
0: हाँ
3: मुल्क ने पंचायती राज में वुमेन लीडरशिप इज डूइंग वेरी वेल, जिसमें राजस्थान का स्टेट है, जिसमें बिहार स्टेट है, और
0: जी
3: आप अगर नॉर्थ ईस्ट थोड़ा चले जाएं तो
0: हाँ
3: नॉर्थ ईस्ट में भी जो
0: ऐसा
3: रूरल
0: जरूर
3: वुमेन
0: है,
3: है, वहां आप जाइए देखिए, वहां ऑल वुमेन मार्केट है,
0: हाँ
3: ज्यादातर काम जो है वो
0: औरतें
3: औरतें करती
0: लीडरशिप
3: हैं।
0: संभालती
3: मैं
0: हैं।
3: अभी कश्मीर कई बार गई हूँ, अभी रिसेंटली मैं गई थी कश्मीर एक लेक्चर देने, तो मैंने वहां देखा कि वहां मजहब रिलीजन रिप्रेजेंटेशन इज नॉट अ प्रॉब्लम, वो उनका एक रहने का तरीका है। लेकिन आप वहां इतनी काबिल औरतों को मैंने देखा जो जो स्किल डेवलपमेंट में काम कर रही हैं, जो छोटे छोटे कारोबार कर रही हैं। तो कहीं ना कहीं मैं फिर उसी चीज पे आऊंगी, अगर आप डाटाबेस देखें हमारे मुल्क का, तो जो हमारी सरकार की जो नीतियां हैं, जो पॉलिसीज हैं, जो वुमेन सेंट्रिक हैं, उसको अगर हम देखें तो वो कहीं ना कहीं हेल्प कर रही हैं और उसका रिजल्ट आ रहा है।
0: महविश साहिबा, के हम लोग इसमें कैसे बेहतर रोल प्ले कर सकते हैं एज एन एजुकेटेड वुमेन, आप इसका क्या
1: मेरे
0: जवाब
1: ख्याल में
0: देंगे?
1: कुछ पॉलिसीज भी आप जरूर बताएं कि कुछ किस तरह की पॉलिसीज हैं।
4: बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले तो एज एजुकेटेड वुमेन हम लोगों को अपने अपने इलाकों में जाकर और औरतों से बात करनी चाहिए, इनफैक्ट मर्दों से भी बात करनी चाहिए, क्योंकि सोसाइटी ना सिर्फ औरतों से बनी है ना मर्दों से बनी है। तो वहाँ जब तक हम लिटरेसी को पहुँचाएंगे नहीं, तब तक हमारे माशरे में ना ही कोई सोशल चेंज आ सकता है बहुत बड़ा, और ना ही फिनेंशियल चेंज, तो बाद की बात है। ठीक है, तो सोसाइटी जब तक बदलेगी नहीं, फिनेंशियल सिस्टम सुधरेगा नहीं। हालांकि हमारी सरकार ने इतनी सारी स्कीम्स लागू की हुई हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं है। अगर हम लिस्ट बनाएं पूरी
0: जैसे
4: तो
0: कोई
4: इट विल
0: चीज
4: बी
0: बताएं
4: वेरी
0: जैसे।
4: एग्जॉस्टिव, लेकिन मैं बस दो चार नाम लेना चाहूंगी जो कि औरतों के लिए खास तौर से बनाई गई हैं स्कीम्स, जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना
0: जी,
4: जो कि गांव की औरतों के लिए खास तौर से बनाई गई स्कीम है, जिसमें
2: बहुत
4: छोटे बिजनेस के लिए गांव की औरत को 10 लाख तक की अमाउंट दी जाती है, जिससे वो अपना बिजनेस सेट कर सकती है। और डेफिनेटली जैसे बिजनेस बढ़ेगा, जब वो बिजनेस सेट कर लेगी और बढ़ेगा, तो
1: और भी सब लोग शामिल हो
4: माशी
1: जाते हैं
4: खुद
1: उसमें।
4: मुख्तारी की तो बात फिर पीछे रह जाती है, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगी। ठीक है,
0: हाँ
4: लाइकवाइज और भी सारी योजनाएं हैं, मैं बस कुछ के नाम ले दूंगी, बाकी उन औरतों पे छोड़ती हूँ जिनको खुद मुख्तार होना है माशी तौर पर, वो इसके बारे में पता करें।
0: हाँ
4: और मोबाइल हर किसी के पास है, इंटरनेट

0: किसी के पास है, एक गूगल पे आप टाइप कीजिएगा और बोल दीजिएगा तो आपके पास इनकी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और आप इसका इस्तेमाल कर सकेंगे सही से. तो लखपति दीदी योजना है, ये भी गांव की औरतों के लिए है जो कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाकर उसमें माशी खुद मुख्तारी का काम करें. ठीक है, इसमें 1 लाख एनुअली.
1: एक कन्या योजना भी है ना,
0: बताना चाहूंगी कि एक ऐसी स्कीम भी है सरकार की, हमारी जो सरकार है उसने बहुत अच्छी स्कीम लागू की हुई है, LIC बीमा सखी योजना, जिसमें कि औरतों को इस बात की ट्रेनिंग दी जाती है कि वो LIC एजेंट्स बन सके और इसके लिए उनको स्टाइपेंड भी दिया जाता है. तो वो खुद मुख्तारी की तरफ एक तरह से पहला कदम बढ़ाने के लिए सरकार उनको तैयार कर रही है.
1: बहुत अच्छी
0: और
1: बात
0: ये गांव गांव तक ये पॉलिसी पहुंची हुई है और जब वो ट्रेनर्स तैयार हो जाएंगी तो जाहिर सी बात है वो अपनी नॉलेज खुद तक तो सिर्फ रखेंगी नहीं, आगे भी बढ़ाएंगी. इसलिए इस तरह की पॉलिसीज बेहतरीन पॉलिसीज मानती हूँ मैं इनको. और ये हमारी औरतों को माशी तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए एक
2: स्ट्रॉन्ग
0: स्टेप स्ट्रॉन्ग कदम कहा जा सकता है. इसी तरह से बचपन से जब एक लड़की पैदा होती है तब से उसको माशी खुद मुख्तारी देना ये सोसाइटी का फर्ज है. मेरे ख्याल से ये हर सोसाइटी का फर्ज है और हमारे भारत में तो ये एक एक्स्ट्रा बहुत इम्पॉर्टेंट फ़र्ज है और सरकार इसको बखूबी निभा रही है. उसने कई सारी ऐसी पॉलिसीज बनाई हुई हैं जिसमें बेटियों को पढ़ाई से लेकर के उनकी शादी तक के लिए, इनफैक्ट उसके बाद भी काम करने के लिए माशी तौर पर मदद दी जा रही है सरकार की तरफ से, जिसमें कि एक है सुकन्या समृद्धि योजना, घर की बेटियों के लिए उनकी पढ़ाई और उनकी शादी तक के लिए पैसे दिए जाते हैं, उनके वालदेन को दिए जाते
3: बहुत
0: हैं
3: पॉजिटिव रिजल्ट्स.
0: लेकिन हाँ बिल्कुल, और इससे उन घरों को इतनी मदद मिल जाती है जहाँ माशी तौर पर हालात कमजोर हैं, बहुत मदद मिल जाती है और वो अपनी बच्चियों को पढ़ने लिखने के लिए भेज पाते हैं. और इसी तरह एक लाडली योजना है, ये भी बच्चियों के लिए है, सिंगल गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम्स हैं, पॉलिसीज हैं और ट्रेनिंग के लिए भी लोगों को भेजा जा रहा है गवर्नमेंट की तरफ से. ट्रेनिंग में ये सबसे पहले तो स्कूल्स में लागू कर दिया गया है फिनांस की एजुकेशन और क्लास 6 से क्लास 12 तक ये एजुकेशन दी जा रही है. और साथ साथ NGOs भी इस पर काम कर रहे हैं जैसे डॉक्टर मुबीन जहरा साहिबा ने बोला, और प्राइवेट कंपनीज भी कई सारी इस पे काम कर रही है जैसे ज़िरोदा है, वो NGOs के साथ मिलकर गांव-गांव तक पहुंच रहे हैं ये लोग ताकि औरतों को फिनेंशियल नॉलेज प्रोवाइड करा सके.
2: अच्छा. तो ये कोई फायदा नहीं है कि औरत है तो इस मकाम तक पहुंच गई है, इसी तरह से मर्दों के लिए भी जिम्मेदारी है, उनके ऊपर भी हक है और औरतों के ऊपर भी. तो मैं यही कहूंगी, फाइनल मैसेज यही है कि अगर हम लोगों को इस दुनिया को बिल्कुल ठीक ठाक लेके चलना है तो एक सिरा ये नहीं कि एक चीज पे हम काम करें, हमें आदमियों के लिए भी और औरतों के लिए भी बराबर बराबर हक रखना चाहिए. और इक्वालिटी का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ जो है वो चीज इक्वल रहे. तो जहरा साहिबा,
3: मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं वसीम राशिद साहिबा और महवर साहिबा और सबा आपके साथ बैठ के हमने इस बात पे बात की और ऑल इंडिया रेडियो को का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने इतने अच्छे मौजू पे ये डिस्कशन रखा. हैविंग सेड दैट, हमेशा की तरह मैं वही कहूंगी कि औरतों के लिए बहुत जरूरी है कि वो अपना पैसा रखें, वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीदें.
1: बिल्कुल. मैं एक बस शेर के जरिए आपका आखिरी चराग जुल्मते शब में जला के चलते हैं, चराग जुल्मते शब में जला के चलते हैं, हम अपने रास्ते खुद ही बना के चलते हैं और ये रास्ते हमें खुद ही बनाने हैं और खुद ही हमें आगे बढ़कर अपने लिए अपनी राहें तलाश करनी.
3: क्या बात है,
2: बहुत अच्छा शेर आपने पढ़ा. उम्मीद है कि हमारी ऑडियंस आज की डिस्कशन से जरूर कुछ सीखेगी.
4: सामईन कराम, अभी आप समाप्त कर रहे थे बज़्म ख्वातीन के तहत ये खूबसूरत सा मुज़ाकरा. मौजू था ख्वातीन की क़यादत और माशी खिदमात, नए भारत की पहचान. शुराका थी डॉक्टर सैयद मुबीन जहरा, डॉक्टर वसीम राशिद, मोहतरमा कुलसुम महविश और नाजिम थी मोहतरमा सबा पाशा. और इस प्रोग्राम को तरतीब दिया था इंतजार सैफी ने. तो सामीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और प्रोग्रामों के साथ, कुछ और मेहमानों के साथ. तब तक के लिए आप अपने मेजबान शाहनवाज हाशमी को प्रोग्राम खत्म करने की दीजिए इजाजत. खुदा हाफिज.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम उर्दू मजलिस। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। और लीजिए, आप सुनते हैं समाचार।

लोकगीतों में मानस मन की तमाम अभिव्यक्तियां हैं, इन्हीं में से एक है प्रकृति प्रेम। अब देखिए, बारिश के दिन हैं, पहाड़ों के उतार चढ़ाव में हरियाली छा गई है और लोक गायक कमन भी हरा हो गया है। वह कहता है, बारिश से चारों ओर हरियाली हो गई है। काश्तकार समाज की महिला अपने जानवरों के लिए सिर पर घास का ढेर लाती ही है, भले ही उसके पैर कीचड़ से सन गए हों, वो पूरा भीग गई हो, पर इस बात की उसे फिक्र नहीं है, बल्कि हरियाली होने से उसका मन हर्षित हो रहा है। पहाड़ों में वर्षा ऋतु को अभिव्यक्त करता

全印度广播电台，现在我们播送全印度广播电台昨天播送的这个印度节目，英语节目 Spotlight 的

0: 节选部分，请大家收听一下。
1: Spotlight.

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडिया वेव 366.3 मीटर अर्थात 800 हर्ट्ज पर। और अब कार्यक्रम है दैनिक कार्यक्रम खेल
1: मीटर
0: खिलाड़ी।
1: आज आपके साथ मैं हूं अजय तोमर और मेरे साथ है मेरी सहयोगी
2: नमस्कार, मैं हूं विजेता चतुर्वेदी।
1: और विजेता। ढेर सारी एशियन चैंपियनशिप्स हो रही हैं, फुटबॉल की, वेटलिफ्टिंग की, बॉक्सिंग की, बहुत सारे खेलों में इस समय एशिया में सारे खिलाड़ी अपना दमखम दिखा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियन।
2: महिला एशियन कप 2026 से AFC अंडर 17 क्वार्टर फाइनल

0: भारत की यंग ट्राइकर्स का सफर थम तो गया है, लेकिन उन्होंने लाखों भारतीयों का दिल जरूर जीत लिया है। 11 मई को चीन के सुझाव स्पोर्ट्स सेंटर स्टेडियम में मेजबान चीन ने भारत को 3-0 से हरा दिया, लेकिन इस हार के बावजूद इस टीम ने इतिहास रच दिया।
1: अगर हम बात करें अभी तक के इनके सफर की, तो बहुत ही शानदार और जानदार ये सफर था, क्योंकि भारत में जिस तरह से फुटबॉल आगे बढ़ रही है और अंडर 17 गर्ल्स ने जिस तरह से अपनी फुटबॉल खेली है और क्वार्टर फाइनल तक पहुंचे हैं, वो अपने आप में निश्चित तौर पर ये दिखाता है कि बहुत तैयारी की थी इन्होंने। और ये रिजल्ट जो 3-0 है, ये बहुत कोई खराब रिजल्ट नहीं है। हालांकि भारतीय टीम सक्षम थी चीन को हराने के लिए, लेकिन कई बार दिन अच्छा होता है किसी दूसरी टीम का, और वही हुआ। चीन का थोड़ा दिन भी अच्छा था और भारतीय खिलाड़ी ने हालांकि दमखम खूब लगाया, खूब जोर लगाया।
0: बिल्कुल, और भारत पहली बार इस टूर्नामेंट के नॉकआउट स्टेज में पहुंचा था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। ग्रुप स्टेज में लेबनान को 4-0 से हराकर भारत ने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी, और दूसरी तरफ चीन था, घरेलू मैदान पर खेल रहा था, दर्शकों का पूरा समर्थन उनके साथ था। मैच की शुरुआत से ही चीन ने आक्रामक रवैया अपनाया, लेकिन मैच के आखिरी मिनट में चीन ने तीसरा गोल भी दाग दिया। भारत का सफर खत्म यहीं हो गया था। फीफा अंडर 17 महिला वर्ल्ड कप 2026 मोरक्को का सपना अधूरा रह गया, लेकिन दोस्तों ये टीम हार कर भी जीती है। पहली बार क्वार्टर फाइनल तक का सफर, दुनिया के सबसे मजबूत यूथ टूर्नामेंट में मेजबान चीन से लोहा लेना, ये कोई छोटी बात तो नहीं है।
1: और जो कुल मिलाकर 4 क्वार्टर फाइनल्स हुए थे, और उसमें जो पहला क्वार्टर फाइनल था उसमें DPR कोरिया ने 6-0 से हराया था थाईलैंड को। दूसरे क्वार्टर फाइनल में चीन और भारत की टीमें आमने सामने थी और भारतीय टीम अच्छा खेलने के बाद भी चीन से 3-0 से हार गई। तीसरे क्वार्टर फाइनल में जापान और कोरिया के बीच मुकाबला था, जहां पर जापान की टीम ने बहुत ही कड़े मुकाबले में 1-0 से जीत दर्ज की। और वहीं वियतनाम और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो चौथा क्वार्टर फाइनल खेला गया, उसमें ऑस्ट्रेलिया की टीम ने वियतनाम को 2-0 से हराया। तो ये दिखाता है कि बहुत कड़ा ये टूर्नामेंट है, बहुत कड़ी प्रतिस्पर्धा है, लगातार जो अच्छा खेलेगा वही यहाँ पे जीतेगा। और भारतीय टीम ने भी यहाँ तक क्वार्टर फाइनल तक का सफर तय किया, तो दिखाता है कि अब फुटबॉल में लगातार भारतीय महिलाएं भी किसी से कम नहीं है।
0: बिल्कुल, और चलिए अब लिए चलते हैं अपने श्रोताओं को उज्बेकिस्तान के ताशकंद में, जहां पर हो रहा है एशियन अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026, जहां भारतीय बेटियां इतिहास रच रही हैं। गर्ल्स अंडर 17 वर्ग के सेमीफाइनल मुकाबले में भारत का प्रदर्शन बेहद शानदार रहा। कुल 8 भारतीय बॉक्सर्स ने अपने अपने सेमीफाइनल जीतकर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इन 8 बॉक्सर्स के लिए अब स्वर्ण या रजत पदक की राह भी खुल गई है और पूरे देश की नजरें इन पर टिकी हुई हैं। वहीं दूसरी ओर 4 भारतीय बॉक्सर्स को सेमीफाइनल में हार का सामना भी करना पड़ा, लेकिन इन खिलाड़ियों ने कांस्य पदक जीतकर भारत का नाम पूरे विश्व में ऊंचा कर दिया है। इस प्रकार कुल मिलाकर भारत के पास इस टूर्नामेंट में अब तक कम से कम 4 पदक तो पक्के हो चुके हैं।
1: और ये दिखाता है कि हमारी बेंच स्ट्रेंथ, यानी कि जो एक बात चलती है कि खेलों का कल्चर कैसा है, किस तरह से जो दूसरे खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, लगातार जो खिलाड़ियों की एक एज के बाद अगली एज में खेलने के लिए जो खिलाड़ी तैयार किए जाते हैं, या ये कहें कि खिलाड़ियों की नर्सरी किस तरह से तैयार हो रही है, वो ये दिखाता है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज है विजेता, वो ये है खेलो इंडिया गेम्स। खेलो इंडिया गेम्स ने बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म हमारे खिलाड़ियों को प्रदान किया है, और खासतौर से ओलंपिक्स गेम जितने भी हैं वहां पर खेलो इंडिया ने बहुत अधिक खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया है, क्योंकि ये एक ऐसी स्कीम है भारत सरकार की जिसमें न केवल खिलाड़ी को प्रोत्साहित किया जाता है, उसको अच्छी ट्रेनिंग, अच्छी डाइट और पढ़ाई लिखाई का भी पूरा ख्याल रखा जाता है।
0: ये भी बहुत जरूरी है। और श्रोताओं को बता दें कि भारतीय महिला बॉक्सिंग टीम पिछले कई वर्षों से एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी धाक जमाती रही है। इस बार के ये परिणाम साफ बताते हैं कि जूनियर स्तर पर भी भारत की भविष्य की पीढ़ी बेहद मजबूत है। फाइनल मुकाबलों का इंतजार है और हम उम्मीद करते हैं कि ये भारतीय बेटियां तिरंगे को और ऊंचा लहराएंगी। भारतीय अंडर 17 खिलाड़ियों की बात करें, लड़कियों की, तो 12 पदक पक्के हैं। राखी 46 किलोग्राम की कैटेगरी में, खुशी 48 और ममता 52 किलोग्राम सहित 8 फाइनलिस्ट शानदार जीत दर्ज कर चुके हैं।
1: आपने बड़ी अच्छी बात बताई कि हमारे 12 पदक तो पक्के हो ही चुके हैं, और कई पदक ऐसे होंगे जिनका कलर बदलेगा, कोई स्वर्ण पदक आएगा, किसी में रजत पदक आएगा, किसी में कांस्य पदक आएगा, लेकिन जो पदक जीतना है वो अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि आप उन सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों में शामिल हो जाते हैं।

0: ने पदक जीतकर जिन्होंने इस पूरी चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया, और ये पूरा जो एक लगातार बॉक्सिंग के क्षेत्र में गए या रेसलिंग के क्षेत्र में गए या किसी भी क्षेत्र में आज की हम बात करें तो महिलाओं में जो खेलों के प्रति एक रुझान बढ़ा है, बल्कि मैं यहाँ पर विजेता एक बात और कहना चाहूँगा कि न केवल अभी जो जूनियर या बहुत यंग गर्ल्स हैं उनके अंदर, बल्कि एक सर्टेन एज में, जैसे अक्सर हम लोग आपको लगातार संडे ऑन साइकिल की बात करते हैं तो वहां पर हम देखते हैं कि बहुत सारी महिलाएं अपने बच्चों को लेके आई होती हैं साइकिल चलाने, यानी कि फिटनेस के प्रति, खेलों के प्रति जो एक जागृति आई है, साथ ही एक क्रांति हुई है, वो अपने आप में दर्शाता है कि अब भारत किसी से कम नहीं है।
1: हाँ, और ये जो मेडल है ये मतलब गिनती नहीं है, ये भारतीय खेल के भविष्य की एक झलक है। जो खिलाड़ी आज 15 या 17 साल की उम्र में एशिया स्तर पर चैंपियनशिप जीत रहे हैं वही कल ओलंपिक और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी अपना तिरंगा लहराएंगे। भारतीय बॉक्सिंग फेडरेशन और कोचिंग स्टाफ की मेहनत साफ दिखाई देती है। इन युवाओं की सही ट्रेनिंग, सही मार्गदर्शन और सही मंच यहीं से मिल रहा है और नतीजे सामने हैं, और ये वही रास्ता है जहां पर एक समय मैरी कॉम, विजेंद्र सिंह और अमित पंघाल जैसे लोगों ने भारत का नाम रोशन किया था।
0: और पिछले कुछ समय में लगातार बॉक्सिंग में जिस तरह से हमारे खिलाड़ी आगे बढ़ रहे हैं और महिलाएं भी उसमें पीछे नहीं है, निखत जरीन, स्वीटी बूरा, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने बहुत सारे लोगों को प्रेरित किया है बॉक्सिंग के क्षेत्र में आने के लिए। और विजेता, अक्सर ये लोग कहते हैं कि बॉक्सिंग में चेहरे पे घूंसे पड़ेंगे तो कहीं चेहरा खराब तो नहीं हो जाएगा, लड़की की शादी भी करनी है, लेकिन इन सब चीजों से दरकिनार करते हुए और लगातार अपने खेल को और निखारते हुए आज भारतीय बेटियां बहुत नाम रोशन कर रही हैं पूरे देश में।

0: और अब गांधीनगर के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में एशियाई सीनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 का, जैसे कि आपको पता ही है कि आगाज हो चुका है, 44 साल बाद एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियंस की भारत जो है मेजबानी कर रहा है और ये प्रतियोगिता गांधीनगर गुजरात में शुरू हो चुकी है 11 मई से और 17 मई तक चलने वाली है। 28 देशों के करीब 180 एथलीट इसमें हिस्सा ले रहे हैं।
1: और विजेता, जैसे आपने बताया कि 180 एथलीट यहाँ पर हिस्सा ले रहे हैं और इसमें से बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो ओलंपिक पदक विजेता है, ओलंपियन है, ओलंपिक में जिन्होंने अपना नाम रोशन किया है। और अगर हम बात करें वेटलिफ्टिंग की, तो वेटलिफ्टिंग एक ऐसा खेल है जिसमें एशिया का जो स्तर है, पूरे एशिया में जो हमारे खिलाड़ी हैं वेटलिफ्टिंग में, वो बहुत ही शानदार है। बल्कि हम जो वेटलिफ्टिंग से जुड़े हुए लोग हैं वो अक्सर इस बात को कहते हैं कि बहुत तगड़े खिलाड़ी हैं, क्योंकि ये जितने भी हमारे ऐसे खेल होते हैं जिनको हम आयरन गेम्स कहते हैं, इसमें वेटलिफ्टिंग, पावर लिफ्टिंग, बॉडी बिल्डिंग, स्ट्रेंथ लिफ्टिंग, इस तरह के जो खेल होते हैं इनमें हम एक शब्द यूज करते हैं कि तगड़े खिलाड़ी हैं। तगड़े खिलाड़ी होने का मतलब ये है कि आपकी टेक्निक भी अच्छी है, आप मानसिक रूप से भी बहुत स्ट्रांग हैं, शारीरिक रूप से तो आपको स्ट्रांग होना ही है। तो कुल मिलाकर भारतीय खिलाड़ी बहुत मेहनत करके इस बार इस चैंपियनशिप में हिस्सा ले रहे हैं और वो मेहनत नजर भी आ रही है, क्योंकि पहले दिन ही हमने पदक भी जीत लिया है।
0: और उत्तर कोरिया के पैंग उन चोल ने इस वर्ग में पूरे मैदान पर अपना दबदबा कायम किया। उन्होंने क्लीन एंड जर्क में 174 किलोग्राम का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा और कुल 304 किलोग्राम के टोटल के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया। वहीं रजत पदक गया मलेशिया के मोहम्मद अनीक कसदान को। उन्होंने स्नैच में 122 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 155 किलोग्राम उठाते हुए कुल 277 किलोग्राम का करियर बेस्ट प्रदर्शन किया। 2022 में बहरीन में चौथे और 2023 में दक्षिण कोरिया में छठे स्थान पर रहे अनीक ने के लिए एक ऐतिहासिक सफलता थी। और कांस्य पदक वियतनाम के जिया तान लाई के खाते में गया, जिन्होंने 276 किलोग्राम 267 किलोग्राम का टोटल लिफ्ट दिया। हालांकि बाद में क्लीन एंड जर्क के दूसरे प्रयास में असफल रहे और अपना दूसरा प्रयास वो नहीं कर पाए।
1: और यहां मैं अपने सुनने वालों को बता दूं कि वेटलिफ्टिंग में दो इवेंट होते हैं, एक इवेंट होता है स्नैच और एक होता है क्लीन एंड जर्क। स्नैच इवेंट माना जाता है कि दुनिया का फास्टेस्ट स्पोर्ट्स है, यानी कि फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में आप वेट को अपने सिर के ऊपर लाते हैं और अगर वो उठ जाता है तो ठीक है, नहीं उठता तो फ्रिक्शन ऑफ सेकंड में वेट गिर भी जाता है। आपने बहुत बार देखा होगा कि वेट लिफ्टर एक सेकंड के अंदर ही अपनी लिफ्ट पूरी कर जाता है, क्योंकि सबसे फास्टेस्ट गेम माना जाता है दुनिया में स्नैच।

0: एक ही झटके में वेट लिफ्टर जमीन से वेट को अपने सिर के ऊपर लाता है। वहीं दूसरा इवेंट होता है क्लीन एंड जर्क। क्लीन एंड जर्क के अंदर पहले क्लीन की जाती है, यानी कि जमीन से वेट को अपने कंधे तक उठाया जाता है, उसके बाद खड़े होने के बाद में फिर उसको कंधे से अपने सिर के ऊपर उठाया जाता है, जिसको जर्क कहा जाता है। तो क्लीन एंड जर्क में अधिक आमतौर पर अधिक वेट उठता है, और स्नैच में नॉर्मली जो 20 से 25 किलो का मार्जिन रहता है। स्नैच का जो स्टाइल है वो थोड़ा सा इस तरह सा है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए उसमें थोड़ा कम वेट उठता है। लेकिन जिस तरह से अब खिलाड़ी वेट उठा रहे हैं, 303 किलोग्राम का जो टोटल कोरिया के खिलाड़ी ने दिया है, तो ये दर्शाता है कि अब वेट लिफ्टिंग का स्टैंडर्ड खासतौर से एशियाई स्तर पे तो बहुत हाई हो गया। एक ज़माना था जब रशिया या बल्कि उस ज़माने में यूएसएसआर हुआ करता था, और साथ ही यूरोपियन खिलाड़ी बहुत आगे थे। हालांकि वेट लिफ्टिंग में अमेरिका का दबदबा बहुत अधिक नहीं रहा है, यूरोप का दबदबा हमेशा रहा है, लेकिन अब एशिया के जो खिलाड़ी हैं उन्होंने दिखा दिया है कि वेट लिफ्टिंग में अब वो पीछे नहीं रहेंगे। और भारतीय खिलाड़ियों में भी बड़ी एक गजब की बात मैं आपको बताता हूँ। अक्सर वेट लिफ्टिंग की बात आते ही हम देखते हैं कि एक मजबूत कद काठी का मजबूत व्यक्ति खड़ा है, और वो पुरुष होता है। लेकिन पहला पदक जीता महिला ने ओलंपिक में, जब पदक जीता तो वो थी कर्णा मल्लेश्वरी, सिडनी ओलंपिक 2000, जहां पर इस अबला नारी, जिसको अबला समझा जाता था, उसने सभी सबल लोगों को अलग करते हुए वेट लिफ्टिंग में पदक जीता। और उसके बाद से लगातार वेट लिफ्टिंग भारत में आगे बढ़ती रही, बहुत बड़े बड़े नाम है, और अब तो हम ओलंपिक कई बार पदक जीत चुके हैं कर्णा मल्लेश्वरी के बाद, उसकी जिस तरह से अब चानू के पदक आ रहे हैं, और अब जिस तरह से कोमल, नाम ही कोमल है लेकिन काम बहुत मजबूत किया उन्होंने
1: जी। और भारत की बात करें तो भारत के ऋषिकांत सिंह चनामदन ने केवल स्नैच का पहला प्रयास 115 किलोग्राम में किया, और उसके बाद उन्हें प्रतियोगिता से हटना पड़ा। घरेलू दर्शकों के सामने ये थोड़ा सा निराशाजनक रहा, लेकिन आगे के वर्ग में भारतीय खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद रखते हैं, जैसा कि अभी बात कोमल की हो रही है।
0: और जिस तरह से कोमल ने जो टोटल किया है वो अपने आप में दिखाता है कि जो कोमल ने वजन उठाया है वो दिखाता है कि नाम ही सिर्फ उनका कोमल है। हालांकि बहुत लाइट वेट कैटेगरी में वो खेलती हैं, और जिस तरह से चानू इस में नहीं थी इस चैंपियनशिप में, तो एक अलग से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आ जाती है कि भाई एक सीनियर खिलाड़ी नहीं है तो अब हमें पदक जीतना है। तो कोमल कौर ने जिस तरह से अपनी वेट लिफ्टिंग की, तो दिखाता है कि हमारे वेट लिफ्टर बहुत स्ट्रांग है। और गांधीनगर में हमारे प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता वहाँ पर उपस्थित है, और हमने उनसे पूछा कि किस तरह का माहौल है इस समय गांधीनगर में, किस तरह की गतिविधियां चल रही हैं, और भारतीय वेट लिफ्टिंग दल कितना मजबूत है इस समय पदक जीतने के लिए, इस प्रतियोगिता में वो कितने पदक जीत सकते हैं। ढेर सारे सवाल हमने अपने प्रसार भारती संवाददाता संजीव दत्ता से किए, उन्होंने क्या कहा आइए सुनते हैं।
2: बहुत ही बढ़िया माहौल है गांधीनगर का, यहाँ पर अपने अपने देश से राष्ट्र से आए हुए उत्कृष्ट खिलाड़ी अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे हैं। 28 देश हैं जो इस खेल कौशल में अपना प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पुरुषों की अगर बात करें तो पुरुषों में भी बहुत अच्छे बढ़ चढ़ कर प्रतिनिधित्व आया है। जो ओलंपियंस प्लेयर्स हैं वो भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। अगर हम कल के 48 किलो भार वर्ग की बात करें तो उसमें महिलाओं में भी और पुरुषों में भी, दोनों में ही डीपीआर कोरिया के पुरुष भार वर्गों में ओलंपियन थे। और वहीं अगर हम बात करें महिलाओं की, तो महिलाओं में चाइनीज ताइपाइन की जो स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, स्वर्ण पदक विजेता और रजत पदक विजेता दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय रेसलर्स और वेटलिफ्टर्स थी, तो वहां पर भारतीय कोमल कौर ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए अपना तीसरा स्थान प्राप्त किया और कांस्य पदक विजेता बनी।
0: एशियन चैंपियनशिप यहाँ पे हो रही है, और किस तरह का माहौल है, किस तरह का जोश है वहाँ पे लोगों में?
2: देखिए, ये प्रतियोगिता दूसरी बार भारत को मेजबानी करने का मौका मिला है, तो स्वाभाविक है कि भारत इस आयोजन से पूरी तरह से

सिस्टम्स थे वो भी फ्रैगमेंटेड थे, जैसा मैंने कहा कि हर कोई अकेले अकेले में सोचता था, आज वो इंटीग्रेटेड है, और इंटीग्रेटेड होने के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन, और टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन के माध्यम से वो उनको बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छे परिणाम आने वाले हैं, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। हम लोगों ने एक ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस किया है, और जब हम ट्रांसफॉर्मेटिव प्रोग्रेस की बात करते हैं तो हमने हेल्थ सिस्टम्स को भी काफ़ी स्ट्रेंथन किया है, उस सिस्टम्स को भी आगे बढ़ाया है, और हमारी कोशिश क्या है कि हम एक्सपैंड करें अफोर्डेबल और हाई क्वालिटी के हेल्थ केयर को, अफोर्डेबल भी हो और हाई क्वालिटी का भी हो, और जो हमारा फोकस है वो फोकस है प्रिवेंशन पर, अर्ली डिटेक्शन पर और कॉन्टिनम ऑफ केयर पर। यानी सबसे पहली बात है कि हम प्रिवेंट करें, प्रिवेंशन के साथ साथ अर्ली डिटेक्शन करना बहुत ज़रूरी है, और कॉन्टिनम ऑफ केयर उसके लिए एक आवश्यक पहलू है जिसको हमको ध्यान रखने की ज़रूरत है। और ये जो हमारी हेल्थ रिसर्च की ICMR जो काम कर रहा है वो निश्चित रूप से इस क्षेत्र में बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, और इसके साथ साथ ICMR का एक बहुत बड़ा वाइटर रोल भी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी भी है कि वो नर्चरिंग करे इनोवेशन के इकोसिस्टम को, उसको नर्चर करने की ज़रूरत है, और मैं ये कह सकता हूँ कि ICMR बखूबी इस काम को कर रहा है। हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि हमारे क्रिटिकल हेल्थ चैलेंजेस क्या हैं, और उसके लिए ICMR फंडिंग के लिए भी तैयार है। मैंने ICMR को भी कहा है कि फंड

0: is not the problem, finance is not the problem. ये कई बार गलतफहमी लोगों को पैदा हो जाती है कि fund और finance is the problem. No, fund and finance is not the problem. Problem is that we have to show the outcomes, and outcome related funding is always very important, that we have to understand. इसके लिए मैं आप सब से कहूँगा कि हम funding के लिए भी तैयार हैं और validating करने के लिए भी ICMR तैयार है. और हमें जो बनाना है वो लो कॉस्ट हो, हाई क्वालिटी हो, इंडिजिनस हो, डायग्नोस्टिक में भी, थेरापेटिक्स में भी और वैक्सीन्स में भी. तो इस तरीके से हम इस काम को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं.
1: और इसी के साथ ICAR और ICMR के संयुक्त राष्ट्र मिशन सेहत पर आधारित यह रेडियो रिपोर्ट अब संपन्न होती है. प्रस्तुति सहयोग दिनेश और विशाल, प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और कार्यक्रम संयोजक शिवनंदन लाल.
2: तो श्रोता सुन रहे थे दिनांक 11 मई 2026 को पूसा नई दिल्ली में आयोजित ICAR और ICMR द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किए गए राष्ट्रीय मिशन सेहत के शुभारंभ के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम पर ये आधारित रेडियो रिपोर्ट.
3: बिल्कुल शीतल बहन, ये भारत सरकार के कृषि और स्वास्थ्य को जोड़ने के लिए सेहत यानी साइंस एक्सीलेंस फॉर हेल्थ थ्रू एग्रीकल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन मिशन की शुरुआत थी कि ये ICAR और ICMR की एक संयुक्त पहल है जिसका मुख्य उद्देश्य पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देना और खेती से सीधे मानव स्वास्थ्य और जो पोषण होता है ना, जो पोषण में सुधार कैसे होता है उसके बारे में लोगों को जागरूक करना है.
2: जी बिल्कुल श्रोताओं, जैसे कि इसमें बात की गई है कि पौष्टिक सुधार, फसलों के जो सेहत के बारे में उसकी सुधार की बात हो रही है कि जहाँ भी फसलें होंगी, खेती की जाएगी, उसमें सुधार होगा, उसमें पोषक तत्व होंगे, क्योंकि उसी को यकीनन मार्केट में जाके हम लोग खाएंगे. तो जब वो स्वस्थ होंगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, अगर वो ही स्वस्थ नहीं होंगी तो हम भी स्वस्थ नहीं रह पाएंगे.
3: बिल्कुल शीतल बहन, बहुत अच्छी जानकारी थी. और इसका लक्ष्य केवल खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाना नहीं बल्कि ऐसी पौष्टिक फसलों को बढ़ावा देना है जो छिपी हुई भूख यानी हिडन हंगर और कुपोषण जैसी समस्याओं को दूर कर सके.
2: हाँ, क्योंकि कुसुम बहन क्या हो रहा है आज की डेट में, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं हर घर की समस्या है कि खाना नहीं खाते, उनको भूख नहीं लगती है. हर माँ की ये शिकायत रहती है कि मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, खाना नहीं खाता, उसे भूख नहीं लगती, डॉक्टर के पास जाके दवाइयाँ लेती हैं कि इसे भूख लगने की दवाई दे दो. पर कारण यही है कि जो वो खा रहे हैं उन्हें सही नहीं मिल रहा है और जो मिल रहा है वो भी स्वस्थ नहीं है.
3: बिल्कुल, बहुत अच्छी जानकारी थी शीतल बहन. अब थोड़ा सा हम मनोरंजन करवा देते हैं और सुनवाते हैं राजेंद्र जाटव से ये रागनी.

0: तो श्रोता सुन रहे थे राजेंद्र जाटव की आवाज में ये रागनी। तो शीतल बहन, हम समय समय पर हमारे जो किसान भाई बहन है उनको योजनाओं के बारे में जानकारी देते
1: जी
0: हैं। जो भी
1: बिल्कुल
0: सरकार योजनाएं लेकर आती है उनमें से ही एक योजना है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। भारत सरकार द्वारा पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों को कौशल प्रशिक्षण, आधुनिक उपकरण और बिना गारंटी के सस्ता लोन प्रदान करने के लिए चलाई जा रही एक बहुत ही कल्याणकारी योजना है।
1: जी बिल्कुल सरकार का उद्देश्य ही है कि जो हमारे युवा हैं देश में, जो लोग हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ हुनर पाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, तो सरकार की तरफ से कुछ क्लासेस चलाई जाती हैं, प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग दी जाती है। महिलाओं के लिए अलग होती है, लड़कियों के लिए अलग होती है, जो घर में थोड़े से बुजुर्ग हैं उनके लिए भी, जो काम वो घर में रह के कर सकते हैं उसके लिए भी सरकार कुछ ऐसी ट्रेनिंग देती है कि वो घर में रह के इतना कमा सके कि वो अपनी खर्चा उठा सकें और किसी के ऊपर वो निर्भर ना रहें। तो बहुत सारी है, जैसे महिलाओं के लिए अचार बनाना हो गया, घर में साज सजावट का सामान हो गया, लकड़ी से कुछ बनाना है, या फिर महिलाएं पार्लर का कोर्स करती हैं, बुनाई का है, कढ़ाई का है, जो युवक है वो मोबाइल का करना चाहते हैं, या एसी, जैसे आप देख रहे हैं टेक्निकल भी बहुत सारी चीज़ों में आप जा सकते हैं। फिर इसके बाद सरकार आपको 3 महीने 5 महीने जो भी इसकी ट्रेनिंग होती है वो दे के आपसे एक एग्ज़ाम, जो परीक्षा ली

0: जाती कि आपने कितना सीखा। उसके बाद आपको एक सस्ते लोन पे आपको बिजनेस करने के लिए, रोजगार करने के लिए आपको सरकार लोन भी देती है और पैसा देती है।
1: बिल्कुल शीतल बहन, जो भी हमारे में हुनर है, जो भी कौशल है, उसको बढ़ावा देते हैं, वजीफा देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं और ऋण इत्यादि देकर उन्हें आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करते हैं।
0: यही है आत्मनिर्भर भारत की पहल, क्योंकि जब इंसान आत्मनिर्भर बनेगा तो हमारा भारत भी आत्मनिर्भर बनेगा।
1: जी, तो आइए एक और हम रागनी सुनवाते हैं, राजेंद्र जाटव की आवाज में सुनते हैं।

0: इसी के साथ आज का ग्राम संसार यहीं संपन्न होता है। सुनने वाले सभी भाई बहनों को हमारी राम राम।
1: कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और संयोजक थे शिवनंदन लाल।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब से कुछ ही पलों में आप हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि बैठक के दौरान ब्रिक्स सदस्य देशों के विदेश मंत्री आपसी हित के वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा, सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
1: ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को चीन के समर्थन से जुड़ी खबरों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये खबरें पहले से ज्ञात तथ्यों की

0: पुष्टि करती हैं। उन्होंने कहा कि स्वयं को जिम्मेदार राष्ट्र बताने वाले देशों को इस बात पर विचार करना होगा कि आतंकवादी ढांचे की रक्षा के प्रयासों का समर्थन उनकी प्रतिष्ठा को प्रभावित करता है। भारत और नेपाल संबंधों पर श्री जायसवाल ने कहा कि दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंध हैं। दोनों देश साझेदारी को सुदृढ़ करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार साइबर सुरक्षित भारत के निर्माण की दिशा में अथक प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों पर अंकुश लगाने में अवैध खातों की समस्या एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र ने आज रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ एक समझौता किया। इसका उद्देश्य बैंकिंग और डिजिटल भुगतान प्रणाली में साइबर आधारित वित्तीय धोखाधड़ी से निपटने और अवैध खातों को कम करने में सहयोग को मजबूत करना है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ भारत की ओर देख रहे हैं। भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद के स्थापना दिवस पर उन्होंने कहा कि यह संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने अपने हाथ में ले ली है। राज्य पुलिस की सिफारिश के बाद ये जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी गई है। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात जायंट्स के खिलाफ मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत सुनने वाले सभी किसान भाई बहनों को हमारी
1: राम
0: राम
1: राम। तो श्रोताओं, खेती की बात चल रही है, कृषि की बात चल रही है, तो आपके लिए एक बातचीत हम सुनवाएंगे खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय। अब जैसे कि खरीफ फसलें हुई, जैसे धान, मक्का, कपास, इनकी जो मिट्टी की जांच का सही समय है वो यही है, मई जून। तो वो कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, क्या सावधानियां बरती जाएं, इन सब से संबंधित एक बातचीत आपको सुनवाते हैं खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय। और इसमें हिस्सा ले रहे हैं विशेषज्ञ हैं डॉक्टर वेद प्रकाश, आप मृदा वैज्ञानिक हैं मुजफ्फरनगर से।
2: भाई नमस्कार। जिस तरीके से आप अपने स्वास्थ्य की समय समय पर जांच कराते रहते हैं, उसी तरीके से हमें चाहिए कि हम अपनी मिट्टी, अपने खेत का भी परीक्षण समय समय पर कराते रहें, क्योंकि उसके स्वास्थ्य की जांच कराएंगे तभी आप अपने खेत से अच्छा उत्पादन

0: ले पाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि मिट्टी जांच की, तो उसका सही समय क्या है, उसका क्या तरीका है, किस तरीके से उसका सैंपल लेना है और कहाँ जांच करानी है, इस पर विस्तार से जानकारी के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर वेद प्रकाश जी को, जो कि वैज्ञानिक हैं गन्ना अनुसंधान संस्थान मुजफ्फरनगर में। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा कि जो मिट्टी की जांच कराते हैं उसका क्या महत्व है, किस लिए करानी चाहिए?
1: किसान भाइयों, मिट्टी की जांच के लिए जो महत्व तो है, इसमें हमें अपने खेत में कौन कौन से पोषक तत्व तो होते हैं और उस हमारे खेत में किस अवस्था में वो हैं और कितनी हम मात्रा में डालें जिससे हमारी लागत कम हो और उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है, तो इसलिए मिट्टी की जांच कराते हैं। मिट्टी की जांच का जो सही समय है वो अप्रैल से लेके और जून तक, यानी जब हमारी गेहूं की फसल कट जाए उसके बाद कराना चाहिए।
0: यानी अप्रैल से जून तक, यानी ये समय जो चल रहा है मिट्टी की जांच का,
1: जी
0: सही,
1: जी
0: बिल्कुल उपयुक्त समय है।
1: बिल्कुल।
0: तो जो हमारे किसान भाई मिट्टी की जांच करना चाहते हैं, तो सैंपल कैसे लें, क्या तरीका है सैंपल लेने का?
1: किसान भाई, अगर अपने खेत की मिट्टी की जांच कराना है तो सैंपल लेने का सबसे बढ़िया तरीका ये है, जैसे अगर 1 बीघे का खेत है या 1 एकड़ का खेत है तो कम से कम 8 या 10 स्थानों से वी आकार का एक गड्ढा खोद लेंगे और उसकी सारी मिट्टी बाहर निकाल लीजिए और एक साइड से 2 इंच मोटी परत लेके और एक गड्ढे से जैसे 200 ग्राम मिट्टी होगी, जब हमने 10 जगह से मिट्टी ली है तो 2 किलो मिट्टी होगी। अब 2 किलो मिट्टी को उसको 4 बराबर भागों में बांट लीजिए, आमने सामने के भाग को हटा दीजिए, फिर 1 किलो मिट्टी होगी, फिर उसके बाद पुनः फिर प्रक्रिया करेंगे, अब ती विपरीत साइड की मिट्टी को फेंक देंगे, सिर्फ आपको 500 ग्राम मिट्टी कपड़े की थैली में भरकर अपने नजदीक मृदा परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भिजवाते हैं।
0: डॉक्टर साहब, जिस तरीके से आपने बताया है कि उसमें जो गड्ढा किया, और गड्ढा वी आकार का करना
1: जी
0: है,
1: जी
0: तो उससे जो मिट्टी निकालते हैं, तो गड्ढा क्या एक जगह से ही सैंपल लेना है?
1: नहीं, एक जगह से नहीं, 8-10 जगह से लेना है और उसमें खास जगह होती है, जैसे अगर कोई पेड़ खड़ा है तो उस पेड़ के नीचे का नमूना नहीं लेंगे, अगर खेत कहीं ऊसर का है तो ऊसर के पैच के अलग नमूना इकट्ठा करेंगे और बाकी खेत का एक जगह नमूना इकट्ठा करेंगे, तो ये विशेष सावधानी भी रखनी है।
0: मान लीजिए जब अलग अलग से नमूना लिया, सबको
1: हाँ
0: एक में मिलाना है,
1: हाँ
0: मिलाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा करके, जब नमूना कितना होना चाहिए, कम
1: 500 ग्राम
0: 500 ग्राम,
1: जी,
0: तो उसको पैक कौन सी थैली में
1: ये
0: करना
1: जैसे
0: चाहिए?
1: कपड़े की थैली अगर सिली हो, अगर कपड़े की थैली नहीं तो एक पॉलीथीन आती है, तो पॉलीथीन का जैसे जो टिश्यू कल्चर का पौधा नहीं होता है जिसमें हमारी 500 ग्राम मिट्टी आ जाए, तो उसमें आप रख लीजिए और रखने के बाद फिर उसमें देख लीजिए जैसे खेत का नाम, खसरा संख्या, कौन सी फसल बोई थी और कौन सी फसल बोने जा रहे हैं, तो ये 3-4 सावधानियां देना है, उस पर आधार कार्ड संख्या भी लिख देनी है।
0: तो ये सारा लिखने के बाद, आप जो भी आपके पास में नज़दीक कोई भी कृषि अनुसंधान संस्थान हो या कृषि विज्ञान केंद्र, वहाँ से कितने दिन में रिपोर्ट आ जाती है?
1: ये लगभग 1 सप्ताह में, जैसे आपके नज़दीक कृषि विज्ञान केंद्र हैं, जैसे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल है तो
0: जी
1: वहाँ के जो कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ भी करा सकते हैं, हमारे पूसा इंस्टीट्यूट है तो वहाँ से भी मिट्टी की जांच हो जाती है, हमारी भारतीय गन्ना अनुसंधान केंद्र लखनऊ है तो वहाँ भी मिट्टी की जाँच होती है, तो वहाँ भी किसान अपना सॉइल हेल्थ कार्ड बनवा लें और कम से कम 1 सप्ताह लगता है जो मुख्य पोषक तत्व की जिसकी जांच करते हैं, तो उसकी अगर जैसे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच करते हैं तो उसमें कम से कम 10 दिन लग जाते हैं।
0: अच्छा, जैसे आपने कहा है कि मुख्य पोषक तत्वों की जांच करानी है, अगर दोनों की जांच करानी हो, तो डॉक्टर साहब, बहुत से जब हमारे किसान भाई सैंपल लेते हैं, तो उसमें खुरपा है, फावड़े है, उसका प्रयोग करते हैं, तो उसमें क्या सावधानी रखें, वो फावड़ा साफ हो, कहीं अगर कोई आयरन की जांच करवा रहा है, और क्योंकि फावड़ा भी लोहे का होता है, जब उससे खुदाई करते हैं खुरपी से, तो क्या उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ता?
1: नहीं, उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारा कहना मतलब जो खुरपा हो बिल्कुल साफ हो, ठीक है कि नहीं, ये नहीं कि उसमें मिट्टी लगा हुआ रात में रखा हुआ तो उसपे आयरन की वो आ जाता है, तो
0: जी
1: हमारा कहना उसको पहले या तो धुल दो, धुलने के बाद उसको साफ पोंछ दो कपड़े से, उसके बाद फिर मिट्टी से लो, या जैसे फावड़ा है फावड़े को भी साफ कर लीजिए, क्योंकि फावड़ा किसी दूसरे खेत में चलाया गया तो वहां की मिट्टी का अंश आ गया और दूसरी मिट्टी में जब कलेक्ट किया तो दोनों का कंट्रोवर्सी हो जाती है, इसलिए हमेशा साफ सुथरा उपकरण होना चाहिए, चाहे खुरपी से ले लो, चाहे फावड़े से ले लो, या सबसे बढ़िया अपने घर में लोहे की पाइप फुकनी जिसे कहते हैं चूल्हा जलाने वाली, वो तो साफ ही होती है, आप अगर खेत में जा रहे हैं, खेत आपकी जुताई हो चुकी है तो एक फुकनी ले लीजिए, एक छोटी हथौड़ी ले लीजिए टाइप की, तो तो आप उसको 10-12 जगह

0: फुकनी को भी ठोक दीजिए और फुकनी पे उसमें निशान बांध दीजिए कि 6 इंच का निशान लगा दीजिए और उसको भी बहुत अच्छे से तरीका लिया जा सकता है। उसमें ऊपर से नीचे तक की जितनी हॉरिजेंटल होती है ABCD सबका आ जाता है। तो चाहे आप फुकनी से ले लीजिए या खुरपी से ले लीजिए, ये लेने का समझो तरीका है।
1: अच्छा, जब जो सूक्ष्म पोषक तत्व उनकी जांच कराते हैं और या मुख्य पोषक सबकी इकट्ठी जांच कराते तो क्या उस पे सैंपल पे लिखना होता है कि ये चीजों की जांच कराएं?
0: हाँ, सैंपल की लिखना, क्योंकि उसका शुल्क जैसे कहीं कहीं तो निःशुल्क होता है, जैसे भारत सरकार है तो वहाँ निःशुल्क भी करा लेती है, कुछ राज्य स्टेट जो है वहाँ कुछ शुल्क ले लेते हैं। आपके पते की पर्ची पे लिखेंगे कि हमें मुख्य पोषक तत्व की जांच कराना आया है, मुझे दोनों जांच करवानी है, तो दोनों जांच करानी होगी भी दोनों का सोल हेल्थ कार्ड बन जाएगा। आप जब तक अंकित नहीं करेंगे तब तक मेजर ही जहां जांच होती है तो मेजर की जांच कर देंगे।
1: तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि इसमें जो सूचना लिखी जाती है उसमें ये भी लिखी जाती है कि आपने उससे पहले कौन सी फसल ली और आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं।
0: जी जी,
1: तो उसके अनुसार पोषक तत्वों की भी जांच की जाती
0: जी
1: है।
0: जी जी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है तो इसकी क्या भूमिका रहती है इसमें?
0: मृदा स्वास्थ्य कार्ड की भूमिका रहती है, जैसे हमारा आपका आधार कार्ड है
1: जी,
0: तो आधार कार्ड जैसे कहीं खाता खुलवाते उसमें लगा देते हैं। अब हमारी जो सरकारें हैं वो सोयल हेल्थ कार्ड इसलिए मस्ट कर रहे हैं, जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने फार्म रजिस्ट्री करा दी किसानों की, तो फार्म रजिस्ट्री का एक रजिस्ट्रेशन हो गया, एक सोयल हेल्थ कार्ड हो गया, तो सोयल हेल्थ कार्ड के आधार पे हमें उर्वरक को निर्धारित करेंगे कि इतनी मात्रा हमें यूरिया की देनी है, इतनी हमें DAP की देनी है, इतनी हमें सिंगल सुपर फास्फेट देनी है या हमें पोटास की मात्रा देनी। पहले अंधाधुंध किसान ले लेते थे, लेकिन अब सरकार ने सोयल हेल्थ कार्ड में आपकी जमीन में कौन सी तत्व की कमी है तो वही खाद आपको मिलेगी।
1: अच्छा, सोयल हेल्थ कार्ड जैसे कुछ लोगों के पहले बने उनमें तो केवल आवश्यक पोषक तत्वों का छुए थे, अब क्या उनको अपडेट किया गया है?
0: हाँ, उनको अपडेट करा, जैसे पहले आप आधार कार्ड में किसी की जन्मतिथि की टूटी पाई गई, किसी के डेथ अपडेट हो जाता है, उसी तरीके से आप दोबारा सैंपल लेंगे और सैंपल लेने के बाद जो अपना पुराना जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो वहाँ उस इंस्टीट्यूशन में ले जाके, तो अब दोबारा जब नया बनेगा उसमें मुख्य पोषक तत्व सूक्ष्म पोषक तत्व दोनों का सोयल हेल्थ कार्ड बन जाते हैं।
1: जैसे सोयल हेल्थ कार्ड तो बना दिया गया और एक किसान को दे दिया गया, मान लीजिए वो किसान अनपढ़ है तो वो कैसे समझेगा कि हमारे खेत में किस पोषक तत्व की कमी है और कितना हमें डालना है?
0: उसमें जब सोयल हेल्थ कार्ड बना होगा उसमें 2 पेज का होगा, एक तरफ तो वो किसानों का जो मिट्टी की जांच का क्या है, जैसे नाइट्रोजन कितने निम्न में है या मीडियम में या हाई में है, दूसरी तरफ उसकी वैज्ञानिक संस्तुति कि अगर निम्न है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना है, मध्यम है तो हमें इतना नाइट्रोजन देना, उच्च है तो हमें ये तरीके देना, तो उसकी सिफारिश वैज्ञानिक संस्तुति उसी सोयल हेल्थ कार्ड में भी दी जाती है, एक तरफ उसका रिजल्ट एक तरफ उसका सुझाव
1: तो दिया गया। लेकिन मेन चीज ये है कि किसान फसल क्या लगा रहा है उसके अनुसार सुझाव कैसे निर्धारित किया?
0: तो उसमें जब आप पते की पर्ची पे लिख देंगे, जैसे मैंने गेहूं की फसल काटी है अब मुझे धान की रुपाई करनी है, तो गेहूं के लिए रिकमेंडेशन NPK का और इधर आपके धान का रिकमेंडेशन NPK, तो यानी सबका अलग अलग फसल आपको दे जाए, सिर्फ आपको शुल्क एक ही देना पड़ेगा, तो क्योंकि सबकी मात्रा अलग अलग होती है। जैसे अभी धान की बात करते हैं तो धान में हमें 120 केजी नाइट्रोजन जरूरत पड़ती है, 60 केजी फास्फोरस जरूरत पड़ती है, 40 केजी पोटाश चलती है 1 हेक्टेयर में, तो हमारा क्या सबका अलग है, अगर सिंगल सुपर फास्फेट है तो उसकी अलग मात्रा जरूरत पड़ती है।
1: अगर डॉक्टर साहब किसी किसान ने अपने खेत में हरी खाद या गोबर की खाद लगाई है तो उसको किस तरीके से निर्धारण करना है?
0: उसमें जैसे है, जैसे अगर हम धान की फसल की बात करते हैं क्योंकि खरीफ की बात हो यहाँ पे हो रही, तो धान में हमें 3-4 टन प्रति हेक्टेयर रिकमेंडेशन है गोबर की खाद हो, वर्मी कंपोस्ट हो, ये डालना है। अगर हमने ये नहीं डाल पाए तो अगर हमने हरी खाद ले ली, हरी खाद जैसे आपने देख लिया उसका रिकमेंड 45 KG नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर, क्योंकि उसमें जब अगर ढैंचा की फसल में अलग नाइट्रोजन प्राप्त होता है, सनई में अलग प्राप्त होता है, अब आपने किससे उसमें हरी खाद के में लिया उतनी आप माइनस कर देंगे,
1: ढैंचा है
0: तो सनई है,
1: उड़द है मूंग है
0: तो इनकी जो मात्रा है वो आप माइनस करके बाकी आपको रिकमेंडेशन दी जाएगी, क्योंकि सारी ब्यौरा जब तक देखो डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है वो सारी चीज बताएगा तभी वो खुल के दवा लिखेगा, नहीं तो नॉर्मल वो दवा लिख देगा, तो ये सारी किसान को देनी पड़ेगी अपनी सूचना कि हमारे खेत में ये चीज है।
1: तो स्वस्थ मृदा की जांच के लिए और जो सोयल हेल्थ कार्ड है वो उस कितने दिन तक वैलिड रहता है?
0: ये 3 साल तक वैलिड रहता है, यानी 3 साल बाद आपका सोयल टेक्सचर बदलता है, 3 साल बाद पुनः आपको जांच की आवश्यकता पड़ती है, चाहे वो मुख्य पोषक तत्व की जांच कराएं चाहे सूक्ष्म पोषक तत्व की जांच, 3 साल के बाद तुरंत आप चेंज कर लेंगे।
1: कि जब कोई भी किसान फसल चक्र अपनाता है, तो उसमें क्या है कि मान लीजिए पहले उसने उथली जड़ वाली कोई फसल लगाई, तो उसमें ऊपर की मृदा से पोषक तत्व लिए गए। अगर वो अगली फसल लेता है और वो गहरी जड़ वाली लेता है तो नीचे से पोषक तत्व ले लेता है, तो इस फसल के उत्पादन पे फर्क नहीं पड़ता है, और लेकिन पोषक तत्व नीचे से भी लिए गए ऊपर से भी लिए, कर्षण क्रियाएं एक में केवल ऊपर से हुई दूसरे में गहरी हो गई। तो उसी तरीके से अगर किसी किसान ने मान लीजिए अदलहनी फसलों का प्रयोग किया, इसको उसने लगा लिया, और दोबारा अगर वो लगाता है इसमें कोई दलहनी फसल लगा ले जिससे उसकी मृदा की जो उपजाऊ शक्ति है वो बनी रहती है,
0: वो बनी रहे, ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन भी रहे।
1: जी ऑर्गेनिक कार्बन मेंटेन रहता है, क्योंकि जो दलहनी फसलें होती हैं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को इकट्ठा करती हैं, तो इसके लिए जरूरी रहता है कि आप फसल चक्र अपनाएं।
0: इसके लिए भी रहता है, लेकिन मेन ये चीज है कि जो गहरी जुताई की बात करें, जब किसान चार जुताई करता है उसमें एक जरूरी जुताई करता है जिससे मिट्टी नीचे की ऊपर हो जाती, ऊपर की नीचे हो जाती, हमेशा वो कल्टीवेटर नहीं चलाएगा। अगर दो हैरो भी मारे हैं फिर उसके बाद दो कल्टीवेटर भी मारेगा तब फसल की बुवाई करेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, हमारे काफी किसानों से हमने डिस्कस किया तो किसान भाई कहते हैं कि हमें मिट्टी को पलटना नहीं चाहिए ज्यादा गहरी मिट्टी को, उसका क्या कारण है?
0: उसका ये कारण आपने देखा है कि जब से हमारा रोटावेटर आया
1: जी,
0: रोटावेटर 4 इंच तो जमीन ऊपर से हो गई भुरभुरी, नीचे जब आप 7 इंच खोदो तो एक कठोर लेयर होगी कि नहीं? जब हम प्लाउ से उसकी जुताई करवाएंगे तभी तो वो उसकी टूटेगी परत, जब टूटेगी क्योंकि हमारी जड़ें तो नीचे 7 इंच तक जाती हैं
1: जी,
0: तो इसलिए कहा गया है कि प्लाउ से भी एक बार जुताई जरूर कर दी जाए जिससे हमारा पोषक तत्व कम से कम हो जाए। जब से मिट्टी का सेहत किस लिए खराब हुई, जब से हमारा रोटावेटर आया, और रोटावेटर क्या हुआ, आज कोई फसल कटी है सवेरे रोटावेटर चला ऊपर 4 इंच से वो भुरभुरी कर दी, लेकिन नीचे वही रह गया सारा,
1: नीचे और ठोस हो गया,
0: वो नीचे और ठोस हो गया, ऐसे ही वो साली बंजर पूरी होती चली जा रही जमीन। तो इसीलिए हमारी उत्पादकता पे बहुत असर पड़ा है, चाहे आप गन्ने का भी अभी देख लो, हमेशा समझो 25% हमारा उत्पादन कम हुआ है, गेहूं पे भी हमारा 12-16% समझो उत्पादन कम हुआ। तो हमारा उत्पादन घटने का तो यही तो कारण है, कर्षण क्रियाएं सही समय पे नहीं हो पानी।
1: तो डॉक्टर साहब, जो हमारे किसान भाई खेती करते हैं उनके लिए मृदा जांच के बारे में थोड़ा सा आप कुछ संदेश देना चाहेंगे?
0: मृदा जांच के लिए किसान को मैं संदेश ये दूंगा कि कोई भी फसल बोए उसके 1 महीने पूर्व ही अपनी मिट्टी की जाँच करा लें, वो कहीं से भी आप जाँच करा लें, किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र से, किसी सरकारी संस्था से, और जांच के आधार पर फर्टिलाइजर डालें, निश्चित रूप से हमारी लागत कम आएगा और उत्पादन भी बढ़ेगा। 3 साल में ही जांच करानी होती किसान भाई, जैसे हम अपनी सेहत का भी ध्यान रखते हैं उसे धरती माँ का भी ध्यान रखना हमें पड़ेगा।
1: जी बिल्कुल, अगर आप खेतों से अपना अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो धरती माँ का ध्यान रखना आपका कर्तव्य बनता है, मृदा का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आपको उत्पादन अच्छा मिलेगा। डॉक्टर वेद प्रकाश जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और निश्चित तौर पे हमारे किसान भाई कोई भी फसल लगाएंगे तो पहले मिट्टी की जांच करा के उसके अनुसार ही उसमें पोषक तत्वों का प्रयोग करेंगे जिससे उनकी लागत में कमी आएगी और उत्पादन में वृद्धि होगी। आपका पुनः धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे खरीफ फसलों के लिए मिट्टी की जांच का सही समय, विशेषज्ञ थे डॉक्टर वेद प्रकाश और बातचीत कर रहे थे शिव नंदन लाल। तो शीतल बहन, बहुत ही अच्छी जानकारी थी कि खेती की तैयारी करने के लिए सही समय यही है मिट्टी की जांच करने का, और इससे आवश्यक उर्वरकों और पोषक तत्वों की मात्रा का सटीक अनुमान हमें मिल जाता है।
3: जी बिल्कुल, और जिन जिन सावधानियों की बात की है कि कहाँ से मिट्टी लेनी चाहिए, कितनी लेनी चाहिए, और किस जो घर के सिला हुआ जो वो होती है पॉकेट की तरह होती है उसमें रखनी चाहिए, इन खास बातों का जरूर ध्यान रखें।
2: तो अब हम मनोरंजन कराते हैं और सुनवाते हैं विक्कल गुर्जर को
3: रागनी
4: हो रे मेरा दम ले।

0: अभी आप सुन रहे थे विकल गुजर से ये रागनी। और शीतल बहन,
1: जी
0: जैसा कि हम बात कर रहे थे योजनाओं की, तो एक एक और योजना है स्टार्टअप इंडिया योजना। भारत सरकार की एक बहुत ही प्रमुख योजना है। इसका मुख्य उद्देश्य देश में नए व्यवसायों, नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना है, ताकि आर्थिक विकास को गति मिले और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इस योजना के तहत योग्य व्यवसायों को सरकार द्वारा कई प्रकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता प्रदान की जाती है। और प्रमुख लाभ बहुत सारे हैं, जैसे कर में छूट, इजी फंडिंग मतलब आसान वित्त पोषण आदि की व्यवस्था होती है।
1: और इसके लिए पात्रता वही 10 वर्ष से अधिक पुराना ना हो किसी भी कंपनी का, मतलब जो कंपनी बनी हो कम से कम 10 साल पुरानी हो। ऐसा ना हो कि नई नई बनी हो और आप उस पर उसका लाभ लेना चाहें, ऐसे नहीं मिलेगा। और जो साल का उसका टर्नओवर हो, मतलब जो उसकी कमाई हो साल की, वो निर्धारित जो सीमा है स्टार्टअप इंडिया के, इसके भीतर हो।
0: तो यानी इन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। इस योजना के तहत पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए पात्रता जरूरी है।
1: हाँ, इससे बेरोजगारी कम होती है, क्योंकि सरकार ये रहती है कि ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप होगा, लोग ज्यादा से ज्यादा रोजगार कमाएंगे तो बेरोजगारी कम होगी। और ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा मिलता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ शहर के लोग इसका लाभ ले सकते हैं, गांव में भी आप स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। आजकल आप देख भी रहे हैं कि छोटे छोटे काम करके, पढ़े लिखे लोग छोटा छोटा काम करके बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं और दूसरों को भी पैसा कमाने का मौका दे रहे हैं।
0: बिल्कुल, तो इस तरह से आप स्टार्टअप कोई भी योजना शुरू कर सकते हैं। ऋण की व्यवस्था बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाती है। और ये जो तमाम जो योजनाएं होती हैं, इन पर आपको विस्तार से जानकारी हम इसलिए देते रहते हैं ताकि आप समय समय पर इन जानकारियों से लाभ उठा सकें। जी, और हम इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हम बताना चाहते हैं कि आपको हमारे जो ये कार्यक्रम है कैसे लग रहे हैं। अपने सुझाव, अपनी प्रतिक्रिया जरूर बताएं। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी दिल्ली। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।
1: जी बिल्कुल, और हमारा ईमेल आईडी है feedback@gmail.com। तो हमें आपके सुझावों का इंतजार रहेगा। इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम कृषि जगत यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को राम राम।
0: सभी किसान भाई बहनों को हमारी राम राम।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे तुषार पारासर और कार्यक्रम के संयोजक थे शिवनंदन लाल।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, गजलों की इस महफिल में आपका स्वागत है और आज के कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं हम पंकज उधास साहब की इस गजल के संग।

0: आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब आप प्रादेशिक समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। मुख्य समाचार। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की। स्टाइपेंड अब बढ़कर 500 से 13,500 रुपए हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल शिक्षा में प्रवेश के लिए 3 मई को आयोजित नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द करने का फैसला किया है। सरकार ने पेपर लीक के आरोपों की पूरी जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को सौंप दी है। एजेंसी ने कहा है कि यह फैसला विद्यार्थियों के हित तथा राष्ट्रीय परीक्षा प्रणाली में विश्वास को ध्यान में रखते हुए लिया गया है।
2: एजेंसी ने कहा है कि ये निर्णय केंद्रीय एजेंसियों के साथ समन्वय में एनटीए द्वारा जांच निष्कर्षों का मूल्यांकन करने के बाद लिया गया है। परीक्षा के लिए नई तिथि अलग से अधिसूचित की जाएगी। पंजीकरण विवरण, उम्मीदवार की जानकारी और मई 2026 के लिए चयनित परीक्षा केंद्र अपरिवर्तित रहेंगे। दोबारा परीक्षा के लिए फिर पंजीकरण कराने की आवश्यकता नहीं होगी और कोई अतिरिक्त परीक्षा शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सरकार ने कहा है कि नीट यूजी पेपर लीक मामले में

0: में लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जाएगा ताकि विद्यार्थियों के भविष्य पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े। नई दिल्ली में नीट परीक्षा रद्द करने के संबंध में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। उन्होंने कहा कि परीक्षा दोबारा आयोजित की जाएगी जो निष्पक्ष तरीके से होगी और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जाएगा। श्री अभिषेक सिंह ने कहा कि यदि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता पर जरा भी संदेह हो तो ऐसी स्थिति में परीक्षा रद्द करना ही उचित निर्णय है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से सरकार मातृभाषा, भारतीय ज्ञान परंपराओं और एआई संचालित शिक्षा पर आधारित अनुसंधान और नवाचार को निरंतर बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि ग्लोबल साउथ के देश विश्वास, समाधान और नेतृत्व की अपेक्षाओं के साथ आज भारत की ओर देख रहे हैं। श्री प्रधान ने ये बात भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ICSSR के 58वें स्थापना दिवस के अवसर पर कही। ICSSR की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये संगठन भारतीय परिप्रेक्ष्य में सामाजिक विज्ञान अनुसंधान को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है।
1: ICSR समय को आगे जाते हुए आने वाले 10-15 साल भारत को 2047 की रोड मैप में पहुंचने के लिए, लक्ष्य तक पहुंचने के लिए किस किस प्रकार की सोशल चैलेंजेस को ध्यान देना पड़ेगा, ये ICSR के आने वाले 10-15 साल के काम होने चाहिए। हमें अपनी भाषा को महत्व देना पड़ेगा, हमारी अर्थनीति को मजबूत करना है तो हमारी भाषा को हमें महत्व देना पड़ेगा।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कौशल आधारित शिक्षा प्रणाली को आवश्यक बताते हुए राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत एक मजबूत ऋण प्रणाली विकसित करने पर बल दिया। नई दिल्ली में आज भारतीय उद्योग परिसंघ CII वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन में उन्होंने कहा कि छात्रों को अधिक सहायता और अवसर प्रदान करने के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप को भी ऋण ढांचे में शामिल किया जाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने भारत की शिक्षा प्रणाली को विश्व की सबसे मजबूत शिक्षा प्रणाली बताया। उन्होंने कहा कि देश में 10 लाख सरकारी स्कूलों सहित लगभग 15 लाख स्कूल हैं। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर शिक्षा पर देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 4% खर्च कर रही हैं। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि NCERT और CBSE ने मिलकर कक्षा 3 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंप्यूटेशनल थिंकिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित एक नया पाठ्यक्रम शुरू किया है और इसे लागू भी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि शिक्षकों को ग्रीष्मकालीन अवकाश के दौरान प्रशिक्षण दिया जाएगा और अवकाश समाप्त होने के बाद स्कूल खुलने पर इन विषयों की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि NCERT कक्षा 9, 10, 11 और 12 के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पाठ्य पुस्तकें भी तैयार कर रहा है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस है। आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती पर यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है हमारी नर्सें हमारा भविष्य। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक समारोह में 15 नर्सिंग पेशेवरों को वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किए। उन्हें ये पुरस्कार नर्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किए गए। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के अवसर पर लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने नर्सिंग स्टाफ से मुलाकात कर उन्हें शुभकामनाएं दी और उनके सेवा भाव की सराहना भी की।
2: श्रीमती गुप्ता ने कहा कि नर्सें केवल मरीजों की देखभाल नहीं करती बल्कि उन्हें नया जीवन देने का भी काम करती हैं। उन्होंने कहा कि दिल्ली की विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं की सफलता के पीछे देश के कोने कोने से आए स्वास्थ्य कर्मियों का योगदान है। मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली सरकार ने 27 साल बाद नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की है। इस निर्णय के बाद स्टाइपेंड को 500 रुपये से बढ़ाकर 13,150 रुपये कर दिया गया है। इसी क्रम में स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए 1,388 नर्सिंग अधिकारियों और 41 पैरामेडिकल कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए गए हैं। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि उनकी सरकार स्वास्थ्य कर्मियों के बेहतर कार्य वातावरण और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। आरजू के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए नीतिका गुप्ता।
0: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आज गुवाहाटी में असम की नई भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण

0: समारोह में शामिल हुई। श्रीमती गुप्ता ने दूसरी बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने पर डॉ हिमंता बिस्वा सरमा को बधाई दी। उन्होंने इसे सुशासन, विकास और जनसेवा की राजनीति की जीत बताया।
1: जनता का विश्वास और माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद ही असम में हैट्रिक जो लगी है, जो ये इतनी बड़ी जीत हुई है, उसका आधार है। आदरणीय मोदी जी का नेतृत्व और हेमंता दा की मेहनत असम राज्य को और तरक्की के मुकाम पर लेके जाएगी, जहाँ हर व्यक्ति के लिए सुख सुविधा संपन्नता होगी और विकसित भारत के साथ विकसित असम और अधिक तरक्की करेगा।
0: असम प्रवास के दौरान श्रीमती गुप्ता ने कामाख्या मंदिर, मां बगलामुखी और उमानंद मंदिर में पूजा अर्चना भी की। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधु आज दिल्ली पुलिस के 9वें विशाल मादक पदार्थ निस्तारण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान लगभग 1700 किलोग्राम मादक पदार्थ नष्ट किए गए, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत लगभग 72 करोड़ रुपए है। मादक पदार्थ के विरुद्ध कार्रवाई को सशक्त करने की दिशा में उपराज्यपाल ने दिल्ली के पहले समर्पित मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल ANTF पुलिस थाने की भी घोषणा की। इस दौरान श्री संधू ने वर्ष 2027 तक नशा मुक्त दिल्ली के लक्ष्य को फिर से दोहराया। उपराज्यपाल और दिल्ली विकास प्राधिकरण DDA के अध्यक्ष तरणजीत सिंह संधू ने राजधानी के द्वारका उपनगरी को अंतर्राष्ट्रीय निवेश और आर्थिक गतिविधियों के केंद्र के रूप में विकसित करने पर बल दिया है। एक बैठक में उन्होंने DDA के अधिकारियों को द्वारका के लिए व्यापक विकास योजना तैयार करने के निर्देश दिए। श्री संधू ने कहा कि द्वारका में यशोभूमि निर्माणाधीन राजनयिक क्षेत्र, अर्बन एक्सटेंशन रोड और हवाई अड्डा जैसी सुविधाएं हैं, जो इसे निवेश के लिए युक्त बनाती हैं। उपराज्यपाल ने कहा कि इस तर्ज पर रोहिणी और नरेला को भी विकसित किया जाएगा। श्री संधू ने DDA को सभी हितधारकों के साथ मिलकर जल्द ही ठोस और समयबद्ध कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा आज चौखंडी क्षेत्र में जनसुनवाई कार्यक्रम में शामिल होकर लोगों की समस्याएं सुनी। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिरसा ने बताया कि कई मामलों का मौके पर ही अधिकारियों से बात कर समाधान किया गया, वहीं अन्य शिकायतों पर संबंधित अधिकारियों को जल्द कार्रवाई के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र के विकास को लेकर लोगों ने कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं। श्री सिरसा ने कहा कि दिल्ली सरकार दफ्तरों से नहीं, जनता के बीच रहकर काम करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने आज पूर्वी दिल्ली के जोन 1 और जोन 2 के प्रधानाचार्यों और प्रमुखों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। इस दौरान श्री सूद ने शिक्षा व्यवस्था, स्कूल का बुनियादी ढांचा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूल स्तर पर आने वाली चुनौतियों को समझना तथा शिक्षकों और स्कूल प्रशासन के सुझाव प्राप्त करना है। इस संबंध में श्री सूद ने कक्षाओं, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, खेल सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल, शौचालयों तथा डिजिटल शिक्षा से संबंधित व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये संवाद कार्यक्रम आगामी 11 दिनों तक लगातार आयोजित किया जाएगा। दिल्ली के महापौर प्रवेश वाही ने आज नजफगढ़ क्षेत्र में निर्माणाधीन कोयला बायोगैस संयंत्र का निरीक्षण किया और साथ ही अधिकारियों को परियोजना को समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ये संयंत्र जुलाई तक तैयार हो जाएगा। श्री वाही ने कहा कि इस संयंत्र के तैयार हो जाने से क्षेत्र में लोगों को प्रदूषण से राहत मिलेगी और यमुना नदी में गंदगी जाने पर रोक लगेगी। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद NDMC के उपाध्यक्ष कुलजीत सिंह चहल ने आज मॉनसून से पहले जलभराव रोकने की तैयारियों का निरीक्षण किया। उन्होंने भारती नगर, गोल्फ लिंक, तुगलक लेन और पंडारा रोड समेत कई क्षेत्रों का दौरा कर अधिकारियों को सभी तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। श्री चहल के अनुसार परिषद ने पहले चरण में 31 मार्च तक शत प्रतिशत डीसिल्टिंग कार्य पूरा कर लिया है। दूसरा चरण अगले महीने की 15 तारीख तक पूरा कर लिया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति अरविंद कुमार की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति गठित करने की घोषणा की है। इसके लिए सरकार से 40 से 50 हजार करोड़ रुपए का आवंटन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

0: न्यायिक अवसंरचना सलाहकार समिति न्यायालयों में अवसंरचना संबंधी कमियों को दूर करेगी। समिति 31 अगस्त तक प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्य संजीव सान्याल को विस्तृत निष्कर्ष और आवश्यक निधि का विवरण प्रस्तुत करेगी। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स वर्ष 1956 से देश के चिकित्सा नवाचार के प्रमुख केंद्र के रूप में कार्य कर रहा है। आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित एम्स के 51वें दीक्षांत समारोह में उपराष्ट्रपति ने कहा कि एम्स ने रोगी देखभाल और आधुनिक चिकित्सा को किफायती बनाया है। उन्होंने बताया कि प्रतिवर्ष लगभग 50 लाख ओपीडी के साथ संस्थान ने अद्वितीय गुणवत्ता के साथ रोगी देखभाल का मानक स्थापित किया है। इस अवसर पर केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने कहा कि एम्स नई दिल्ली एक संस्थान के साथ साथ स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र स्थापित ब्रांड भी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष के बीच भारत ने अपने घरेलू एलपीजी उत्पादन को लगभग 36,000 टन प्रतिशत से बढ़ाकर 54,000 टन कर दिया है। श्री पुरी ने नई दिल्ली में वार्षिक व्यापार शिखर सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए ये कहा। उन्होंने कहा कि कई देशों को पिछले कुछ महीनों में आसमान छूती कीमतों और ईंधन की कमी का सामना करना पड़ा है, वहीं भारत घरेलू कीमतों को अपेक्षाकृत स्थिर रखने में कामयाब रहा है।
1: किचन में इस्तेमाल होने वाली एलपीजी सिलेंडर गैस का लगभग 60% पहले हॉर्मुज क्षेत्र से आता था। अब हमें इसके लिए नई व्यवस्थाएं करनी पड़ी। संकट से पहले हमारी घरेलू एलपीजी उत्पादन क्षमता लगभग 35 या 36,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन थी। हमने अपने घरेलू उत्पादन को 36,000 से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन प्रतिदिन कर दिया है।
0: राजधानी में आज दिन भर मौसम साफ रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 27.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कल बादल छाए रहने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पेपर लीक के आरोपों के कारण नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द, सीबीआई जांच के आदेश। दिल्ली सरकार ने नर्सिंग इंटर्न्स के स्टाइपेंड में 27 गुना बढ़ोतरी की, अब 500 से बढ़कर 13,500 रुपए स्टाइपेंड हुआ। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने दिल्ली में पहले मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल पुलिस थाने की घोषणा की और सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के न्यायालयों के आधुनिकीकरण का खाका तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति के गठन की घोषणा की। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर।

हेलो, सलाम, नमस्ते। फिल्म संगीत से सजी गीत मालिका की रोलर कोस्टर राइड लेकर एक बार फिर हाजिर हूँ मैं, योर्स वेरी ओन दीप्ति। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कुछ बातें और कुछ कुछ खास नगमे। तो क्या कहते हैं, करें अपने रोलर कोस्टर राइड को किक स्टार्ट विद अ सिंपल कप ऑफ कॉफी।

एक सिंपल सी कॉफी, लेकिन बात जब तेरे संग पीने की हो तो वही कॉफी बन जाती है एकदम खास। और फिर दिल धीरे से कह उठता है कि कुछ तो हुआ है, कुछ हो गया है। दो एहसास दो गाने, लेकिन फीलिंग एक ही, प्यार की वो पहली हल्की सी आहट जो बिना बताए दिल में जगह बना ले। कुछ बातें, कुछ मुस्कुराहटें और कुछ अनकहे एहसास जो प्यार को बिना बोले भी महसूस करा दें। तो करें महसूस।

भाई कुछ तो हुआ है, वरना ये दिल जो है ये यूं बेवजह किसी की बातों पर हंसना नहीं सीखता। और हाल ये है कि थोड़ी सी शरारत, थोड़ा सा पागलपन और इन दोनों के बीच में चल रही है मोहब्बत की बहुत खूबसूरत सी सेटिंग। कभी नजरें चुराना, कभी जानबूझकर तंग करना और फिर दिल का धीरे से वही नाम गुनगुनाना। लगता है इश्क ऑन एयर हो चुका है।

और तेरी बातों का असर कुछ ऐसा है कि अब दिल हर दुआ में बस तेरा ही नाम मांगता है। और फिर चुपके से ये सवाल भी आ ही जाता है कि तेरे काबिल हूं भी या नहीं। लेकिन सच कहे ना तो तेरा साथ होने का ख्याल ही दिल को बड़ा खूबसूरत सा नशा दे जाता है।

तेरे काबिल हूँ या तेरे काबिल नहीं, से लेकर सिर्फ तुम तक का सफर कितना खूबसूरत होता है ना।

जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उनको हम बता दें कि आप हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम गीत मालिका की रोलर कोस्टर स्ट्राइक पर सवार विद योर वेरी ओन दीप्ति।

एक डॉलर की कदर रिकॉर्ड कम होकर 95 रुपये 63 पैसे हो गई। बैडमिंटन में आज सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी पर मुश्तमिल मर्दों की डबल्स की भारत की सरकर्दा जोड़ी थाईलैंड ओपन के दूसरे दौर में पहुंच गई है। भारतीय जोड़ी ने मर्दों के डबल्स के इफ्तिताही मुकाबले में इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 23-21, 21-10 से हराया। प्री क्वार्टर फाइनल में भारतीय जोड़ी का मुकाबला मलेशिया के ब्रायन जेरमी गॉन्टिंग और मोहम्मद हाइकल से होगा। बैंकॉक में इस साल BWF सुपर 500 टूर्नामेंट के लिए भारत ने 27 खिलाड़ियों पर मुश्तमिल एक मजबूत दस्ता भेजा है। आईपीएल में आज अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद और गुजरात टाइटन्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटन्स ने सनराइजर्स हैदराबाद की जीत के लिए 169 रन का निशाना रखा। गुजरात टाइटन्स के लिए साई सुदर्शन ने सबसे ज्यादा 61 रन बनाए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। सीबीआई ने नीट के मुबैना पेपर लीक मामले के सिलसिले में एक केस दर्ज किया है। मुख्तलिफ रियासतों से कई मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया है। तमिलनाडु में AIADMK में फूट पड़ गई है। 30 मेंबरानी असेंबली पर मुश्तमिल बड़ा हिस्सा विजय के टीवी के हुकूमत की हिमायत के लिए तैयार है, कल अक्सरियत साबित की जाएगी। भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आला इख्तियारात के हामिल एक कमेटी तश्कील दी है जो मुल्क भर में अदालतों की जदीदकारी का खाका तैयार करेगी। भारत जुमेरात से दो रोजा ब्रिक्स वज़राए खारजा की मीटिंग की मेजबानी करेगा। बाहमी मफाद के आलमी और इलाकाई मामलों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। और बैडमिंटन में सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी बैंकॉक में थाईलैंड ओपन में मर्दों के डबल्स के दूसरे राउंड में पहुंच गई है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।

चलो निगने गिरामी कौआ लिए बदिरो बहुत सदा ये गुलाम साबिर व हम नवाहश बिशनविद व इन आखरीन कौआ लिए इन बारना में आस्त।

छूट जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए घर बारी, रूठ जाए सब दुनिया चाहे छूट जाए

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नव निर्वाचित टीवी के सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी की सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी की सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। श्री जायसवाल ने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहनों की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था को बढ़ावा देने पर भी बल दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर कलीबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। वहीं संयुक्त अरब अमीरात में ईरानी मिसाइलों को रोकने के लिए इसराइल की आयरन डोम रक्षा प्रणाली के इस्तेमाल की भी आधिकारिक पुष्टि हुई है। रूस ने सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस सफल परीक्षण पर रूसी सेना को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरमत दुनिया की सबसे शक्तिशाली मिसाइल प्रणालियों में से एक है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 1:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत सुनहरे का। श्रोताओं, गीत सुनहरे कार्यक्रम में आप सुनते हैं पुरानी फिल्मी गीतों के सुनहरे गीत। आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म भक्त सूरदास से KL सहगल साहब की आवाज में ही।

यहाँ से अजी हो हो मन मन में हमें न गालियाँ दो लो चली मैं यहाँ से अजी हो हो कोई कब तक

फिल्म भाई बहन से ये गीत आइए सुनते हैं, शमशाद बेगम की मधुर आवाज में।

श्रोताओं, इसी के साथ गीत सुनहरे कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं ये गीत फिल्म बैजू बावरा से मोहम्मद रफी साहब की आवाज में।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग के लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है।

0: नियोजित परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी की महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी की सरकार के लिए होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप में से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एड्डापाडी के पलनी स्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधि मंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर होंगे। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
1: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी। जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं। तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी और वो सब साझेदारी जो विकसित भारत की तरफ हमको ले आता है उसे कैसे मजबूत किया जाएगा।
0: पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गलिवफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। तनाव के बीच कच्चे तेल की कीमतों में भी तेजी आई है। इस बीच कुवैत ने ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी बीजिंग पहुंचेंगे, जहां उनकी चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ 2 दिन की अहम शिखर वार्ता होगी। ये शिखर बैठक ऐसे समय हो रही है जब पश्चिम एशिया में जारी तनाव और ईरान से जुड़े संकट के कारण अमेरिका और चीन के संबंधों पर दबाव बढ़ गया है। ईरान द्वारा हॉर्मुज जलडमरों मध्य बंद किए जाने और अमरीकी नौसैनिक नाकाबंदी से चीन के तेल आयात और व्यापार पर असर पड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सांगली में कल दोपहर दीवार गिरने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। इस हादसे में 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। सोशल मीडिया पर जारी संदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जनहानि की खबर से उन्हें गहरा दुख पहुंचा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को व्यवहार में अपनाने का आग्रह किया है। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, डीजीपी और विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री, मंत्रियों और अन्य वीआईपी काफिलों के वाहन की संख्या तुरंत 50% कम करने के निर्देश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: श्रोताओं, इसी के साथ आज का गीत बहार कार्यक्रम अब समाप्त होता है। रात के 3 बजने को हैं, आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देशभर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया है। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस कर देगी।
2: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा

0: व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के नेतृत्व में भारतीय संसद का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल आज से भूटान की यात्रा पर रहेगा। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य भारत और भूटान के संबंधों को और मजबूत करना है। यात्रा के दौरान प्रतिनिधिमंडल भूटान और भारत के बीच संबंधों के विभिन्न पहलुओं तथा दोनों पड़ोसी देशों के बीच सहयोग बढ़ाने के उपायों पर चर्चा करेगा। पश्चिम एशिया में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम को लेकर तनाव फिर बढ़ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के नए शांति प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। इससे क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका और बढ़ गई है। ईरान की संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाकर गालिबफ ने कहा कि किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरानी सेना पूरी तरह तैयार है। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक धार्मिक आयोजन के दौरान दीवार गिरने से 6 श्रद्धालुओं की मौत हो गई और करीब 15 लोग घायल हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना में हुई लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। आईपीएल क्रिकेट में आज गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। वहीं आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Akhila. The Central Bureau of Investigation, CBI, has registered a case in connection with an alleged paper leak in the conduct of the National Eligibility Cum Entrance Test, NEET UG 2026. The agency has registered the case based on a written complaint received from Department of Higher Education, Ministry of Education. The agency stated that special CBI teams have been formed and dispatched to various locations for an investigation into the matter. The NEET UG 2026 examination was conducted by the National Testing Agency NTA on the 3rd of this month. Addressing a press conference on NEET exam cancellation in New Delhi, DG National Testing Agency Abhishek Singh said, NTA will conduct a re-exam for students and it will be done in a fair manner and no additional fee will be charged for the re-exam. The political situation in Tamil Nadu has turned dramatic ahead of the flow test, the newly elected TVK government led by Joseph Vijay. The All India Anna Dravida Munnetra Karagam has split into two groups over extending support to the government. The faction led by former Chief Minister and Party General Secretary Edappadi K. Palaniswamy has directed party MLAs not to support the TVK government. Meanwhile, another faction claiming the support of 30 MLAs has elected SP Velumani as the AIADMK Legislature Party leader. Leaders of the faction met the media after a meeting at former minister C.V. Shanmugam's residence. Shanmugam announced that the group will support the TVK government during the trust vote. India will host the BRICS Foreign Ministers meeting on the 14th and 15th of this month. The meeting will be chaired by External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randeep Jaiswal said, during the meeting, the foreign ministers of BRICS member countries will exchange views on global and regional issues of mutual interest. Talking about Prime Minister Narendra Modi's visit to the UAE, Mr. Jaiswal said that during the visit, there will be talks on energy security.
2: During the visit to the United Arab Emirates as well, discussions will take place on energy security. Apart from this, there will be also the Nordic Summit along with the visits from Norway, Sweden, Italy and the Netherlands. These countries are major hubs of innovation and India is also doing significant work in the innovation ecosystem. Therefore, discussions will take place on all these issues and how we can help lead India towards the vision of a developed nation.
1: Chief Justice of India Suryakant has announced to constitute a high-powered committee headed by Supreme Court Justice Arvind Kumar to prepare a blueprint for the modernization of courts across the country and secure a government allocation of 40,000 to 50,000 crore rupees for the purpose. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has appealed to the people of the state for the practical implementation

0: आकाशवाणी दिल्ली के AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गजल और गीत का। ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24/7 चैनल है। सुबह के 4 बजने को हैं, आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत पर आधारित कार्यक्रम आराधना। कलाकार हैं तिसुरा वी रामाचंद्रन, पी रामा, एम बाला मुराजी कृष्णा।
1: प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।

श्रोताओं, नाद ब्रह्म कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आपने एस बालाचंदर द्वारा बजाया वीणा पर राग नमन रयानी सुना। वंदे मातरम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज पर। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 23वीं तिथि, तदनुसार 13 मई 2026 सुबह के 5:53 और 50 सेकेंड हुए हैं। अब हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब आगे आपको कुछ प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दे दें। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें, जबकि 5:20 पर आप सुन सकते हैं देशभक्ति गीत।

5:30 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम स्वर रंजनी। वहीं 6 बजे का वक्त होगा हिंदी में समाचार का। 6:05 पर आप सुन सकते हैं अंग्रेजी में समाचार।

6:10 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम वंदना, वहीं 6:40 पर आप सुनेंगे चिंतन, जिसके अंतर्गत आज आप सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के विचारों के बारे में जानेंगे।

0: बजकर 45 मिनट पर आप सुनेंगे कार्यक्रम रामचरितमानस में बाल कांड, और अब प्रातः के 5 बजने को हैं। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट यूजी 2026 के कथित पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया है। इस मामले में देश भर से कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। जांच एजेंसी ने उच्च शिक्षा विभाग की लिखित शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया। नीट यूजी परीक्षा के संचालन में कथित अनियमितताओं और पेपर लीक के संबंध में आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, चोरी और साक्ष्य नष्ट करने तथा सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम 2024 के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि एजेंसी विद्यार्थियों को नीट यूजी परीक्षा शुल्क वापस

0: करेगी।
1: हमने इस मैटर को सीबीआई को इंक्वायरी को दिया है और हम इस तरह के जितने लोग खुराफात किए हैं उनको जेल भेजेंगे ताकि बच्चों का भविष्य किसी भी प्रकार से एडवर्सली प्रभावित न हो। इसके साथ ही हमने यह भी कहा कि बच्चों के लिए हम दोबारा परीक्षा कराएंगे जो कि एकदम फेयर तरीके से होगी, जिसमें किसी भी तरह की अनियमितता नहीं होगी।
0: तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित टीवी के सरकार के लिए आज होने वाले विश्वास मत से पहले राज्य की राजनीतिक स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई है। ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी सरकार को समर्थन देने के मुद्दे पर दो गुटों में बंट गई है। पूर्व मुख्यमंत्री और पार्टी महासचिव एडपड्डी के पलानीस्वामी के नेतृत्व वाले गुट ने पार्टी विधायकों को टीवी के सरकार का समर्थन न करने का निर्देश दिया है। वहीं 30 विधायकों के समर्थन का दावा करने वाले एक गुट ने एसपी वेलुमणि को ऑल इंडिया अन्ना डीएमके पार्टी विधायक दल का नेता चुना है। ये गुट विश्वास मत के दौरान टीवी के सरकार का समर्थन करेगा। भारत 14 और 15 मई को ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेगा। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि ब्रिक्स के सदस्य और सहयोगी देशों के विदेश मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के प्रमुख बैठक में भाग लेंगे। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। श्री जायसवाल ने यह भी बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को 5 देशों संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड्स, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की यात्रा पर रवाना होंगे। उन्होंने कहा कि ये यात्रा के दौरान ऊर्जा सुरक्षा सहित कई क्षेत्रों में साझेदारी मजबूत होगी।
2: संयुक्त अरब अमीरात दौरे के दौरान भी ऊर्जा सुरक्षा पर बातचीत होगी, जिस प्रकार का हमारी उनसे साझेदारी चल रही है, कैसे इसको और व्यापक किया जाए ताकि हम अपने जो ऊर्जा सुरक्षा हमारी है उसको हम मजबूत कर सके। इसके अलावा जो 4 अन्य देश हैं, नॉर्डिक समिट होने वाला है, नॉर्वे की यात्रा है, स्वीडन की यात्रा है, इटली की यात्रा है, नेदरलैंड्स की यात्रा है, यहां पर भी ये देश में से नवाचार के बहुत बड़ा केंद्र है। इनोवेशन इकोसिस्टम में भारत में बहुत काम हो रहा है और क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज में ये लोग और ग्रीन ट्रांजिशन में काफी आगे हैं, तो इन सभी मुद्दे पर हमारी बातचीत होगी।
0: पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि सरकार ने पश्चिम एशिया संकट के कारण ऊर्जा आपूर्ति में आई बाधाओं को प्रभावी रूप से संभाला है और ये सुनिश्चित किया है कि जनता पर इसका न्यूनतम बोझ पड़े। सीआईआई वार्षिक सम्मेलन में उन्होंने कहा कि भारत ने घरेलू उत्पादन को 36,000 मीट्रिक टन से बढ़ाकर 54,000 मीट्रिक टन कर दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। श्री पुरी ने कहा कि भारत के पास 60 दिन का कच्चा तेल और एलएनजी तथा 45 दिन का एलपीजी भंडार मौजूद है और आपूर्ति को लेकर कोई समस्या नहीं है। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद राज्य की पुलिस ने कानून व्यवस्था और राजनीतिक हिंसा के मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक कानून व्यवस्था ने सभी पुलिस आयुक्तों, पुलिस अधीक्षकों और रेलवे पुलिस अधिकारियों को कई अहम निर्देश जारी किए हैं। निर्देश में 2021 विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा के सभी मामलों की नए सिरे से जांच करने को कहा गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज चीन की राजधानी पेचिंग पहुंचेंगे। वे चीन की 3 दिन की यात्रा पर हैं। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच विभिन्न पहलुओं पर चर्चा होने की उम्मीद है। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने सनराइजर्स हैदराबाद को 82 रन से हरा दिया। 169 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए सनराइजर्स की टीम 86 रन पर ऑल आउट हो गई। प्रतियोगिता में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

मैं योगाचार्य सुनील गौतम आज बात करेंगे ध्यान की एक बहुत सरल विधि के विषय में, दीर्घ श्वास प्रेक्षा। दीर्घ यानी लंबा, श्वास माने श्वास, प्रेक्षा माने बारीकी से देखना, अर्थात लंबी गहरी श्वास लेना और बारीकी से देखना, फील करना, अनुभव करना, श्वास के आने जाने को देखना और अपना पूरा ध्यान उस पर लगा देना, यही है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें हम लंबी गहरी श्वास लेते हैं, धीरे धीरे छोड़ते जाते हैं, लंबी गहरी श्वास भरते हैं और छोड़ते जाते हैं। अपने ऑफिस में, घर में, कार्यस्थल में, खेल के मैदान में, ग्राउंड में, कहीं भी गहरी सांस के अभ्यास को कर सकेंगे। इवन हम कभी देर तक रेड लाइट पर फंस गए, गाड़ी बंद कर दी, तनाव आ रहा है जाम में फंसे होने का, उस तनाव से मुक्ति के लिए भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। कभी सामने वाले से कोई झगड़ा हो गया, अपने गुस्से को कैसे काबू करना है, तो भी हम अपनी लंबी गहरी श्वास का अभ्यास करके अपने गुस्से को शांत कर सकते हैं। निरंतर लंबी गहरी श्वास लेते रहने से हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में रक्त की सप्लाई सुचारू बनी रहती है। जब हम श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के साथ हमारा ब्लड मूव करता है हार्ट से शरीर के अंगों के लिए, शरीर के अंगों और मस्तिष्क के लिए। और जब हम श्वास छोड़ते हैं तो शरीर के अंग प्रत्यंगों से रक्त वापस आता है हार्ट के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए। अर्थात हम जब श्वास लेते हैं तो श्वास लेते समय हमारे हार्ट से शरीर के ऑर्गन्स के लिए ब्लड की सप्लाई होती है। जब रक्त जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजन एब्जॉर्ब हो जाती है शरीर के अंगों के द्वारा, ऑर्गन्स के द्वारा, कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो जाती है। तो जब श्वास को छोड़ते हैं और वही श्वास छोड़ते समय आपके ऑर्गन से कार्बन डाइऑक्साइड वापस रक्त के साथ आती है हार्ट से लंग्स के द्वारा थ्रो करने के लिए। अर्थात जब ब्लड जाता है तो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वापस आता है तो होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यही दीर्घ श्वास और प्रश्वास की प्रक्रिया आपके रक्त को पूरी तरह फिल्टर करने के और आपके हार्ट को सुचारू रूप से काम करने में मदद करती है, पूरे शरीर में ऊर्जा का संचार सुचारू करती है। लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना, अर्थात श्वास प्रश्वास, और इसी श्वास प्रश्वास के अभ्यास को आप सायास करते हैं, अर्थात जानबूझ के करते हैं, देखते हुए, विजुलाइज करते हुए, देखते हुए मीन मन की आंखों से देखते हुए करते हैं, फील करते हुए करते हैं, तो ध्यान हो जाता है। ध्यान की सब ग्राह्य विधि बन जाती है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। इसमें दीर्घ श्वास प्रेक्षा के दौरान जब आप श्वास को ले रहे हैं, धीरे धीरे पेट फूलेगा, जब श्वास छोड़ते हैं धीरे धीरे पेट नीचे जाएगा, और इसी पेट के ऊपर नीचे होने को, यानी के प्रत्येक अंग प्रत्यंग में कैसा प्रभाव हो रहा है श्वास के लेने और छोड़ने का, आप उसे अनुभव करने लग जाएंगे। और यही अनुभव करना, विजुलाइज करना, देखना, फील करना, यही आपका एक ध्यान बन जाता है दीर्घ श्वास प्रेक्षा। शरीर भी स्वस्थ होता है,

印度特里广播电台，听众朋友们，请收听 Rahat Fateh Ali Khan 唱的歌曲。